0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

जयकारे बोलो, जम के बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मैंने सुनिया, दिल से बोलो, आवाज नहीं आई, मिलके बोलो।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
3: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
2: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यही चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
3: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर्स
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को

0: भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं।

0: सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: भारत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स। एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: यू आर लिसनिंग FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़।
4: कमिटेड टू कम्युनिटी।

0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, शक्ति की साधना का यह पावन पर्व हमें नारी के अद्भुत स्वरूपों से परिचित कराता है। नवरात्रि के इस तृतीय दिवस पर पूजन करते हैं माँ चंद्रघंटा की, जो वीरता, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि जब नारी सशक्त होती है तो वह हर चुनौती का सामना डटकर कर सकती है, और आज का उत्तर प्रदेश इसी सशक्त नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण बन चुका है। पिछले 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास और सुशासन की एक नई मिसाल कायम की है, जहां महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आज प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व, हर जगह उनकी भागीदारी, उनकी ताकत, उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। योजनाओं और प्रयासों के माध्यम से एक ऐसा माहौल तैयार हुआ है जहां हर बेटी खुद को सक्षम और सशक्त महसूस कर रही है। तो आइए माँ चंद्रघंटा के साहस और शक्ति से प्रेरणा लेकर हम सभी मिलकर नारी सम्मान और सशक्तिकरण के इस संकल्प को और मजबूत करें।
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नई

0: दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, ये दास्तान है हौसले की, मेहनत की और सरकार के सही सहयोग से बदली हुई किस्मत की। आज हम आपको लेकर चलेंगे आगरा के एक छोटे से गांव जर्रार में, जहां एक साधारण महिला ने मोती की माला से 250 महिलाओं की जिंदगी में उम्मीद की चमक को लाया है। सोचिए, एक महिला सिर्फ 10वीं पास, घर परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त, लेकिन उनके दिल में एक सपना था कुछ करने का, कुछ बनने का, और उनका यही सपना आज बन गया है एक मिसाल।
1: पहले मेरा जीवन बिल्कुल साधारण था, सुबह शाम तक घर का काम और बच्चों की देखभाल, बस यही करते करते दिन कब निकल जाता था।
0: हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है हमारे गांव की, जहां प्रतिभा तो होती है लेकिन अवसर नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को मंच दिया है, जिससे वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। रुचि की जिंदगी में तब बदलाव आया जब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, कृष्णा स्वयं सहायता समूह शुरुआत। यह सिर्फ एक समूह नहीं था, यह थी रुचि के आत्मनिर्भर बनने की पहली सीढ़ी।
1: जब हमने समूह बनाया तब हमें खुद पर विश्वास ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम सीखते गए और आगे बढ़ते गए।
0: दोस्तों, शुरुआत आसान नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की, और यही पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निभाया अपना कर्तव्य, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF और कैश क्रेडिट लोन CCL के माध्यम से रुचि दीदी को मिला 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, और यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ ली।
1: जब हमें 3 लाख रुपए का लोन मिला तो लगा कि अब हम समय कुछ कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा था।
0: अब सवाल था क्या किया जाए, और यही से शुरू हुआ एक अनोखा सफर, मोती माला का व्यवसाय। एक ऐसा काम जो घर बैठ कर भी किया जा सकता है, जिसमें लागत कम है और मेहनत का फल ज्यादा। रुचि देवी ने ना सिर्फ खुद यह काम शुरू किया, बल्कि अब 10 गांव पंचायतों की 250 महिलाओं को भी जोड़ लिया। सोचिए दोस्तों, एक महिला और उसके साथ 250 सपने।
1: मैं चाहती थी कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे गांव की बाकी महिलाएं भी आगे बढ़े, इसीलिए मैंने उन्हें सिखाया, जोड़ा और साथ लेकर चली।
0: आज स्थिति यह है कि सभी महिलाएं घर के काम के साथ साथ माला बनाकर हर महीने 10 से 15 हजार रुपए कमा रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, और रुचि देवी वो खुद हर महीने 20 हजार रुपए की आय कर रही हैं। यानी गांव की एक सीधी साधी महिला का सपना अब बन चुका है एक मजबूत आर्थिक मॉडल। दोस्तों, यही है उत्तर प्रदेश की लखपति दीदी योजना का असली प्रभाव। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं देती, यह आत्मविश्वास देती है, पहचान देती है और सम्मान भी देती है।
1: आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे साथ काम करने वाली बहनें भी अपने परिवार का सहारा बन रही हैं। पहले जो लोग हमें कम समझते थे, आज वही हमें सम्मान देते हैं।
0: क्या आपने महसूस किया दोस्तों, यह सिर्फ कमाई की बात नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मविश्वास की बात है, उनके पहचान की बात है और समाज में बदलाव की बात है। और इस बदलाव के पीछे है योगी सरकार की दूरदर्शी सोच और मजबूत नीतियाँ। आज पूरे यूपी में महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभाल रही, वह कारोबार चला रही हैं, रोजगार दे रही हैं और समाज को आगे बढ़ा रही हैं। यही है नया उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश।
1: मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 250 महिलाओं का नेतृत्व कर पाऊंगी, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं यह कर पा रही हूँ। यह बस सरकार की योजनाओं की वजह से संभव हुआ है। इसके लिए योगी जी और प्रदेश के सरकार को चाहे जितना भी शुक्रिया बोलूं, कम ही है।
0: दोस्तों, अगर सही दिशा मिले, सही सहयोग मिले तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। रुचि देवी ने यह साबित कर दिया है कि हौसले हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं और एक महिला पूरे समाज को बदल सकती है। आज की इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अवसर मिले तो उसे पकड़िए, खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ने से कभी मत डरिए। मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे राज, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी और रेडियो की जुबानी। फिर मिलेंगे दूसरी प्रेरणादायक कहानी के साथ, तब तक याद रखिए, बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है। हां जी, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। अभी के लिए लेता हूं मैं यहां से अलविदा, नमस्कार।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोता? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर आईडी, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, ₹20,000 डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है। बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, OTP या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। OTP, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूंगा। दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम: लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, OTP और पासवर्ड कभी ना बताएं, डराने वाले मैसेज से सावधान रहें, खुद बैंक से संपर्क करें, जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद, अपने आप गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहाँ पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें, और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।

तेरा इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है मेरी मोहब्बत की सरगर्मियां। तेरे मेरे फासलों के बीच छुपी हुई है बहुत सी नजदीकियां।

0: हेलो हेलो हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक है एक बार फिर से। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो यानी कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आपसे मिल रहे हैं जी। गुड मॉर्निंग, दिस इज लाइव यार। अभी 8:47 हो रहे हैं स्टूडियो क्लॉक में और 15 मई की सुबह फ्राइडे का दिन है यानी शुक्र है कि आज शुक्रवार है। गाना है यार, सच में तुम दिल में हो मेरे। ऑफ कोर्स हमारे जो लिसनर है वो हमेशा हमारे दिल में रहते हैं और आपका और हमारा जो रिश्ता है ना बहुत ही खूबसूरत है और इस रिश्ते को मेंटेन रखना मेरी और आपकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है ना। तो देखो मैं आ गया हूँ अपने रिश्ते को पूरी तरह निभाने, अब आपकी बारी है। आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं फटाफट से 9837896896, दिस इज माई स्टूडियो नंबर। इस नंबर पर आप मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करो और अपने दिल की जरा हालचाल बताओ। कितने लोग हैं जो मुझे लाइव सुन रहे हैं आज की सुबह। लेकिन उससे पहले एक गाना जो मुझे आपके लिए जाना है आज की मॉर्निंग, कश्मीर की गली का वो गाना जो बेहद ही खूबसूरत गाना है, इसको सुनेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा यार। मोहम्मद रफी साहब की आवाज है,
1: रोशन चेहरे

तो देखो आज 15 मई की सुबह आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगी। तो आप जुड़ी रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

विकी सागर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह, लिखते हैं रेडियो वाला आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच विकी जी, मेरे पास मैसेज पहुंचा है एक और। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा है। हेलो जी, माय नेम इज प्रीतम। हाय प्रीतम, वेरी गुड मॉर्निंग। तारीफ मत करो यार, मैं बस आ गया हूँ आपसे मिलने।

0: बनाया।
1: तो देखिए लगातार मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे मैसेज पहुंच रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत मैसेजेस पहुंचाने के लिए, आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। और अभी तो शुरू हुआ है सिलसिला, आई नो आज थोड़ा सा लेट क्योंकि यार बहुत दिन से काम चल रहा था तो थोड़ी थकान ज्यादा हो गई थी। चलिए कुछ जानकारियां लेकर अभी हाजिर होता हूं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। जुड़ रहिए और सुनते रहिए RJ आनंद को।
2: बसंती इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7066002430।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
9: कॉल 8826213131।
10: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
11: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
10: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
12: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड मुरादाबाद।
2: बसंती इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
1: बिल्कुल जी, आपको नाचना जरूरी है, जब हम आते हैं तो आपको नचाकर ही जाते हैं। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

दोस्तों अगर बात करें आज 15 मई के दिन के बारे में, आज 15 मई के इतिहास के बारे में बात करें, अगर आज के इतिहास के पन्नों के बारे में बात करें, आज के दिन से जुड़ी कुछ विशेष बातचीत चलिए आपके साथ साझा करते हैं। आज के दिन क्या कुछ खास हुआ, क्या कुछ खास मनाया जाता है। 15 मई भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के इतिहास के पन्नों के लिए, तो चलिए आपको बताते चलिए आज के दिन के इतिहास के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, सन 1756 में इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी एंड जिससे 7 वर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई थी आज ही के दिन श्रोताओं। और आपको बताते चलें आज ही के दिन सन 1992 को लोकसभा में पहले हिंदी जो भाषण थे वो दिए गए थे आज ही के दिन। और साथ ही साथ सन 1999 में कुवैत में महिलाओं के सांसदीय चुनाव में मत अधिकार वोटिंग का हक मिला था आज ही के दिन श्रोताओं। दोस्तों ये थी कुछ आज के दिन से जुड़ी विशेष जिन्हें कह सकते हैं महत्वपूर्ण बातचीत जो आज के दिन को और भी स्पेशल और खास बना रही है श्रोताओं। और आपको बता दें सन 1817 में आज ही के दिन रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी लेखक और समाज सुधारक देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म भी हुआ था। वहीं बात करें अगर बॉलीवुड से खूबसूरत कलाकारों की, तो तमाम सारे ऐसे बॉलीवुड में कलाकार हैं जिनका जन्मदिन आज हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनमें से एक नाम है बहुत ही खूबसूरत एंड शी इज वेरी वेरी आइकॉनिक एंड डायनेमिक पर्सनालिटी। किन की बात कर रहा हूँ जिनका आज हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं जिनको आज हम जन्मदिन की बधाइयाँ ज़रूर ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी सी देर में। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून इन कर लिया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6। आज ही के दिन जन्मे थे 1923 में जॉनी वॉकर, इनका भी जन्म हुआ था जो भारतीय हास्य अभिनेता है आज ही के दिन। चलिए श्रोताओं हमने बात कर ली आज के दिन के इतिहास के पन्नों के बारे में, और अभी लौट कर आएंगे तो कुछ खास बातें भी आपको बताएंगे।

चलिए श्रोताओं, एक काम करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी प्रोग्राम में एक छोटा सा खूबसूरत सा गीत मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ आज की सुबह। और आज मैंने जिक्र किया एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री का, हम आज जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही आइकॉनिक अभिनेत्री है, बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है। किन की बात कर रहा हूँ मैं, कौन है कमाल की हीरोइन जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, जरूर जरूर आपको पता लगेगा। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना साथ बनाए रखिए। थोड़ी देर में लौट कर आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलिए एक और खूबसूरत गीत आज की सुबह, जो आपको मतलब कहीं ना कहीं फ्लैश बैक में ले जाएगा। बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत ही प्यारा गीत है, काफ़ी सुना है मैंने भी और आपने भी, बहुत अच्छा गाना है। चलिए इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, बाकी जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के फेवरेट रेडियो स्टेशन, आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आप जुड़ रहे हैं आनंद के साथ।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
6: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
8: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
7: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
8: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
9: कॉल 7500153841।

वेलकम बैक है श्रोताओं, आप आनंद के साथ सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। प्रोग्राम का नाम है बिंदास मॉर्निंग, जहां पर कुछ बिंदास खबरों का टाइम हो गया है। 9 बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। जी हां, सुबह के 9:07 हो गए और आपने ट्यून इन किया हुआ है, जैसे कि आपको पता है, आपके शहर का अपना ब्यूटीफुल रेडियो। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, तमाम सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी श्रोताओं जुड़ सकते हैं मेरे साथ आज की सुबह। आपको किसने रोका है भाई, आप बिल्कुल मैसेज कीजिए और अपने दिल के हालचाल, मेरे दिल के हालचाल जो है, एक दूसरे के दिल के हालचाल मिलकर जानते हैं, एक दूसरे को पहुंचाते हैं ना प्यारे प्यारे दिल के मैसेजेस। चलिए श्रोताओं, आपको बता दें, आज सुबह 6 बजे सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट जो है 2.5 रुपये से 3 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, थोड़ी सी ये न्यूज़ जो है आपको मतलब ऐसा डराने वाला शॉक दे सकती है, अरे बाप रे, आज पेट्रोल महंगा हो गया, आज डीजल महंगा हो गया, आज रेट बढ़ गए हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ भाई साहब, कि आज सुबह 6:06 पर सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट 2.5 रुपये से 3 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। और पेट्रोल का रेट अब अगर मैं बताऊँ तो 3.14 रुपये के समथिंग यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और डीजल का रेट भी 3.11 रुपये प्रति लीटर हो गया है। और आपको बता दूं, ऐसे में अब पेट्रोल जो है भाई साहब और डीजल, उसके रेट बढ़ चुके हैं आज की सुबह। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, अगर आप दूध खरीदने हैं मार्केट में, तो आपको बता दें दूध पर भी कुछ कंपनियों ने जो है रेट बढ़ा दिए हैं, यानी कि अब आपको 2 रुपये महंगा दूध का पैकेट मिलेगा। कुछ कंपनियां हैं जिन कंपनियों ने अपने दूध के ऊपर शुल्क बढ़ा दिया है। जी हाँ श्रोताओं, तो अगर आप दूध खरीदने जा रहे हैं तो जरा ये खबर सुनते हुए जाइए कि अब आपको 2 रुपये लीटर जो है दाम बढ़े हुए मिलेंगे कुछ कंपनियों पर। दूध की कुछ कंपनियों ने जो है रेट बढ़ा दिए हैं। फिलहाल ये कुछ बातचीत अहम और कुछ खबरें जो आपको बतानी बहुत जरूरी है। अभी लौट कर आएंगे तो आपकी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, और अभी आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आइकॉनिक और डायनेमिक पर्सनालिटी के बारे में, जिनका आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत, अपने आप में आर्टिस्ट हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कलाकार हैं। किन की बात कर रहा हूँ मैं, कौन है कमाल की आर्टिस्ट, ज़रूर आपको पता लगेगा, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा ये जो गाना मैं प्ले करूँगा वो कौन से अभिनेत्री का है। हमें इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का, 9837896896। तमाम सारे श्रोता लगातार जुड़ रहे हैं, बिल्कुल अभी हम आपके मैसेज को शामिल करेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। गाना प्ले कर रहा हूँ, कौन से अभिनेत्री के ऊपर पिक्चराइजेशन।

0: व्हाट्सएप करके बताइएगा। आज है जुमे का दिन, मुबारक हो आपको, शुक्र है कि आज शुक्रवार है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए सबसे पहले बड़ा सोचना जरूरी है, और सोचने के साथ साथ एक कदम बहुत जरूरी है। अगर आप आज की सुबह उस एक कदम को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं तो पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ निकल जाइए घर से बाहर, एक अच्छी थॉट के साथ, मुस्कुराते हुए।
1: कब तक

0: क्या बात है जी, बहुत सारे श्रोता साथी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, थैंक यू सो मच मेरे साथ इतने सारे मैसेज और इतनी सारी बातों को शेयर करने के लिए। बहुत सारे संदेश पहुंच रहे हैं लगातार। हेलो आनंद जी, गुड मॉर्निंग, आज आपको हमने काफ़ी दिन की बात सुना है, आप कहाँ थे, हमने आपको बहुत मिस किया, थैंक यू सो मच, हम लोगों ने भी आपको मिस किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, हाय माई नेम इज़ प्रणीत, हाय प्रणीत, गुड मॉर्निंग। ये लिखते हैं कि आनंद जी आप गाने बजाओ या मत बजाओ, बस आपकी आवाज़ सुनते ही ना मन खुश हो जाता है, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से वंस अगेन वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आरजे आनंद को 9:16:02 का समय। श्रोताओं आप भी मेरे साथ जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, हमें इंतजार है आपके मैसेजेस का, और कुछ संदेश मेरे पास पहुंच चुके हैं, आइए जरा इनको फटाफट शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। ये कौन और क्या पहुंचा रहे हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सुनते हैं इनके दिल की बात, ये सुबह सुबह क्या मैसेज लेकर आए हैं आज की मॉर्निंग।
1: ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी
0: जी
1: बोल रहा हूँ।
0: जी शफी जी,
1: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
0: बढ़िया,
1: आई एम फाइन।
0: अरे वाह,
1: मंडे टू सैटरडे 7-10 आरजे आनंद के साथ बिंदास मॉर्निंग सुनते रहो, नई नई जानकारी के साथ शो बहुत लाजवाब पेश कर रहे हैं आरजे आनंद, इनका तो क्या कहना है, जवाब ही नहीं है इनका। आरजे आनंद एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर इनके साथ रेडियो सुनते रहो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। कुछ लाइनें में बोल रहा हूँ, दिल नहीं भरता हमारा आपकी तस्वीर से, मांग लेंगे हम आपको अपनी ही तकदीर से,
0: वाह वाह,
1: तुम्हारे खत को जब अपनी किताब में पाया
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मिले थे पहले कभी वो जमाना याद आया, थैंक यू सर।
0: अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और बिल्कुल हमें भी जमाना याद आया और जमाने के साथ साथ आप भी याद आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, थैंक यू सो मच। शफी साहब आपने बड़ी खूबसूरत जो है बातचीत पहुंचाई है, आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बाकी श्रोताओं आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने मैसेजेस हम तक पहुँचा सकते हैं, हमारे नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं आज की सुबह 9837896896 स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर पर आप बिल्कुल मुखातिब हो सकते हैं हमारे साथ। शुक्रवार की सुबह है, शुक्र है कि आज शुक्रवार है। बाकी मुरादाबाद शहर के बारे में लोकल फॉर वोकल में कुछ जानकारियां हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कुछ अच्छी और बेहतरीन खबरें हैं जिनसे आपको भी रूबरू कराना है, तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो का साथ ऐसे ही बना रहेगा और आपका और मेरा साथ भी बरकरार रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आज कुछ बेहतरीन कलाकारों का हम जन्मदिन मनाते हैं, और उन्हीं में से एक नाम है, बहुत ही आइकॉनिक एक्ट्रेस हैं जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हीं के कुछ गाने भी प्ले कर रहा हूँ। बस आपसे वही पूछ रहा था कि आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आज हम कौन सी हीरोइन का बर्थडे मनाते हैं 15 मई को, उन्हीं के कुछ बेहतरीन गाने, उन्हीं के ऊपर पिक्चराइजेशन गाने आज की सुबह मैं आपको सुनवा रहा हूं। आज है शुक्रवार का दिन, 15 मई की तारीख, मुरादाबाद शहर से जुड़ी कुछ बेहतरीन खबरों को जो है आप तक पहुंचाना है, आप जुड़े रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका बेहतरीन प्रोग्राम बिंदास

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
7: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
8: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
7: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
9: डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको अनुभवी डॉक्टरों से इलाज मिलेगा, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन। इसके साथ साथ सभी प्रकार के परीक्षण, सीटी स्कैन, आधुनिक कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, आयुष्मान, टीपीए और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो सही इलाज के लिए आज ही आएं डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गंगन तिराहा, संभल चंदोसी रोड, मुरादाबाद।

दोस्तों आप आनंद के साथ हैं, आपके अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। और आज की सुबह मैं आपसे बहुत सारी बातें कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप मुझे मैसेज करके बताओ जरा आज हम कौन सी अभिनेत्री का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। उनके कुछ गाने आपके लिए प्ले कर रहा हूँ आज शुक्रवार की सुबह में, और तमाम सारे कॉल्स भी मेरे पास लगातार आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये गाना सुनेंगे, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है आपने किया है FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है और तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फाइनली आज ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, कितने दिनों के बाद मैं आपसे मिलने आया हूँ। एंड ऑफ कोर्स यार, दो तीन दिन के बाद हम लोग लाइव आ रहे हैं तो ये वाली फीलिंग आना तो बिल्कुल बनता है।

0: श्रोता, आपको बताते हैं 0 पॉइंट से गागर तक जो है बदलेंगी लाइटें। जी हाँ, आपको बताते हैं मुरादाबाद शहर के 0 पॉइंट से गागर तराहा का जो नज़ारा है वो जल्द ही बदलने वाला है। स्मार्ट रोड रात के अंधेरे में जो है भाई साहब अब एक नया नज़ारा देखने को मिलेगा। जी हाँ श्रोताओं, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण जल्द ही आपको बता दें कुछ बेहतरीन चीज़ करने वाला है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अब 0 पॉइंट से गागर तराहा तक जो है अब लाइटों का जो नज़ारा है वो बदलने वाला है। जो लाइटें हैं वो आपको अब जगमगाती हुई और कुछ नए सीरीज में एक नए तरीके के साथ अब आप देखने वाले हैं। जी हाँ श्रोताओं, देखिए मुरादाबाद स्मार्ट सिटी हो गया है। अब स्मार्ट सिटी में स्मार्ट चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है ना, और स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट सोच को भी बनाना बहुत ज़रूरी है। जब लोगों की सोच भी स्मार्ट होगी तो चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगी। जी हाँ श्रोताओं, 9:33 का समय है। आनंद के साथ स्टूडियो में आप जो है लगातार अपने संदेश पहुँचा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएँ भेज रहे हैं तमाम सारी, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बात के साथ आपको एक और खबर बता दें कि भैया आधार में अब पते के साथ साथ आप बदलवा सकते हैं जन्मतिथि। जी हाँ, अगर आप जन्मतिथि सही कराना चाहते हैं तो भैया सही करवाने के लिए 4 दस्तावेजों में से किसी एक की जरूरत आपको पड़ सकती है। आपको बता दें मुरादाबादीज, अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत है तो आप राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के समेत कोई कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। जी हाँ, आपको ये भी बता दें बॉस, ये बहुत ज़रूरी है, इनमें से आपके पास कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आपकी जन्मतिथि गलत है तो आप राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत कई कार्ड, मतलब कोई भी कार्ड नहीं बनवा सकते। तो ऐसे में आधार कार्ड पर गलत प्रिंट हुई जन्मतिथि को सही करवाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और सही करवाने के लिए आपको 4 दस्तावेज में से एक की ज़रूरत होगी। जी हाँ, तो आपको बता दें, देखिए अगर आप अपना आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपनी जन्मतिथि बदलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर आपका पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जिसमें जो है जिसमें से आपके पास एक ना एक का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कोई ना कोई एक दस्तावेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी जो है जन्मतिथि ज़रूर चेंज करवा सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अपने आधार कार्ड ना एक बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स में, सबसे ज़्यादा स्पेशल भी है, हमारे पास हमेशा रहता भी है। हम इसको अपने फ़ोन में इसके पिक्चर्स रखते हैं, आधार कार्ड को भी अपने साथ हम रखते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधार कार्ड को अपने पास ज़रूर ज़रूर रखिए, लेकिन सही और उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, बिल्कुल करेक्ट वाली, मतलब आपकी चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, आपका एड्रेस हो, आपका यू नो फादर नेम हो, आपका नेम हो, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, अक्सर हम इनको अवॉइड कर देते हैं। तो इनको अवॉइड नहीं करना है, इनको बिल्कुल ध्यान से और सही तरीके से जो है मेंटेन करके चलना लाए श्रोताओं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एड ब्रेक आ रहे हैं, उसके बाद आते हैं।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
7: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका, नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री, और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, ऑपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
8: टायर लो सोना जीतो।
9: क्या?
8: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
10: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
11: जाने जहां,
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
0: क्या बात है जी, नाचते रहिए, बहुत जरूरी है श्रोताओं। और अभी आज की सुबह मैंने आपसे कहा था एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री का हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 15 मई को इनका जन्मदिन आता है और इन्हीं के बारे में आज मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ कि आपको इनके ऊपर पिक्चराइजेशन गाने भी आज मैं चला रहा हूँ। तो मैंने कहा है, आप मुझे मैसेज करके बताइएगा जरा आज की सुबह जो आप गाने सुन रहे हैं वो कौन सी अभिनेत्री के ऊपर फिल्माए गाने सुन रहे हैं। आज इन्हीं से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल भी कर रहे हैं, क्या आपको ये मैडम जी याद है ना। अरे बिल्कुल कौन याद होंगी यार, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। तो बस आज इन्हीं के ऊपर गाने जो है सुनवा रहा हूँ क्योंकि आज इनका बर्थडे होता है और मैंने सोचा आज का दिन इतना खास है तो आज तो जरूर इनके गाने प्ले होने चाहिए भाई हमारे इस प्रोग्राम में। तो बस इन्हीं का एक और खूबसूरत गीत आपके रेडियो पर निकाल रहा हूँ, आप इनके गाने को सुनते रहेंगे आनंद के साथ। बाकी आप जो ये सुंदर सुंदर मैसेज पहुंचा रहे हैं इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लौट कर आता हूँ, उसके बाद आपके संदेश को शामिल करूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप जुड़े रहिए आनंद के साथ और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
9: 10, 9, 8, 7
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है जो मैंने निकाल दिया है आपके लिए और इसमें भी बहुत ही कमाल की लगी थी अपनी माधुरी जी।

खूबसूरत नगमा गाने से हो गए नजारा वो हर सुहे। शुक्रवार की सुबह, शुक्र है कि आज शुक्रवार है। सूर्य चाचू तो भैया चमक धमक के साथ निकल चुके हैं। गर्मी का जो है असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है आज की सुबह। चलिए, घंटी बज गई यानी कि मेरी भी एंट्री हो गई है। सुप्रभात, नमस्कारम, एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बेहतरीन खबर, श्रोताओं आपको बताते चलें भैया, एक बहुत ही कमाल की और बहुत ही काम की खबर आपके लिए लेकर आए हैं अपने उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। जी हाँ, तो भैया आपको बता दें, यूपी को मिला है एग्जाम्पलर अवार्ड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हाथों से एक अवार्ड मिला है। जी हाँ, और ये अवार्ड जो है भाई साहब, यूपी के ACEO को जो है अवार्ड, ACEO शशांक चौधरी जी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें, अपना जो यूपी है भाई साहब, अब बदल रहा है। यूपी के अंदर कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, कितनी खूबसूरत खूबसूरत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में। और ये जो अवार्ड है, ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा गौरव और सम्मान का अवार्ड है। तो इस अवार्ड के लिए सबसे पहले तो मिनी मिनी कंग्रेचुलेशन यार, बहुत ही खूबसूरत और एक हैपनिंग वाइब जो मुझे लग रहा है कि एक सुंदर सी वाइब आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश वालों को। और मुझे लगता है कि अपने यूपी में जो नई नई चीजें हो रही है ना, अपने उत्तर प्रदेश को जो हम बदलता हुआ देख रहे हैं, इसके लिए तो सच में यार मानना पड़ेगा, मतलब है ना। और मानना तो आपको ये भी पड़ेगा मुरादाबादी, कि अब मुरादाबाद भी बदल चुका है।

0: चलिए श्रोताओं, अभी तो मैंने आपको एक जानकारी दे दी है कि भैया ACEO को जो ये अवार्ड है वो इस अवार्ड को नवाजा गया है। लैंड लॉक्ड राज्य में सर्वोच्च स्थान एंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य अपना यूपी बन गया है। तो यूपी वासियों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जी हाँ, अब यूपी को मिला है एग्जाम्पलर अवार्ड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हाथों से ये अवार्ड मिला है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत इन्वेस्ट यूपी के जो ये ACEO हैं, मतलब ACEO जी को ये अवार्ड दिया गया है, शासन चौधरी जी को। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट खबर आज की सुबह उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। आनंद के साथ सुन रहे हैं आप आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो। आगे बढ़ेंगे शुक्रवार की सुबह में। तमाम सारे साथी तो जुड़ी रहे हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश मेरे पास आप लोग पहुंचा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक वॉइस नोट आया है, जरा सुन लेते हैं।
1: कैसे हैं पीतल नगरी के दोस्तों, आशा है आप सब अच्छे ही होंगे।
0: जी
1: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, जो आपके सिटी का है तड़कता भड़कता सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग, जो आपके सुबह को बनाता है बिंदास, देता है भरपूर जानकारियाँ और मिलते हैं अच्छे अच्छे नगमे। दोस्ती का कोई मोल नहीं होता, ये वो रिश्ते हैं जिनमें खून नहीं पर जान बसी होती है। इंसान तो विकल्पों का आदि है, विकल्प मिलते ही वे नए की खूबियां और पुराने की कमियां उसे नजर आने लगती हैं। नमस्कार, राधे राधे, सुनते रहिए FM 89.6 में कहो और सो भेजते रहिए अच्छे अच्छे SMS मैसेज वॉइस नोट नंबर 9837786696। जी हाँ, वही नंबर जो आपकी आवाज़ को पहुँचाएगा पूरे शहर तक और हो सकता है पूरे देश तक। नमस्कार, राधे राधे, मैं भूपी शर्मा, नगर पंचायत पगबड़ा से।
0: क्या बात है भूपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये आवाज़ अपने प्रोग्राम में सुनी है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों आप भी इतनी खूबसूरत आवाज़ें मुझ तक पहुंचा सकते हैं, अपने प्यारे प्यारे विचार अपने संदेश हम तक साझा कर सकते हैं। तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद खूबसूरत मैसेज के लिए। और चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, कुछ और संदेश भी मेरे पास पहुंचे हैं, जरूर मैं फटाफट से उन्हें शामिल करना चाहूंगा। नमस्कार प्रिय मित्र आनंद जी को, प्रोग्राम नियमित रूप से सुनता हूं लेकिन कार्य में थोड़ा सा व्यस्त हो जाता हूं, लेकिन आपको इस वजह से मैसेज नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं बहुत ही जो है दिल लगा के आपका प्रोग्राम सुनता हूं। काफी दिलचस्प प्रोग्राम आप पेश करते हैं आनंद जी। मेरा नाम गणेश प्रसाद है, मैं ये मुझे काठमांडू से मैसेज कर रहे हैं। गणेश प्रसाद हुजार काठमांडू से हमारे नियमित श्रोता हैं और हमेशा हमें सुनते हैं, आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। एंड कश्मीर से मेहराज साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं आज इस प्रोग्राम में, और बाकी रिहाना भी जुड़ चुके हैं आज की सुबह रानी नांगल से, और सबीना जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी जवाब पहुंच रहा है मेरे पास, तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे और अभी लौट कर आएंगे तो एक और खूबसूरत जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि जानकारियों से भरा प्रोग्राम है तो ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। आपको अभी लौट कर आएंगे तो फिर आपको एक कमाल की इन्फॉर्मेशन देंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आज की सुबह मैं पूछ रहा था कौन सी आइकॉनिक एंड डायनामिक पर्सनालिटी का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं मुरादाबादीज। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक गाना सुनते ही ना आपको उनकी जो कोरियोग्राफी है वो याद आ जाएगी, उनका जो चेहरा है, जो उनकी मुस्कान है, जिन्हें हम धक धक क्वीन के नाम से जानते हैं, वो याद आ जाएंगी आपको। अगर समझ में आ गया है कौन सी हीरोइन की बात कर रहा हूँ आज मैं इस स्टेशन पर, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा चुपके से 9837896896। सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। अभी लौट कर आएंगे, कुछ आपके हेल्थ के बारे में बात करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून विद मी आनंद। अच्छा, मैंने एक चीज़ बोली थी थोड़ी देर पहले, मैंने एक क्लू भी दिया था, वो बताने आ गया हूँ। एक्चुअली वो मेरे से एक्साइटमेंट में उनका नाम भी निकल गया था, अगर किसी ने ध्यान से सुना तो वो मेरे को बता सकते हैं। बाकी आनंद तो मेरे अंदर है ही और आनंद के साथ मैं भी हूँ, आनंद मेरे साथ ही, क्योंकि आनंद ही आनंद है, जहाँ आनंद जाता है वहाँ आनंद आ ही जाता है।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।

0: क्या आप पुराने गर्दन, कमर, कूल्हा, कंधे के दर्द से परेशान हैं? तो संपर्क करें दर्द के विशेषज्ञ डॉक्टर निदा नसीम से। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद लेकर आया है क्रोनिक पेन रिलीफ कैंप 17 मई रविवार को। यहाँ मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा आधुनिक तकनीकी से इलाज, वो भी बिना सर्जरी के, जैसे अल्ट्रासाउंड, सी आर्म गाइडेड नर्व ब्लॉक, PRP थेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री और सभी जाँचों पर 20% तक की छूट। समय याद रखिए, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। पता श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 9412504190।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
0: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।

0: मैं अभी जस्ट शीशा देख के आया, मेरे गालों पे भी तिल आ गया। ये गाना सुनते मतलब क्या बताओ यार,
1: बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल।
0: नहीं भाई, किसी किसी के लिए लक्की होता है।
1: क्या बात है,
0: अलका याग्निक जी की आवाज, मनीषा कोइराला और मैडम के साथ क्या कोरियोग्राफी की थी इस गाने में यार। शुक्रवार की सुबह है, आनंद के साथ है, आप लेकर आता हूँ एक कमाल की हेल्थ अपडेट, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

यार ये जो महंगाई है ना, ये गलियों से बाहर निकाल देंगे मुझे ऐसा लग रहा है एक दिन। ट्यूनिंग क्या है आपने एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। सुबह के 10 बज चुके हैं जी। जो लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं पहुंच जाओ यार, वीकेंड है। मैंने कहा छुट्टी वाली फीलिंग आ रही है, मेरे को भी आ रही है यार। अब छुट्टी नहीं चाहिए यार, अभी आप लोगों से बातें करनी है। बड़ी मुश्किलों से आए हो यार। ये बात थैंक यू इतनी तारीफ के लिए। और जिन बच्चों ने भैया अच्छे नंबर से पास कर लिया है मुरादाबाद में जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है स्टूडेंट का, उनको बहुत बहुत बधाइयां, कांग्रेचुलेशन। अब कुछ फटाफट से खबरें बता देता हूँ भैया। यूपी में एक साथ 84 PCS अफसरों का जो है वो ट्रांसफर हो गया है। जी हाँ भैया, ये जो खबर है ना, मतलब मेरे को लगा आप तक पहुंचनी चाहिए तो मैंने पहुंचा दी। बाकी रोज कमाने वालों के लिए भी एक झटका निकल कर ये आया भैया कि 5 किलो का जो सिलेंडर है वो अब 810 रुपए का हो गया यार। यानी कि हम जैसे लोगों के लिए आफतें आ रही है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं पाजी, समय के साथ सब ठीक हो जाता है ना। वो कहावत सुनिए आपने कि भैया थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। अब आपकी हेल्थ पर बात कर लेते हैं फटाफट से, बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ की बातचीत करना और हमारा दायित्व बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मुरादाबादी।

आनंद के साथ हैं आप। श्रोताओं, आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि आपको बीमारियां टच ना करें, आप बीमारियों से बचे रहें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? बीमारियों से अगर आपको बचना है तो उसके लिए आपको रोज पैदल चलना होगा। क्या कहा, हम तो रोज ही पैदल चलते हैं आनंद, बहुत ही बढ़िया। देखिए, जो लोग रोज पैदल चलते हैं और यार लोग जो रोज चाहते हैं कि भैया हम पैदल चलें और हमें चलना भी चाहिए, उनको कौन कौन से फायदे मिलते हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप पैदल चलते हैं, रोज पैदल चलने के फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपका दिमाग बहुत ही हेल्दी रहता है। जी हाँ, अगर आप पैदल वॉक करते हैं तो इससे दिमाग रहेगा आपका हेल्दी। रोज जो है वॉक करने से स्ट्रोक और मानसिक तनाव का खतरा कम हो सकता है। और आपको बता दें, हड्डियां आपकी मजबूत होंगी। अगर आप डेली चलते हैं तो उसे जो है आपकी हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। जी हाँ, नियमित चलने से हड्डियों की मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका मूड भी फ्रेश रहता है। जी हाँ, 30 मिनट जो लोग पैदल चलते हैं डेली, उनका तनाव और डिप्रेशन भी कम हो जाता है। वजन आपका कंट्रोल में रहता है। अगर आप रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक करते हैं तो इससे जो कैलोरी है वो बर्न होती है और फिटनेस भी बेहतर रहती है। आपको बताते चलें, छोटी सी आदत जो है ये आपकी आपको बड़े फायदे दिला सकती है। तो भैया, आज से पैदल चलने की आदत को अपनाइए और कहिए, जो फिट है वो हिट है। श्रोताओं, चलिए अब मेरा जाने का समय हो गया है। तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आज आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि आज की जो ये आप गाने सुन रहे हैं सुबह, वो कौन सी अभिनेत्री पर पिक्चराइजेशन है, यही आपको मैसेज करके बताना था। और तमाम सारे लोगों ने मैसेज किया, एक मौका और दूंगा अभी मैं आपको। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप अनार अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जी हाँ, अनार से त्वचा और बालों को बहुत सारे पोषण मिलते हैं। अनार के पोषक तत्व होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जी हाँ, अनार में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन के भी होता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये त्वचा और बालों को अंदर से मजबूत बनाता है। तो अगर आप अनार का सेवन नहीं कर रहे थे अभी तक, तो आप ज़रूर कीजिए। अनार आपकी त्वचा के लिए, यानी कि आपकी स्किन के लिए, आपके चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो भैया, इससे आपको नेचुरल ग्लो भी मिलेगा। तो अनार का इस्तेमाल आप जरूर करिए अपनी डाइट में। आपके बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, आपके बालों को पोषण जो जरूरी है वो मिलते हैं। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं अनार में। तो अनार का आप जरूर सेवन कीजिए, ये बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं और जो हेयर जिनके बढ़ नहीं रहे हैं उनकी हेयर ग्रोथ में भी काफी अच्छा असर देखने को मिलता है। जी हाँ, तो देखिए, ये अनार से जुड़ी कुछ बातें मैंने आपको बता दी। फटाफट से अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज की सुबह भाई, हम आपसे कह रहे थे कि कौन सी अभिनेत्री का बर्थडे है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, दिल से आप सभी का शुक्रिया इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए अब एक और गाना लगा रहा हूँ, रेखा भारद्वाज की आवाज़ में है, और ये

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी अस्थमा न्यूमोनिया

0: खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसे सही जिंदगी सही।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, मेरा जाने का समय हो गया है। खुशी आ गई स्टूडियो में, 10:12 हो गए हैं। आनंद के साथ यहाँ आज मैंने बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी के बारे में आपसे बात की। कौन है कमाल की एक्ट्रेस जिनका आज हम बर्थडे मनाते हैं, यही मैं पूछ रहा था। बहुत ही आइकॉनिक पर्सनालिटी है यार अपने आप में। मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है यार ये गाना, ऑफ कोर्स आपके अंदर से डांस आपका बाहर निकाल देगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आज फ्राइडे की सुबह मैंने ये सवाल पूछा था, 15 मई को हम कौन सी अभिनेत्री का बर्थडे मनाते हैं, बताने के लिए कॉलर जुड़िए मेरे साथ। हेलो हेलो मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हेलो हेलो,
1: ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी। कहाँ से हैं आप जरा अपने बारे में बताएं।
1: जी मैं सीटी सक्सेना हूँ, मैं मेन प्रकाश नगर चौराहा लाइन पर मुरादाबाद में रहती हूँ। और यहाँ पे हमारी एक वेज बिरयानी की स्टॉल भी लगती है जो कृष्णा दूध भंडार के जस्ट ऑपोजिट में, तो आप सब लोग आइए और हम स्वाद लीजिए उस चीज का।
0: अरे वाह, बिरयानी बिरयानी का स्टॉल लगाती हैं आप?
1: जी जी, वेज बिरयानी है और उसमें वैरायटी भी है, शाम बिरयानी भी है, तो आप आइए, मेरे हस्बैंड लगाते हैं, मैं भी।
0: अच्छा, ओ अरे वाह अरे वाह, प्रीति जी मतलब आपने जो है कमाल कर दिया, फ्री में ही अपना प्रचार कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे आपकी आवाज भी बहुत बढ़िया है प्रीति जी, बड़ा हल्ला गुल्ला आ रहा है, कहाँ हैं आप अभी?
1: क्योंकि मैं मेन चौराहे पे ही रहती हूँ, मेरा घर इधर ही है, बिल्कुल अंदर घर है और मेरा बाहर जो है स्टॉल लगता है, तो उस वजह से
0: ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा प्रीति जी। बाहर से बिरयानी खरीदेंगे, घर में बैठ के आराम से खाएंगे आपके
1: जी।
0: है ना, ये तो अच्छी बात है। और बताइए सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में प्रीति मैम?
1: बहुत बढ़िया, आप बताइए, आपकी आवाज हम सुबह सुबह एकदम रेडियो ऑन कर लेते हैं और मेरी बेटी बहुत अच्छे से एंजॉय करती है आपके सॉन्ग।
0: अरे वाह अरे वाह, क्या नाम है, क्या नाम है आपकी डॉटर का, मुझे जरा नाम बताओ।
1: मेरी डॉटर का नाम है श्रीधी।
0: अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा ये बताओ प्रीति मैम, रेडियो कब से सुन रही हो, क्या अच्छा लगता है रेडियो पे आपको?
1: रेडियो मुझे अभी 1 साल ही हुआ है सुनते हुए, उससे पहले मैं कुछ मतलब ऐसे ही जॉब कर रही थी, अपना मेरा सलून है खुद का, तो मैं वहीं पे ही अपना कर रही थी, क्योंकि मेरा ऑपोजिट जहाँ पे वेज बिरयानी लगती है ना,
0: हाँ।
1: तो वहाँ पे हमारी शॉप भी है कॉस्मेटिक की और शुभ ब्यूटी सलून।
0: एक नारी सब पर भारी भाई, इतने सारे काम कर रही है, मेरे को तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक ही काम कर रहा हूँ देखो यार।
1: हाँ जब से मेरी बेटी हुई है ना सीधी, तब से मैं थोड़ा सा अभी मदरहुड एंजॉय कर रही हूँ।
0: अरे वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत जरूरी है मैम खुद की लाइफ को और अपने बच्चों को टाइम देना जी। प्रीति जी आपसे बात करके सच में बड़ा मजा आ रहा है, टाइम थोड़ा सा कम है। आज कौन सी अभिनेत्री का बर्थडे मनाते हैं यही मैं आपसे पूछ रहा था, क्या आप इनको जानती हैं, क्या आपने इनको कभी पिक्चर में देखा है?
1: जी बिल्कुल देखा है, माधुरी दीक्षित जी तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं और उनकी मूवीज तो मुझे बहुत ही पसंद है, हम आपके है, कौन है, बहुत प्यारा उनका रोल, पर मतलब उनका
0: और ही अलग है। एब्सोल्युटली, और आपका और भी बहुत अलग है, कांग्रेचुलेशन, ये तालियां आपके लिए, बधाइयां, एकदम सही जवाब दिया है आपने। तमाम लोग आपको रेडियो पे सुन रहे हैं, तमाम नहीं लाखों लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं प्रीति जी आज की सुबह?
1: जी बिल्कुल, अगर आपको अपनी सुबह अच्छी करनी है तो प्लीज आनंद जी को सुनिए और उनके गाने एंजॉय करिए, बहुत अच्छे गाने प्ले करते हैं ये और लोगों की बहुत नॉलेज भी मतलब अवेयर करते हैं,
0: बहुत जरूरी है नॉलेज। देखिए प्रीति मैम रेडियो के
1: बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, गीत संगीत के साथ साथ रेडियो पे सही जानकारियों का बहुत जरूरी है होना, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आजकल के टाइम में बहुत हर चीज, अगर आप आपके घर में न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है तो आप रेडियो से एंजॉय कर सकते हैं, उसमें काफी तरीके की आप न्यूज शेयर करते हैं तो जो की बहुत हेल्पफुल होती है महिलाओं के लिए भी और जेंट्स के लिए।
0: दैट्स ग्रेट प्रीति जी, बहुत मजा आया, लवली टॉकिंग टू यू, जरूर आपकी बिरयानी खाने आएंगे पक्का हम।
1: बिल्कुल आइएगा, मैं बिल्कुल आपको एक पार्टी है तो पार्टी ही दूंगी बिल्कुल।
0: अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, पीछे से पीछे आरजी खुशी भी आपकी आवाज सुन के हंस रही है, वो भी मुस्कुरा रही है, अरे वाह।
1: मैंने उनको भी बोला था आने को।
0: पक्का पक्का, आप सबको दावतें देती रहिए, हम आ जाएंगे दावतें इश्क करने। चलिए चलिए मैम, लवली मीटिंग यू, सॉरी लवली टॉकिंग टू यू, मिला तो नहीं हूँ लेकिन जरूर मिलेंगे मैम। चलिए मैम, बाय बाय, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच। क्या बात है यार, आज की नारी सब पर भारी, इतने सारे काम करती हैं प्रीति जी, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा हमको। आज माधुरी जी का बर्थडे मनाते हैं यही पूछा था, यही सही जवाब दिया है प्रीति मैडम ने, तालियां, कांग्रेचुलेशन। चलिए गाना सुनते हुए बाय करूंगा आपको।

0: भाई मैंने जादू नहीं किया, जादू आप लोग करते हैं यार, इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज करते हैं, थैंक यू सो मच। मेरा जाने के टाइम हो गया भाई, 10:20 हो गया यार, अभी के लिए साइनिंग ऑफ, कल मिलते हैं आपसे। स्टेशन ऑफ द नेशन पे बहुत सारे लिसनर जुड़े हैं, हाय गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, मेरा नाम सुहानी है, शिवपुर मुरादाबाद से बात कर रही हूँ, माधुरी दीक्षित, दिस इज राइट आंसर, थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल मैसेज करने के लिए सुहानी। कश्मीर से मैसेज पहुंचा था मेरे पास, एंड इसके अलावा मेरे पास मैसेज आया था यहाँ पर, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, आनंद जी आप कैसे हैं, आपकी तो बात ही अलग है, क्या बात है जी, और लिखते हैं आपकी बातों का जादू ही अलग है, आप जो है मॉर्निंग एकदम जबरदस्त और एनर्जेटिक बना देते हो, आपकी वॉइस का स्टाइल तो मतलब दिल को टच कर जाता है, यू आर रॉकिंग ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच इतनी ब्यूटीफुल बातों के लिए निसार साहब, आपका धन्यवाद, हम मतलब निसार हो जाएंगे ऐसी बातें करोगे तो, हाँ थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं फिलहाल यहाँ से जाता हूँ, आप ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। आरजी आनंद जी कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग, माधुरी दीक्षित जी का आज जन्मदिन मनाते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हाय गुड मॉर्निंग, आपका जो है स्टाइल बहुत अच्छा है, थैंक यू, नमस्कार आनंद जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये डी के अरोड़ा जी चंदन नगर से मैसेज करते हैं, और मेरे पास मैसेज पहुंचा है सबीना खान जी का, रहमत नगर से सही जवाब पहुंचाया है, दुर्गेश जी ने मुझे सही जवाब दिया था कल्याणपुर से, रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं विक्की सागर जी, और बाकी जो लोग मैसेज कर रहे हैं उन सभी का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कल मिलते हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर, ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए और अपनी सुबह की बेहतरीन शुरुआत कीजिए, अगली जो कंपनी खुशी के साथ एंजॉय करेंगे, बाकी मस्त रहिए, जगास रहिए, हेल्दी रहिए, स्टे ट्यून रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, क्योंकि ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। भी आरजे आनंद लेता है अलविदा, जुमा मुबारक हो, मिलते हैं कल सुबह, बाय।
1: क्या आप पुराने गर्दन, कमर, कूल्हा, कंधे के दर्द से परेशान हैं, तो संपर्क करें दर्द के विशेषज्ञ डॉक्टर निदा नसीम से। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद लेकर आया है क्रोनिक पेन रिलीफ कैंप 17 मई रविवार को, यहाँ मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा आधुनिक तकनीकी से इलाज, वो भी बिना सर्जरी के, जैसे अल्ट्रासाउंड, सी आर्म गाइडेड नर्व ब्लॉक, पीआरपी थेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री और सभी जाँचों पर 20% तक की छूट। समय याद रखिए 10:00 से 2:00 तक, पता श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 9412504190।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: सर मिल ही नहीं रहा।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: कॉल 7500153841।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और साथियों, फ्राइडे की सुबह है, खुशी आपके साथ। और वक्त हुआ है 10:30, मन तन दोनों ही डोल रहे थे इस गाने पर। गाना इतना ब्यूटीफुल और डांस माधुरी जी का, ओए क्या कहने। आज तो हमारी जो फीमेल्स इस ट्रैक को सुन रही थी वो भी खुद को माधुरी दीक्षित समझ रही थी। हाँ, जी दोस्तों, जैसे आप सब जानते ही हैं कि आज माधुरी दीक्षित जी का बर्थडे है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इन माधुरी जी के बारे में। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कमाल की एक्टर्स हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताती हूँ कि बॉलीवुड की उस मुस्कान का जन्मदिन है जिसने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, अपनी अदाओं और डांस से करोड़ों दिलों को, जी हाँ, करोड़ों दिलों पर राज किया है। और हमारी फॉर एवर ग्रेसफुल और एवरग्रीन एक्टर्स माधुरी दीक्षित जी का आज बर्थडे है, तो उन्हीं के बारे में हम आपसे सवाल भी पूछेंगे और कुछ डायलॉग भी पूछेंगे, आप हमें बताएंगे। लेकिन अभी तो शो की शुरुआत ही हुई है, अभी तो खुशी यहाँ पर आई है ना। बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपकी मॉर्निंग को बनाएगी और भी ज़्यादा सुपर डुपर लाउड। और अब मुस्कुरा भी दीजिए, माना कि आप काम में व्यस्त हैं लेकिन मुस्कुराना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, खुद के लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा यार पानी वानी पियो। माना आपने अभी नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट सब हो गया है आपका, और कुछ अभी तो ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ अपने कामों में व्यस्त हैं। अब ये खुशी आपके साथ रहने वाली है 2 घंटे तक। आप कहीं मत जाइए और एक बेहतरीन ट्रैक आप आज की सुबह आप सभी के लिए, आप इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइए, दिल से मुस्कुराइए। और एक बहुत ही शानदार सा गाना आप सभी के लिए ऑल ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

0: ये है कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
3: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
2: अरे वाह।
3: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
2: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
4: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
0: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और समय हुआ है यहाँ पर 10:43। बहुत ही खूबसूरत सा फ्राइडे का दिन है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और वीकेंड की प्लानिंग भी बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं जो ऑफिस में वर्क करते हैं वो पहले से प्लान कर लेते हैं कि क्या स्पेशल करना है वीकेंड पर, क्योंकि दोस्तों वीकेंड अपने आप में बहुत स्पेशल होता है जो वर्किंग होते हैं स्पेशली उनके लिए, क्योंकि एवरी डे लाइक बहुत बिजी रहते हैं, काम का प्रेशर, बहुत सी टेंशंस होती हैं, तो कुछ समय कुछ टाइम अपने लिए भी होना चाहिए और उस टाइम को अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर पल को उस टाइम को नहीं हर पल को अच्छे से जीना चाहिए एवरीवन। दोस्तों जिंदगी की भागदौड़ में अगर कोई चीज हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है तो वो है परिवार, वो है फैमिली। जी हाँ दोस्तों, आज 15 मई है और पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इस खास दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1993 में की गई थी ताकि लोगों को परिवार के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके, क्योंकि परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं बल्कि वो एहसास है जहाँ बिना कहे हमारी खुशी और दर्द समझी जाती हैं, और कभी माँ की ब्लेसिंग्स में, कभी पिताजी की हिम्मत बनकर, जी हाँ दोस्तों, कभी भाई बहन की नोकझोंक बनकर, तो कभी दादा दादी के प्यार भरे किस्से में परिवार हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। लेकिन दोस्तों आज के समय में परिवार कई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है, जैसे बच्चों की पढ़ाई एंड उनकी हेल्थ, टाइम की कमी और रिश्तों में बढ़ती दूरियां। ऐसे में सबसे ज़रूरी है एक दूसरे को समय देना, समझना और साथ निभाना। तो दोस्तों आज इस ब्यूटीफुल डे पर हम आपसे और भी बातें करेंगे एंड आपकी जो यहाँ पर मैसेज आए हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं, और आज की सुबह हमारे जो प्यारे प्यारे से लिसनर्स हैं क्या क्या पहुँचाते हैं ज़रा उनके दिल की बात भी जान लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आज़ाद नगर करूला मुरादाबाद से शहीद शारिक अली जी, और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं शाद अंसारी जी। ये दोस्त हमेशा दोनों साथ ही रहते हैं और मैसेज भी साथ पहुँचाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है आप दोनों की जोड़ी, आप दोनों की दोस्ती ऐसे ही हमेशा सलामत रहे और साथ रहे आप सब, बस यही हम तो चाहते हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आई होप आप भी अच्छे ही होंगे। और इन्होंने बहुत ही प्यारी सी लाइनें भी कुछ भेजी हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे, बट थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। अगला मैसेज हमारे पास आया है, आरजी जी को हमारा गुड मॉर्निंग नमस्कार। धनूरी तीली वाला हरिद्वार से ये मैसेज पहुंचाते हैं, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया, आयान बाबू जी का मैसेज हमारे पास आया है। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हम सभी दोस्त के साथ आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ बड़ी ही प्यारी लगती है और आपको बहुत दिल से सुनते हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं सोनू कुमार जी, सेक्टर 10 बुद्धि विहार से। श्रोताओं, हमने परिवार की आज बात की है, फैमिली की बात की है, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में, इस ट्रैक को हम आपको सुनवाते हैं और लौट कर आते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाइएगा और अपने संदेश भी हमें पहुंचाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837898896। ये खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे हैं हरिहरन, साथ में कविता कृष्णमूर्ति जी की बहुत प्यारी सी आवाज़ में, ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के लिए, इंजॉय कीजिएगा। Yeah!

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, नो डाउट। एंड आप सभी के संदेश, आप सभी की यहाँ पर जो दिल की बातें हैं ना, वो आपने यहाँ पर पहुँचाई हैं। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, उनको हम शामिल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो हम देखते हैं श्रोताओं, जैसे आजकल कितनी सारी चीज़ें, कितने बदलाव आ गए हैं ना परिवार के साथ। अब परिवार अलग अलग हो गए हैं, दूर दूर रहने लगे हैं। दोस्तों, परिवार सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता है, बल्कि वो ताकत होता है जो हमें हर मुश्किल में संभाल लेता है। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आ जाएँ, अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। देखिए ना, हमारी पांचों उंगलियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जैसे ही वो एक साथ जुड़ती हैं तो एक मजबूत मुट्ठी बन जाती है। ठीक वैसे ही परिवार भी ऐसे ही होता है। हर सदस्य अलग सोच, अलग स्वभाव का होता है, लेकिन जब सब साथ होते हैं तो एक दूसरे की सबसे बड़ी हिम्मत बन जाते हैं। आजकल पढ़ाई, नौकरी और करियर की वजह से अक्सर परिवार अलग अलग शहरों में रहने लगे हैं। किसी का बेटा बाहर स्टडी करता है, कोई नौकरी के लिए दूर है, तो कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। लेकिन जैसे ही कोई त्यौहार आता है या घर में कोई फंक्शन होता है, पूरा परिवार फिर एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। वो हंसी, वो शोर, एक साथ बैठकर खाना खाना, पुरानी बातें याद करना। सच कहूँ तो घर तभी घर लगता है जब परिवार साथ होता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज पर ना आप अपने परिवार को दिल से थैंक यू कहिए, और क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनती है, तो एक थैंक यू तो बनता है ना। हाँ, उनको भी थैंक यू बोलिए जिनको आप बहुत ज़्यादा सताते हैं। कौन है वो? छोटी सिस्टर। हाँ, घर में बहन होती है ना, और जो भाई होते हैं वो बहन को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ाते भी हैं और लाइक लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक होती है वो रिश्ते में, लेकिन बहुत खूबसूरत होता है। चाहे वो मम्मा का हो, डैड से भी, लेकिन मम्मी से तो बच्चे खुल के मस्ती मजाक कर लेते हैं, लेकिन फादर साहब से इतना नहीं कर पाते हैं। पापा भले ही बहुत स्वीट होते हैं नेचर के भी, और वो ऊपर से थोड़ा सा होता है कि स्ट्रिक्ट रहना भी चाहिए वरना बच्चे थोड़ा डरेंगे भी नहीं। और पापा का प्यार बहुत ही होता है बच्चों के लिए, लेकिन मम्मा से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होता है लड़कों का। लड़कियों का भी होता है, लेकिन लड़कों का ज़्यादा होता है। वो हर एक मम्मा से कह पाते हैं जो वो पापा से नहीं कहते हैं। अगर उनको कहीं जाना होता है, कोई परमिशन चाहिए होती है, तो वो पहले मम्मी के पास जाते हैं और फिर मम्मा पापा के पास जाती हैं, फिर वो मान जाते हैं, फिर बच्चे अपने काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं जहाँ उनको जाना होता है। कभी कभी होता है ना कि फैमिली में फादर साहब मना करते हैं कहीं जाने के लिए कि नहीं माने जाना है, लेकिन वो मम्मी को ऐसे बच्चे मनाते हैं कि मम्मा फिर पापा को मना लेती हैं, फिर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ईजिली हो जाती हैं। दोस्तों, परिवार ना बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, बहुत खूबसूरत होता है। एंड जब एक साथ सब लोग साथ में होते हैं, बैठकर बातें करते हैं, पहले बचपन के टाइम में कितना अच्छा होता था ना, जब पूरी फैमिली साथ होती थी, दादा दादी, मम्मा पापा, बहन भाई, पहले जॉइंट फैमिली भी हुआ करती थी, चाचा चाची, पूरी फुल फैमिली होती थी। लेकिन अभी तो आपको जैसे मैंने बताया है कि स्टडी की वजह से शहरों में लोग बाहर अलग अलग जगह रहने लगे हैं, नौकरी के लिए रहने लगे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना है। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, भले ही सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो कॉल पर बात हो जाती है, लेकिन जो साथ बैठकर एक साथ बातें होती हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है ना दोस्तों। साथ में खाना खाना, गप्पे मारना और वो पुरानी बातों को याद करना बहुत स्पेशल होता है। तो मैं कहती हूँ आपसे, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो एक थैंक यू तो आज बनता है ना उनके लिए। तो जल्दी से उनको थैंक यू बोलिए और मुझे भी मैसेज पहुंचाइए। नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। और आज बहुत खूबसूरत अभिनेत्री का भी बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, माधुरी दीक्षित जी का, डांस की क्वीन है वो, और उनका ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले करने वाली हूँ।
एक गाना वो ऐसा है जिस पर आप थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे, वो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर और भी बहुत प्यारे प्यारे संदेश आए हैं, तो मैं उनको स्किप नहीं कर सकती हूँ, उनको मैं अभी यहाँ पर रीड करती हूँ क्या क्या पहुँचाते हैं हमारे ब्यूटीफुल लिसनर्स। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं विकी सागर जी मुरादाबाद से, कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको भी। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सहारनपुर से, जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीस जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग आरजे जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, और कहते हैं कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, अपना प्यारा सा संदेश आपने पहुँचाया। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नईमूल अकरम जी का सिरसवा दोराहा से, और ये कहते हैं आज माधुरी दीक्षित जी का जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड कहते हैं मैम हमें साथ में इनके, अच्छा इनके फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ ये सुन रहे हैं रेडियो को, अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये एक प्यारा सा ट्रैक एंजॉय कीजिएगा, मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है, आपने ये सुना भी है और आप इस गाने पर थिरके भी हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा और अपने श्रोताओं को हाँ थिरका देते हैं यार, इतना प्यारा सा गाना है, सुबह सुबह बहुत सारे काम करके आप थक गए हो, आप थोड़ा सा डांस करो ताकि आपका माइंड जो है वो और ज़्यादा फ्रेश हो जाए।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोताओं? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो, यूजर आईडी, पासवर्ड और

OTP डाल दिया। सुनील, अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, 20,000 रूपए डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है, बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या है? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, ओटीपी या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी ओटीपी और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। ओटीपी, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूँगा। दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं, तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम। लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। ओटीपी और पासवर्ड कभी ना बताएं। डराने वाले मैसेज से सावधान रहें। खुद बैंक से संपर्क करें। जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद अपने आप। गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहाँ पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें, और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और समय हुआ है यहाँ पर 11:21 राइट नाउ। एंड दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित जी की। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं और दोस्तों, हम उनकी करियर पर कुछ नज़र डालते हैं। और दोस्तों, आपको पता है माधुरी दीक्षित जी अपना 59वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। कभी पैथोलॉजिस्ट बनने का सपना देखने वाली माधुरी दीक्षित जी, माधुरी दीक्षित जी की पहली फिल्म अबोध फ्लॉप रही थी, लेकिन अपनी मेहनत, शानदार अभिनय और बेहतरीन डांस के दम पर वह आगे चलकर बॉलीवुड की मशहूर धक धक गर्ल बन गई। 1999 में उन्होंने डॉक्टर श्रीराम माधव नैन से शादी की। और दोस्तों, डांस में बचपन से ही रुचि थी माधुरी दीक्षित जी को, बचपन से डांस में रुचि थी। उन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र से डांस सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने करीबन 8 साल तक कथक की ट्रेनिंग ली। माधुरी जी को 9 साल की उम्र में कथक डांसर के तौर पर स्कॉलरशिप भी मिली। उसी समय एक परफॉर्मेंस के बाद पहली बार उनका नाम अखबार में छपा था। माधुरी दीक्षित जी पढ़ाई में भी बेहद बहुत ज़्यादा अच्छी थी और पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। उनकी पहली फिल्म अबोध समेत शुरुआती समय में कई फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन बाद में अपनी प्रतिभा के दम पर वह बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री में शामिल हो गईं। तेजाब फिल्म से खुली माधुरी जी की किस्मत। जी हाँ श्रोताओं, माधुरी दीक्षित जी की किस्मत 1988 में आई फिल्म तेजाब से बदली। मोहिनी के किरदार और 1, 2, 3 गीत ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया, जिसके बाद राम लखन, प्रेम, प्रतिज्ञा और त्रिदेव जैसी फिल्मों ने उनकी सफलता को नई ऊंचाई दी। माधुरी दीक्षित जी को 1992 की सुपरहिट बेटा के गीत धक धक करने लगा से धक धक गर्ल की पहचान मिली। अपने शानदार डांस और दमदार अभिनय के दम पर वे 90 के दशक की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्री में शामिल रहीं। दोस्तों, आज माधुरी जी का जन्मदिन हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। माधुरी जी ऐसे ही सभी के दिलों पर राज कर रही हैं, करती रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे लिए एक से बढ़कर एक फिल्म लाती रहें। तो श्रोताओं, अभी और भी हम बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर संदेश आपके आए हैं, उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। हमारे जो श्रोता हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग निखत। ये मैसेज हमारे पास निखत फातिमा जी पहुँचाती हैं, कहती हैं दी आज मेरा बर्थडे है और हम आप सभी को इन्वाइट करते हैं, आप सब हमारे घर आ जाइएगा, आज सब मिलकर पार्टी करेंगे। अरे वाह, क्या बात है निखत। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक वो बड़ा ही प्यारा ट्रैक है ना, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निखत फातिमा जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लाइफ में हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो एंड जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सब आपके पूरे हों एंड जो भी आप चाहती हैं वो सब कुछ आपको मिले। हम तो यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से। और अगेन आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है रानी नांगल से रिहाना जी का, ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं और हमारे हालचाल भी जानना चाहती हैं। तो हम बताएं बहुत ही अच्छे हैं एंड उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले सभी श्रोता भी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मुस्कुरा भी रहे होंगे। अभी एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल जी का, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरप्रीत, गुरुशब्द सिंह राहुल जी का मैसेज हमारे पास आया है और सर हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एंड एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आज की सुबह सुनवाते हैं।
बहुत ही प्यारा सा है, मधुर सी, आप सबकी इतनी खूबसूरत सी आवाज़ है, तो ये गाना आप सभी को हम डेडिकेट करते हैं। और माधुरी जी, अनिल कपूर जी पर ये फिल्माया गया ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत, फ्रॉम द मूवी बीटा से। तो इस गाने को आप इंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गाने के उस पार, आप कहीं मत जाइए, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाइए, खुशी आपसे कहती है, दिल से मुस्कुराइए।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ साथियों, जहाँ पर बातें होती हैं बहुत सारी, आपकी नई नई नई जानकारियाँ भी होती हैं, आपकी हेल्थ की बात भी होती है और पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो भी आपको अपडेट मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर एंटरटेनमेंट का डोज भी आपको मिलता ही है, खुशी ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए लेकर आती है। और दोस्तों एक खूबसूरत सा नारा, मैं जली हुई राख नहीं अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर वो मैं शहीद हूँ। महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर जी की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। और दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सखा एवं निषाद समाज के आराध्य देव निषाद राज जी की आज जयंती है, तो उनकी जयंती पर हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे आपके संदेश भी आए हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, नमस्कार हमें पहुँचाते हैं सोनू गौतम जी रामपुर से, और कहते हैं खुशी जी आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। एंड कहते हैं कि आपने जो ट्रैक प्ले किए थे तो हम उस पर डांस भी कर रहे थे। अरे वाह क्या बात है, खुशी यही तो चाहती है कि आप सब हमेशा खुश रहें। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, बाबू अंसारी जी, महराज अंसारी जी। और ये कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, हम बहुत ही अच्छे हैं। कहते हैं कि आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, मनोरंजन के साथ साथ बहुत सी जानकारियाँ भी शो के माध्यम से मिलती हैं जो कि बहुत काम की होती हैं। और आप सॉन्ग भी बहुत ही अच्छे प्ले करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ये हमें शबीना खान जी मैसेज पहुंचाती हैं रहमत नगर मुरादाबाद से, कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैम आप छोटी सिस्टर के बारे में बातचीत कर रही थी, मैम हमारी भी छोटी सिस्टर हैं घर में, किसी भी टाइम हम उनको चाय कॉफ़ी के लिए बोलते हैं बनाने के लिए, तो वो कभी मना नहीं करती है एंड वो हमेशा बना देती है हमारे लिए। छोटी सिस्टर बहुत नाराज़ भी होती है मगर कभी मना नहीं करती है कुछ भी काम करने के लिए, हमेशा वो मतलब मैं किसी भी काम के लिए बोलती तो वो मना नहीं करती। वाह यही तो है छोटी बहन का प्यार एंड बड़ी सिस्टर का प्यार, और दो बहनें जब साथ होती हैं ना तो घर में बहुत ज़्यादा उधम तो मचाती ही हैं, लेकिन बहुत प्यारी भी होती हैं, घर को संवार कर रखती हैं। और जब कहीं फंक्शन में जाना होता है छोटी बहन को, तो बड़ी बहन उसको पहले से ही तैयार करने में लग जाती है, सारे काम छोड़ छाड़ के कहती है चल मैं तुझे तैयार कर देती हूँ क्योंकि फंक्शन में जाना है, और अच्छे से उनके बालों को डिज़ाइन की चोटी बनाना, मेकअप करना, ब्यूटीफुल तरीके से तैयार करके भेजते हैं, चाहे स्कूल हो या फिर चाहे कहीं फंक्शन में जाना हो। मेरी कोई छोटी सिस्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा छोटा ब्रदर है, मैं अपनी अगर बात करूँ तो जब छोटा था मेरा ब्रदर स्कूल जाया करता था तो मैं उसको तैयार कर कर भेजती थी, लाइक आँखों में काजल लगाकर, बालों में अच्छे से उसके बाल वाल को डिज़ाइन मतलब बाल बनाकर और पाउडर वगैरह लगा के अच्छे से मैं उसको स्कूल भेजती थी, तो वो जाकर मतलब क्या करता था, जो मैं आँखों में काजल लगा रही थी वो पर्दे मतलब पर्दे से जाकर ना जो पर्दा होता है घर में उसे साफ किया करता था। मैं पहले उसको तैयार किया करती थी जब स्कूल टाइम में जब छोटा सा था, तो पहले तो वो शौक में लगवा लेता था मुझसे काजल, उसके बाद जाता था रूम में साइड में पर्दे में वो आंखों को साफ करके काजल, और वो बाहर आ जाया करता था, बोलता था दीदी आपने तो मुझे भूत बना दिया है, सब मेरे फ्रेंड्स हंसेंगे, आपने मेरे को काजल क्यों लगाया है? मैंने बोला काजल इसलिए मैंने तुम्हें लगाया है ताकि तुम्हें नजर ना लगे। और अब वो इतना बड़ा हो गया देखने में मुझसे भी बड़ा लगता है, लाइक कहता है कि दीदी पहले आप मुझे बोलती थी ना कि मैं आपसे बड़ी हूँ, देखो अब साइड में यहाँ पर बराबर में खड़े हो, मैं आपसे बड़ा हूँ। मैंने बोला हाँ भाई तुम मुझसे बड़े हो, खुश तो मुस्कुराता है लेकिन हमारी वो नोकझोंक नटखटपन अभी भी बरकरार है। एंड चाहे बहन भाई हो सिस्टर हो बहुत प्यार होता है और वो ऑलवेज हमेशा ऐसा ही रहता है चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं।
अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी जय श्री राम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं बबलू सैनी जी, ग्राम कल्याणपुर पीतल नगरी से, एंड कहते हैं कि आप किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, एक से बढ़कर एक गीत हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक यहाँ पर सिलेक्ट किया है, माधुरी दीक्षित जी पर फिल्माया गया ट्रैक है, बहुत ही प्यारा सा, फ्रॉम द मूवी साजन से। तो इस गीत को आप सब सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
9: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
8: पर पापा।
9: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
10: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
11: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
12: आज का दिन है बेहद पावन, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है नवरात्रि का पावन पर्व, शक्ति श्रद्धा और नारी सम्मान का उत्सव।
11: और इस खास मौके को और भी विशेष बना रहा है एक और गर्व का अवसर, उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष का सफल, सशक्त और समर्पित सफर।
12: नवरात्रि के पहले दिन हम पूजन करते हैं माँ शैलपुत्री की, जो शक्ति, स्थिरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और यही शक्ति आज उत्तर प्रदेश हर बेटी में दिखाई देती है।
11: पिछले 9 वर्ष में राज्य ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और इस विकास यात्रा में महिलाओं की भागीदारी सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरी है।
12: आज की बेटियां सिर्फ सपने नहीं देख रही बल्कि उन्हें पूरा भी कर रही हैं। सरकारी योजनाओं के सहयोग से वे बन रही हैं आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मविश्वासी।
11: इन्हीं प्रेरणादायक कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक खास प्रस्तुति, बिटिया की चिट्ठियां,
12: जहां हर चिट्ठी में छुपी है एक नई कहानी, संघर्ष से सफलता तक की और एक नई पहचान की।
11: तो आइए इस पावन अवसर पर माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद लेकर हर बेटी की शक्ति को नमन करें।
12: और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त आरजरीना, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
11: बदलती उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
13: कभी आंखों की नमी भी इजहार बन जाती है जब उम्मीद का हाथ थाम ले कोई रहबर, तो एक छोटी सी बिटिया की चिट्ठी भी सरकार तक पहुंच जाती है। FM मुरादाबाद 89.6 MHz प्रस्तुत करते हैं बिटिया की चिट्ठियां। और आज जिस बिटिया की चिट्ठी मेरे हाथ लगी है वो बहुत ही खास है। ये चिट्ठी है कानपुर की एक बहादुर बिटिया खुशी की, जो बोल और सुन नहीं सकती। अपनी बात ना कह पाने की तड़प उसे अक्सर परेशान करती थी, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी कि बाबा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी मदद जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के सहारे 20 नवंबर 2025 को खुशी बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ी और अकेले 90 किलोमीटर का सफर तय कर लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास तक जा पहुंची।
11: माँ कहती थी मैं हमेशा चुप रहूंगी, पर मेरे दिल में आवाज थी सुनने की, बोलने की। मैं चलकर लखनऊ आई सिर्फ एक उम्मीद के लिए कि मुझे बाबा जी से मिलना है। मुझे उम्मीद थी कि बाबा मेरी तकलीफ समझेंगे और उन्होंने समझा भी।
13: जब खुशी CM आवास के बाहर रोती हुई मिली तो पुलिस उसे थाने ले गई। वहां खुशी ने इशारों और अपनी स्क्रैच आर्ट के जरिए पुलिस को समझाया कि वह बाबा जी से मिलना चाहती है। पुलिस ने उसके घर वालों को फोन कर बुलवाया और वापस घर भेज दिया। खुशी को लगा कि उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। निराश मन से वो वापस लौट गई। लेकिन कहते हैं ना, इरादे मजबूत हो और सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति संवेदनशील हो तो चमत्कार भी असंभव नहीं है।
11: मुझे लगा कि अब मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, लेकिन घर वापस आने के 4 दिन बाद एक सरकारी गाड़ी आती है। एक अंकल उससे निकलकर घर वालों से कुछ कहते हैं, जिस पर मेरे पापा इशारों में बताते हैं कि चलो तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बुलाया है। हम सब तुरंत तैयार होकर लखनऊ चल दिए बाबा से मिलने के लिए।
13: सीएम योगी ने ना सिर्फ खुशी से आत्मीयता से मुलाकात की, बल्कि उसकी पढ़ाई, कान की मशीन और परिवार के लिए आवास की व्यवस्था जैसे सभी जरूरी निर्देश दिए और ये थी खुशी की जिंदगी बदलने की शुरुआत। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद खुशी का इलाज शुरू हुआ। पहले एक छोटा ऑपरेशन हुआ लेकिन उसके फायदे नहीं मिले। उसके बाद डॉक्टर ने जांच की और बताया कि खुशी को कोक्लियर इम्प्लांट की जरूरत है, जिसका खर्च 6 से 7 लाख रुपए है। ये सुनकर खुशी का परिवार निराश हो गया, क्योंकि एक गरीब परिवार के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने खुद इसका पूरा जिम्मा उठाया और आखिरकार जन्म से जो खुशी ना सुन सकती थी और ना बोल सकती थी, उसकी दुनिया बदल चुकी है। 19 साल के लंबे सन्नाटे के बाद खुशी ने जब पहली बार अपनी जुबान खोली तो उसके मुंह से निकले पहले शब्द थे,
11: थैंक यू बाबा जी।
13: हमारे मुख्यमंत्री के लिए कानपुर की ये बिटिया अपनी चिट्ठी में लिखती है कि
11: प्रिय बाबा जी, मेरे पास शब्द नहीं थे, फिर भी आपने मेरा दर्द सुन लिया। जब मैं लखनऊ आई थी तो मेरी आंखों में आंसू थे, पर आपने मुझे अपनी बेटी की तरह गले लगाया। आज सालों की खामोशी के बाद मैं पहली बार सुन पा रही हूँ। अब मैं पढ़ूंगी, पुलिस ऑफिसर बनूंगी और आपसे किया गया वादा और अपने परिवार का सपना पूरा करूंगी।
13: वाकई जब नेतृत्व में संवेदनशीलता हो तो खुशी जैसी हजारों बेटियों के सपनों को एक नए पंख मिल जाते हैं। शुक्रिया योगी जी। ये थी इस बिटिया की चिट्ठी। जब सत्ता में संवेदनशीलता और दिल में अपनापन हो तो किसी की खामोशी भी आवाज बन जाती है। एक बेटी की उम्मीद जब सच बनती है तो उसकी चिट्ठी सिर्फ कहानी नहीं, हजारों सपनों की उड़ान बन जाती है। प्रदेश की बेटियों की ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, बिटिया की चिट्ठियां।
2: वहमो गुमान से दूर दूर ये हो गया उनका।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। श्रोताओं, ये है आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। यहाँ पर अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत सुना किशोर कुमार जी की आवाज़ में। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक और साथ में लता मंगेशकर जी की प्यारी सी आवाज़। श्रोताओं, अब हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहेंगे। जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन समय को भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो बस जाते जाते हम यही कहेंगे साथियों आपसे कि आज राष्ट्रीय परिवार दिवस हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और श्रोताओं, रिश्तों की असली खुशी खूबसूरती साथ निभाने में होती है। परिवार वही होता है जो हर खुशी में मुस्कुराए और हर गम हर मुश्किलों में आपका साथ, आपका हाथ थामे और आपके साथ रहें। तो आप सभी को राष्ट्रीय परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अपनों के साथ रहिए एंड सबका ख्याल रखिए। और कहते हैं ना दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत एक खुशहाल परिवार ही होता है। तो अपने परिवार को हमेशा खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ आप देखना चाहते हैं तो पहले क्या करना होगा, आपको खुद को स्वस्थ रहना पड़ेगा। क्योंकि जो घर के बड़े मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर वो ही स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं होगा तो परिवार कैसे खुश रह पाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ एवरीवन कि आप सब अपना ध्यान अच्छे से रखा करो, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे स्वस्थ रहेंगे तो पूरी फैमिली भी खिलखिला उठेगी, सब लोग हैप्पी रहेंगे। अगर परिवार में एक किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरा परिवार मुरझा जाता है। इसीलिए आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना अच्छे से ध्यान रखें, इस गर्मी में भरपूर पानी पिएं एंड मौसमी फ्रूट्स खाएं और गर्मी में आप बाहर ना जाएं ज़्यादा तो बेस्ट है। आप अपने घर पर ही रहिए, अगर कोई काम है तो सावधानी के साथ बाहर निकलिए। बाकी सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए एंड एवरीवन, आप सभी का आरजी खुशी पूरे दिल से थैंक यू कहती है आपको। थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये सफ़र और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपसे अनुमति लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, ढेर सारा प्यार आरजी खुशी का आपके लिए और आप भी ऐसे ही अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। एक खूबसूरत गीत के साथ मैं यहाँ से आपसे अब अनुमति लेती हूँ, लेकिन मिलूंगी आपको सी यू सून 3 से 5। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।

0: आनंद, आज कहाँ हो तुम? तुम्हारी शो का टाइम हो रहा है, टीकन भाभी भी नहीं आई है अभी तक।
1: अरे तुम्हें बताया तो था, आज मैं आंगनवाड़ी सेंटर से लाइव करूँगा शो। आज टीकन भाभी भी यहाँ नई माताओं और गर्भवती महिलाओं के साथ एक चर्चा में है। मैंने सोचा यहाँ से क्यों ना लाइव शो कर दूँ, बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई हैं।
0: ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो आओ ऑनियर, मैं ट्यून इन करती हूँ।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूँ आपका अपना दोस्त आरजे आनंद। और आज मैं पहुँचा हूँ एक खास जगह, यानी कि हमारे अपने मिलन बिहार के आंगनवाड़ी में। यहाँ बहुत सारी माएँ और बच्चे मौजूद हैं। दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ बात करेंगे, एक ऐसा मुद्दा जिसका प्रति एक बच्चे पर गहरा असर होता है, कुपोषण। यह हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। इससे बच्चों में बीमारियां और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही उनका शरीर और मानसिक विकास भी रुक जाता है। और हमारे साथ हर सवाल का जवाब देने वाली टीकन भाभी है, जो आज हमसे और यहाँ मौजूद सभी महिलाओं से कुछ गंभीर बातें करेंगी। टीकन भाभी एक जिम्मेदार और जानकार माँ के साथ साथ सलाहकार भी हैं। नमस्कार टीकन देवी जी।
2: नमस्कार आरजे आनंद जी और नमस्कार बहनों। अच्छा लग रहा है कि आज हम सब मिलकर अपने बच्चों के पोषण के बारे में खुलकर बात करने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमारे बीच हमारे अपने सामुदायिक रेडियो के आरजे खुशी भी यहाँ हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देना आरंभ करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि बचपन में कुपोषण एक ऐसी परेशानी की शुरुआत करती है जो जिंदगी भर बच्चों के विकास पर असर डालता है। और इसकी शुरुआत होती है एक कमजोर माँ या कम उम्र में शादी और गर्भधारण। यदि माँ कमजोर या कुपोषित होगी तो अगली पीढ़ी में भी कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए आज ये समझना कि हमारे बच्चों को स्वस्थ और ताकतवर कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। टीकन भाभी, सबसे पहले यह बताइए कि कुपोषण आखिर है क्या?
2: मैं अपने श्रोताओं और यहाँ बैठी सभी महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि जब बच्चों को सही मात्रा में पोषण वाला खाना नहीं मिलता या बीमारी की वजह से शरीर के पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसी को हम कुपोषण कहते हैं, या सरल भाषा में जिसे सही पोषण ना मिले वो पोषण का शिकार हो सकता है।
1: तो इसका मतलब सिर्फ खाना खाना ही काफी नहीं होता?
2: पेट भर लेना और सही पोषण ना मिलना ये दोनों अलग बात है। अगर बच्चा सिर्फ चावल खा रहा है लेकिन दाल, हरी सब्जी, दूध, फल नहीं खा रहा है तो वो पूरा पोषण नहीं पा रहा है।
0: दीदी मेरा बच्चा बहुत कमजोर है लेकिन वो खाना पूरा खा लेता है, फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता।
2: गीता बहन, ये आम परेशानी है, यह आपको देखना होगा कि वो क्या खाता है। इसके अलावा कभी कभी बच्चे को दस्त या सर्दी जुकाम बार बार है जिसमें शरीर में पोषक तत्व नहीं टिकते, इसी कारण बच्चा कमजोर रहता है। इसीलिए सही खान पान के साथ साथ साफ सफाई और बीमारी से बचाव भी जरूरी है। दोनों के अभाव से बच्चा अलग अलग तरह से प्रभावित होता है।
1: तो क्या कुपोषण के भी प्रकार होते हैं?
2: बिल्कुल, मुख्य तौर पर तीन प्रकार से कुपोषण का असर दिखाई देता है। पहला, कम वजन। जब बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत हल्का होता है या यह स्थिति लंबे समय से चले आ रहे हालिया कुपोषण या दोनों का परिणाम हो सकता है। शारीरिक वृद्धि में रुकावट। जब बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से छोटा कद वाला होता है, यह दीर्घकालीन कुपोषण का संकेत है और इसके पीछे पर्याप्त पोषण सेवन, बार बार संक्रमण, गलत खान पान की आदतें और बीमारी जैसे कारण होता है। दुबलापन। जब बच्चा अपनी लंबाई के हिसाब से बहुत दुबला होता है, यह अचानक होने वाला कुपोषण है जो वजन बढ़ाने में विफलता या वजन घटाने के कारण होता है।
0: अभी आपने जो स्टार्टिंग में कहा है इसे जरा आसान भाषा में समझाइए।
2: जब बच्चा लगातार कई महीनों तक पोषण की कमी में रहता है, जैसे कि दूध ठीक से नहीं मिल रहा, खाना सही से नहीं मिल रहा, तो उसका शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, उसका कद उसकी उम्र के मुकाबले छोटा रह जाता है, इसी की स्टार्टिंग कहते हैं। यह बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका असर बच्चों की बुद्धि पर भी पड़ता है।
0: दीदी मेरा बच्चा 2 साल का है पर उसके दांत भी देर से निकले और वो चलने में भी पीछे है, क्या ये कुपोषण का लक्षण है?
2: हाँ बहन, हो सकता है देर से विकास होना, जैसे चलना, बोलना या दांत निकलना, ये भी कुपोषण की निशानियाँ हो सकती है। बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द उसकी जांच करवाएं।
1: तो श्रोताओं, कुपोषण कोई छोटी बात नहीं है, इसका असर हमारे बच्चों के शरीर ही नहीं उनके दिमाग और भविष्य पर भी पड़ता है।
2: और अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो AAM यानी मध्यम सतर्क का तीव्र

0: पोषण धीरे धीरे बढ़कर SAM यानी गंभीर तीव्र कुपोषण बन सकता है। इससे बच्चे की सेहत और जीवन दोनों पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है।
1: तो आप ये बताइए, ये MAM और SAM की कैसे पहचान कर सकते हैं, और अगर बच्चे को इन दोनों में से कोई भी हो तो क्या कर सकते हैं?
0: मैं वही बताना चाहती हूँ। MAM और SAM ये दोनों कुपोषण के स्तर होते हैं, जब बच्चों का शरीर थोड़ी मात्रा में कमजोर होता है, यानी वो दुबला है लेकिन बीमारियों से लड़ने की ताकत अभी थोड़ी थोड़ी बनी हुई है, तो हम उसे मध्य तीव्र कुपोषण या MAM कहते हैं। लेकिन जब बच्चा बहुत ही कमजोर हो जाता है और उसके शरीर में सूजन आने लगती है या वो लगातार बीमार रहने लगता है, तो वो गंभीर तीव्र कुपोषण या SAM कहलाता है, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है।
1: तो ये कैसे पता चले कि बच्चा MAM में है या SAM में?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। अगर बच्चे की मध्य ऊपरी बाह की माप, या जिसे MUAC कहते हैं, वह 11.5 सेंटीमीटर से कम है, तो वह SAM की श्रेणी में आता है। अगर माप 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर के बीच है, तो वह MAM में आता है। इसके अलावा अगर बच्चे का वजन उसकी लंबाई के मुताबिक बहुत कम है, तो भी यह MAM या SAM के लक्षण होते हैं।
1: दीदी, आपने पहले सूजन की बात, लेकिन वो कैसे सूजन होती है?
0: कविता, SAM में कई बार बच्चों के दोनों पांवों में या पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। यह सूजन शरीर में पानी भरने की वजह से होती है। इसे बाइलेटरल पुटिंग ओडिमा कहते हैं। अगर आप अंगूठे से पांव दबाए और निशान कुछ देर तक बना रहता है, तो वो सूजन का लक्षण है और तुरंत कार्यवाही की जरूरत है।
2: यह तो कोई भी अपने घर में खुद टेस्ट कर सकता है। अडीमा का मतलब सूजन ही होता है। लेकिन टीकन भाभी, अब ये बताइए कि SAM से पीड़ित बच्चों को किन किन बातों का खतरा होता है?
0: जब बच्चा SAM से पीड़ित होता है, तो उसका शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है। रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। उसे बार बार दस्त, नमूनिया, बुखार जैसी बीमारियां हो सकती है, और अगर समय पर इलाज ना हो तो जान का खतरा भी हो सकता है।
1: दीदी, ये मध्य ऊपर वहाँ का मापन MUAC कैसे करते हैं, और क्या ये हमें भी सिखाया जा सकता है?
0: बिल्कुल सिखाया जा सकता है सायरा। MUAC का खास पट्टी से नापा जाता है, जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध है। ये पट्टी हरे, पीले और लाल रंग की होती है। हरा रंग बच्चा स्वस्थ, पीला MAM, लाल SAM। आंगनबाड़ी दीदी आप चाहे तो गाँव की सभी माओं को ये सिखा सकती है, ताकि घर पर ही शुरुआती पहचान हो सके।
1: इसका मतलब ये हुआ कि अगर समय पर MAM की पहचान हो जाए, तो बच्चा SAM से बच सकता है।
0: बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कहते हैं कि समय पर पहचान, समय पर इलाज। यदि बच्चों में AM है, तो हम घर पर ही आंगनबाड़ी केंद्र की मदद से उसकी स्थिति सुधार सकते हैं। लेकिन अगर SAM है, तो उसे तुरंत NRC यानी ये पोषण पुनर्वास केंद्र भेजना जरूरी है। यहाँ उसे विशेष देखभाल, चिकित्सा सहायता और पौष्टिक आहार मिलते हैं।
2: ये जानकारी तो हर माँ और पिता, क्या संपूर्ण परिवार के लिए जरूरी है? मैंने खुद अपने गांव में देखा है, बच्चों के पेट फूले होते हैं, लेकिन हाथ पांव कमजोर होते हैं। अब समझ में आया कि यह MAM की स्थिति हो तो MAM की स्थिति में हो सकता है। तो मेरी सभी से आग्रह है कि जब आपको कोई बच्चा पतला दुबला दिखे या अक्सर बीमार रहे, तो तुरंत उसे नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लेकर जाएं, जहां पर पट्टी से माप की जाएगी और विशेषज्ञों की सलाह लीजिए।
1: दीदी, मेरे बच्चे को खाना खिलाने में बहुत परेशानी होती है, भूख ही नहीं लगती, क्या ये कुपोषण का लक्षण है?
0: हाँ सुनीता जी, जब बच्चे को भूख नहीं लगती, बार बार खाना उगलता है या हर चीज से मुंह मोड़ता है, तो उसका टेस्ट करवाइए। ये परीक्षण NRC या पोषण पुनर्वास केंद्र या PHC में होता है। यहाँ देखा जाता है कि बच्चा पोषण आहार को कितना खा सकता है। अगर भूख कम है, तो ये गंभीर संकेत हो सकता है।
2: तो क्या ये सबके लिए जरूरी है? सिर्फ वजन या लंबाई ही नहीं, भूख पर भी नजर रखें। SAM और MAM की पहचान एक माँ के लिए सबसे जरूरी है। एक माँ के लिए सबसे पहला कदम है अपने बच्चे की जान बचाने का।
0: बिल्कुल, और हम सब मिलकर आंगनबाड़ी आंगनवाड़ी, आशा, एनएम और माताएं बच्चों को फिर से ताकतवर बना सकते हैं। एमएएम के बच्चों को हम सामुदायिक स्तर पर ठीक कर सकते हैं, यानी घर पर, और भी एसएएम के बच्चों को एनआरसी में भर्ती कर सही पोषण, दवा और देखभाल दी जाती है।
1: और एनआरसी का खर्च
0: सरकारी योजना के तहत एनआरसी में भर्ती और इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। वहाँ माँ के रुकने, खाने और देखभाल की पूरी व्यवस्था होती है।
1: दीदी, घर पर क्या खिला सकते हैं एमएएम बच्चे को?
0: घर पर हम स्थानीय और सस्ते पोषण युक्त भोजन बना सकते हैं, जैसे मल्टीग्रेन खिचड़ी, दाल, चावल, मूंगफली, हरी सब्जियाँ, सत्तू और गुड़ का लड्डू, चावल, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और दलिया, बाजरे की रबड़ी दूध के साथ। जरूरी है कि बच्चा एक बार में थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन दिन में 5 से 6 बार।
1: और पीने के लिए
0: साफ पानी, छाछ, नींबू पानी, हल्का सूप सब बहुत अच्छे हैं। याद रहे, हर खाने में थोड़ा सा घी, तेल या मक्खन भी जरूरी है ताकि भोजन में ऊर्जा बढ़े।
1: पर दीदी, सब चीजें हमेशा घर में नहीं होती।
0: सही कह रही हो, इसीलिए तो सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाला टेक होम राशन का बहुत बड़ा सहारा दिया है। और अगर आपका बच्चा एमएएम या एसएएम की स्थिति में है तो आपको अतिरिक्त पोषण मिल सकता है, बस आपको वहाँ आकर रजिस्ट्री करवाना है।
1: अगर बच्चा फिर भी ना खाए तो कोई उपाय है जिससे बच्चा खाने में रुचि ले?
0: बच्चों को साथ बिठाकर प्यार से खेल खेल में खिलाए और कृपया एक ही खाना बार बार ना दे। अलग अलग रंग में स्वाद की चीजें देने से वो उत्साहित हो सकते हैं।
1: और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा अब उस गंभीर स्थिति से बाहर है?
0: जब बच्चा कमजोर होता है और हम उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो हर 15 दिन में उसका वजन मापना चाहिए। अगर सुधार हो रहा है तो उसका इलाज काम कर रहा है और जो भी कर रहे हैं उसे जारी रखें। अगर नहीं तो पीएचसी या एनआरसी में तुरंत जाइए, यह आप सभी याद रखें। जन्म के समय कम वजन वाले शिशु में कुपोषण का जोखिम अधिक होता है। यदि लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन का सेवन नहीं किया जाए तो बच्चा धीरे धीरे कुपोषित हो सकता है। दस्त जैसी बीमारियां शरीर से अत्यधिक पोषण तत्वों की हानि का कारण बन, जिसे बच्चा कुपोषित हो सकता है। तीव्र श्रवण संक्रमण भी बच्चों की पोषण स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
2: और एक बात का ध्यान रखें, रोगों से बचाव का एक और तरीका है साफ पानी, साबुन से हाथ धोना, टीकाकरण और साफ सफाई। ये सब कुपोषण से लड़ाई में आपके हथियार हैं।
0: सही कहा आपने। और सरकार और आजकल सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, जैसे पोषण अभियान, अस्पताल पोषण थाली, वजन त्योहार और गांव स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान।
2: मतलब यह है कि पोषण सिर्फ रसोई की नहीं पूरे गांव की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल। और माँ का प्यार, आंगनबाड़ी का साथ और गांव की जागरूकता, यही है सही सेहत का राज, जिससे मिलेंगे अनेक लाभ।
1: बिल्कुल, सेहत सही मिलेंगे लाभ सही, और हम अपने बच्चों का भविष्य स्वस्थ बना सकेंगे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, आज का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि कुपोषण कोई अकेली समस्या नहीं है, यह भोजन, देखभाल, साफ सफाई और प्यार सबका मेल है। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं, गुड़ की विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने साल 2025 तक दुनिया भर में बच्चों में स्टार्टिंग कद में रुकावट, वेस्टिंग, कमजोरी, एनीमिया, खून की कमी और कम जन्म वजन को घटाने का लक्ष्य बनाया है। ये लक्ष्य तभी प्राप्त होना जब आप सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। तो अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, अगली बार फिर मिलेंगे एक और जरूरी विषय के साथ। तब तक आंगनबाड़ी आइए, सेवाएं पाइए और अपने बच्चों की सेहत को दीजिए सही लाभ। नमस्कार। और हाँ, जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेंगे।
3: हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
4: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
4: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
5: माँ की नज़र फिर से साफ हो, पापा बिना चश्मे अखबार पढ़ सकें, बच्चों को कम उम्र में चश्मा ना लगे, यही तो ख्वाहिश है हर परिवार की। तो आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आज ही आए बजाज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर आकाश बजाज और डॉक्टर अशोक बजाज लाते हैं आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी और नेत्र रोगों का विशेषज्ञ इलाज। हॉस्पिटल का पता ताड़ीखाना चौराहा मुरादाबाद, कॉन्टैक्ट 9548088900।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
9: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
10: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
11: कॉल 8826213131।
12: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई। यार यहाँ इतने मच्छर कहाँ से आ गए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट RJ रीना। आज हम बात करेंगे, उफ अरे भाई यहाँ प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है, माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन लगता है कि जो हमारे यहाँ फूलदान है उनमें मच्छरों ने अपना घर बना लिया है और पार्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आज के कार्यक्रम की अपने सेहत सही लाभ कई की कड़ी की, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका बरसात के साथ साथ एक लंबा रिश्ता है।
13: नमस्कार आरजीना, किसका रिश्ता किसके साथ लंबा है भाई? अब हमारा रिश्ता भी आपके साथ, माफ करिएगा, हमारे अपने सामुदायिक रेडियो के साथ बहुत लंबा हो गया है।
12: नमस्कार भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका और सेहतिया भैया का रिश्ता पूरे सामुदायिक के साथ तो था ही, लेकिन रेडियो के साथ भी काफी लंबा हो गया है और उम्मीद है कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। आप हमें ज्ञान देंगी और हम उसका लाभ उठाएंगे, लेकिन मैं बात कर रही थी इन मच्छरों की और एक मिनट देखिए, यह व्हाट्सएप पर एक CMO की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आया है।
13: सर जोर से पढ़िए।
12: यह है देखो, साफ करे ढके डेंगू को हराने के उपाय करे, राष्ट्रीय डेंगू डे की बधाई। और आज तो 16 मई है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। वाह,
13: अरे मच्छर, ये मच्छर दिन में काटते हैं और बहुत तेजी से आदमी को बीमार कर देते हैं।
12: अरे दिन में काटता है, हम तो समझते थे मच्छर रात में ही एक्टिव होते हैं।
13: नहीं नहीं, ये वाले मच्छर दिन में ही ज्यादा काटते हैं, खासकर सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे के बीच। ये छोटा काला सफेद धारीदार मच्छर होता है और जब ये डेंगू वायरस वाला मच्छर काटता है तब आदमी 5 से 6 दिन के अंदर बीमार पड़ जाता है।
12: तभी तो मैं परेशान थी, सर्दियों में बहुत मच्छर थे, अब ये मच्छर भागने के नाम ही नहीं ले रहे हैं और फिल्ट भी किया। तो डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं भाभी?
13: डेंगू में तेज बुखार अचानक चढ़ जाता है, सिर दर्द, आंखों के पीछे जलन, बदन में दर्द, भूख कम लगना, शरीर पर चटके, उल्टी या मिचली, ये सब हो सकता है। अगर बीमारी बढ़ जाए तो नाक मुंह से खून बहुत ज्यादा, उल्टी, बेचैनी, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत, ये गंभीर लक्षण होते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
12: अरे तो क्या इसका इलाज हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर है क्या, जहां लोग जाकर इलाज करवा सके?
13: क्यों नहीं, हमारे हर नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर डेंगू का टेस्ट होता है और जिस हिसाब से लक्षण दिखते हैं उसी हिसाब से इलाज होता है। पर ये भी जान लो कि डेंगू का कोई खास इलाज नहीं होता।
12: भाभी जब डेंगू की कोई खास दवा नहीं है तो क्या लोग क्या करे?
13: डेंगू का कोई पक्का इलाज नहीं होता, पर इसका इलाज लक्षणों के हिसाब से होता है, जैसे बुखार कम करना, खूब सारा पानी पीना और अगर जरूरत पड़े तो खून या प्लाज्म देना। और ये सब हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के समक्ष स्वास्थ्य कर्मी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एस्प्रिन या इब्रुफेन नहीं लेना चाहिए, सिर्फ पैरासिटामोल की गोली चलेगी।
12: समझ गए भाभी, आप बताइए ये मच्छर पैदा कहाँ होते हैं?
13: ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, जैसे कूलर, बाल्टी, फूलदान, टंकी, फ्रिज के नीचे, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने टायर, जहाँ भी साफ पानी जमा हो जाए। और सोचो इसके अंडे बिना पानी के भी एक साल तक जिंदा रह सकते हैं।
12: भाभी मैं भी यही कह रही हूँ कि ऑफिस के सारे गुलदस्ते बाहर रख देने चाहिए, क्योंकि हर घर में खतरा छुपा बैठा है।
13: एकदम, इसीलिए हफ्ते घर के सारे पानी वाले बर्तन धोएं, कूलर खाली करो, आसपास सफाई रखो। इसे कहते हैं वीकली ड्राई डे। सबसे सस्ता और साधारण उपाय है, पानी जमा ही मत होने दो।
12: भाभी और क्या क्या उपाय होते हैं मच्छर को रोकने के लिए?
13: और अगर रास्ता और किफायती उपाय चाहते हो तो ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। डेंगू से बचाव के लिए हमें कई स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले व्यक्तिगत सुरक्षा के तहत पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करना चाहिए और बच्चों को दिन में भी मच्छरदानी में सुलाना चाहिए।
12: अच्छा अच्छा, पर आपने कई स्तर की बात की है, तो बाकी के स्तर?
13: अरे तो पूरी बात तो सुनो।

0: भी कोई योगदान हो सकता है क्या?
1: फिर वही बात, पूरी बात तो सुनो। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जैसे रेडियो, पोस्टर और लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। और हाँ, समुदाय की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसमें मोहल्ले के लोग मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें।
0: भाभी, आप तो डेंगू की डॉक्टर निकली। गाँव में कई लोग सोचते हैं कि बस बुखार है, दो दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे?
1: मैं तो बस इतना ही कहूँगी, मत सोचिए, चल दीजिए। हर तेज बुखार डेंगू हो सकता है, इसीलिए तुरंत नजदीकी AAM, PHC, CHC या आशा दीदी से संपर्क करो। जल्दी पता लगेगा तो इलाज भी आसान होगा।
0: और अगर किसी को डेंगू हो जाए तो घर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए?
1: डेंगू के मरीज की देखभाल करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मरीज को अधिक मात्रा में पानी पिलाना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बुखार और दर्द के लिए केवल पैरासीटामोल दें। एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाइयों से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि ये हालत को और बिगाड़ सकती है। इलाज हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें, खुद से कोई दवा ना दें। साथ ही ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि मरीज के आसपास मच्छर ना पनपे, जिससे बीमारी अन्य लोगों में ना फैले।
0: भाभी, आपने जैसा कि बताया था कि इस श्रृंखला के बाकी एपिसोड की पोषण हर बीमारी से लड़ने का पहला हथियार होता है, तो डेंगू से लड़ने के लिए क्या क्या खान पान होना चाहिए?
1: हाँ, अब लग रहा है कि तुम मेरी बातें ध्यान से सुनती हो और पल्ले से बांध लेती हो। डेंगू के मरीज के लिए खान पीन का ध्यान कैसे रखा जाए, इस बात का कुछ साधारण उपाय हैं। डेंगू में शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसीलिए सही खाना और भरपूर पानी पीना बहुत जरूरी होता है। इससे शरीर की ताकत भी बनी रहती है और जल्दी ठीक होने की मदद मिलती है।
0: अरे भाभी, तो बताइए तो क्या करना होगा हमें अगर डेंगू से ग्रसित हो जाए कोई तो?
1: हाँ हाँ, बता रही हूँ। तुम भी ऐसे उतावली हो रही हो जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट के लिए उतावले होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि डेंगू में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी पीना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे शरीर के नमक इलेक्ट्रोलाइट की भरपाई होती है। ORS यानी नमक चीनी का घोल, या बाजार नहीं है तो आंगनवाड़ी से मुफ्त मिलने वाला पैकेट का ORS देना चाहिए, जिससे शरीर में पानी और ताकत बनी रहे।
0: अरे भाभी, तो बताइए तो खाने का भी तो बताइए, इतना इंतजार करना पड़ेगा।
1: अरे बहन, आज क्या हो गया है तुम्हें, इतना उतावलापन? खैर, तो चलो अब बात करते हैं खाने की। तो डेंगू में ऐसा खाना चाहिए जो पचाने में आसान हो, हाँ, और शरीर को ताकत दे। जैसे फल, पपीता, अनार, संतरा जैसे फल बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन सी होता है जो प्लेटें बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। हरी सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सहजन के पत्ते, इनमें ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते हैं। दूध, अंडा, चिकन, मछली और पनीर, ये सब चीजें शरीर के अंदरूनी घाव भरने में मदद करती है। दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल जैसे चीजें जो पचाने में हल्की हो और ताकत भी दे।
0: तो इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो ये भी बता दीजिए भाभी कि किस किस चीजों से बचना चाहिए।
1: तले भुने तेल मसाले वाले खाने से परहेज करना चाहिए, ये पेट को और कमजोर बना देता है। बाजार की मीठी चीजें और पैकेट वाले खाना नहीं खाना चाहिए। चाय, कॉफी या शराब जैसी चीजें बिल्कुल नहीं, ये शरीर को और सुखा देती है और बीमारी बढ़ सकती है।
0: हाँ हाँ, बताइए बताइए, मैं तो आपसे जितनी भी ज्ञान लूँ ना उतना ही कम है, संकोच बिल्कुल भी नहीं करती मैं।
1: अच्छी बात है, फिर ये भी सुनती जाओ, पपीते की पत्ती का रस। कुछ अस्पतालों का कहना है कि ये प्लेटें बढ़ाने में मददगार हो सकता है, लेकिन अभी और रिसर्च की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, इससे शरीर को ताकत मिलती रहती है और भूख भी बनी रहती है। और सबसे जरूरी है, अच्छी नींद लो, पूरा आराम करो, तभी शरीर जल्दी ठीक हो पाएगा। पानी खूब पियो।
0: भाभी, ये तो आप बहुत बढ़िया बता रही है, लेकिन एक बात और बताइए, डेंगू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कुछ डूज और डोज भी समझा दीजिए।
1: ये कुछ और जरूरी बातें भी ध्यान में रखो। डेंगू से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद आवश्यक है। जिन बर्तनों में रोजाना पानी नहीं इस्तेमाल होता, उन्हें हमेशा उल्टा करके रखना चाहिए ताकि पानी जमा ना हो। फूलदान पौधों की स्त्रियाँ और फ्रिज के पीछे जमा

0: पानी को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। अगर छत, आंगन या नालियों में पानी रुकता हो तो उसे तुरंत साफ करवाना चाहिए। नालियों को खुला ना छोड़ें, उन्हें ढक्कन से ढकें या मच्छरदानी जैसी चीजों का उपयोग करें। साथ ही मोहल्ले में साफ सफाई बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करें, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वहीं कुछ बातों से बचना भी उतना ही जरूरी है। बरसात के बाद किसी भी बर्तन, गड्ढा या टायर में पानी जमा ना होने दें। बेकार पड़े कूलर या अन्य बर्तनों को हफ्ते तक बिना सफाई के ना छोड़ें। बुखार आने पर उसे हल्के में ना लें और इलाज में देर ना करें। अगर मच्छर दिखाई दे तो उन्हें नजरअंदाज ना करें, तुरंत उपाय करें। और सबसे जरूरी, सफाई को केवल घर तक सीमित नहीं रखना, घर के बाहर और आस पड़ोस की सफाई भी बराबर ध्यान दें।
1: वाह भाभी, आपने तो बहुत ही कमाल की बातें बताई। अब हर कोई ध्यान रखेगा क्या करना है और क्या नहीं। भाभी एक सवाल और, बिहार और यूपी में डेंगू के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना?
0: हाँ बहन, 2024 में बिहार में 10,157 केस थे और 16 मौत हुई थी। यूपी में 15,845 केस और 8 मौत हुई थी। ये बीमारी मजाक नहीं है, सबको मिलकर रोकना पड़ेगा।
1: आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अब आखिर में डेंगू के खिलाफ एक संदेश दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
0: डेंगू से डरना नहीं, उससे लड़ना है। मच्छरों को पनपने मत दो। हर हफ्ते घर के कोने कोने में झांको और याद रखो, साफ गांव, स्वस्थ गांव।
1: बहुत बहुत धन्यवाद टीकन भाभी, आपने इतनी जरूरी बातें ऐसी अच्छे अंदाज में समझा दी। श्रोता गणों, आप भी डेंगू से बचाव में अपना योगदान दें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अब तक के लिए साफ आंगन की रखो पहरेदारी, डेंगू से मिले पूरी सुरक्षा की तैयारी।
2: FM मुरादाबाद से मैं हूँ आरजीना, और आज हम आए हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ हम डेंगू से रिलेटेड उनके बारे में क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, तो आज हम आए हैं यानी कि एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करने के लिए। सर आपका नाम?
3: डॉक्टर अर्पित गोयल।
2: अर्पित गोयल, हाँ। सर तो ये बताइए कि डेंगू जैसे फीवर होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें डेंगू ही फीवर है?
3: डेंगू के लक्षण होते हैं बुखार होना, शरीर में दर्द होना, सर में दर्द रहना, शरीर में चकत्ते पड़ जाना और उल्टी हो जाना, ये सब डेंगू के लक्षण होते हैं। वो हम थर्मामीटर के थ्रू पहले बुखार नापेंगे और फिर पता लगेगा कि बुखार कितना है। फिर इसका टेस्ट होता है, 2 से 7 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है कि जब हमारा बुखार और लक्षण रहते हैं। इसमें अधिकतर कोई ज़्यादा कोई दवा नहीं होती है। बुखार के लिए हमें नॉर्मल पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन के नाम से भी आती है जो दवा, वो देनी होती है। बुखार कंट्रोल करने के लिए खूब पानी पीना होता है, दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना होता है, और शरीर में दर्द के लिए दर्द की दवा दी जाती है। और इसको हम मेनली ये होता है मच्छर के काटने से, जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है उसके काटने से होता है। तो इससे बचाव हम ऐसे कर सकते हैं कि हम घर में जो रेपेलेंट्स होते हैं, मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, वो मार सकते हैं। और ये जो मच्छर है ये मोस्टली साफ पानी में पनपता है, तो हम जो जितना भी पानी इकट्ठा होता है हमारे घर में आसपास, वो पानी हम हटा सकते हैं। साफ सफाई रखें हम घर पे, और पेट्रोलियम जो होता है वो डाल के रखें। अगर कोई पानी का काफ़ी समय से हम साफ पानी अगर इकट्ठा हुआ है, यही सब होता है। डेंगू का कोई ऐसा डेफिनेटिव कोई टीका भी कोई वो नहीं आई है वैक्सीनेशन, तो मोस्टली इसको हमें प्रिवेंट करना होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है इसके ट्रीटमेंट।
2: अच्छा सर, क्या गंभीर डेंगू का कोई इलाज हो सकता है?
3: गंभीर डेंगू का भी इलाज होता है, वो हम टर्शरी केयर सेंटर पे हम देखते हैं उसमें क्या क्या पेशेंट को सिम्टम्स हैं। और इसमें मोस्टली प्लेटलेट काउंट हमारे काफ़ी गिर जाते हैं। अगर मरीज के प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो जाते हैं और उसको शरीर में कहीं से भी खून निकल रहा होता है तो हमें प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं मरीज को, या फिर 10,000 से कम होते हैं और शरीर में से कहीं से खून नहीं आ रहा था तब भी हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं मरीज को। वो मरीज की कंडीशन देख के और उस हिसाब से हमें पूरा इलाज देना होता है उसको।
2: जो हमारे लिसनर्स अभी हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि डेंगू से हमें कैसे बचना चाहिए?
3: डेंगू से बचाव के लिए हमें पहले तो घर में साफ सफाई और जो साफ पानी है उसको इकट्ठा होने से रोकना है। दूसरा कभी भी बुखार जैसा लक्षण दिखता है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, घबराना नहीं है, उसके लिए इलाज लेना है, खूब अधिक मात्रा में पानी पीना है, 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना है दिन में, और अगर डेंगू आता भी है जांच में तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो जो तुम्हें दिक्कतें हैं उसका इलाज लेना है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 7 दिन होता है, 7 दिन के बाद मरीज ठीक हो जाता है और इससे कोई घबराने की दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है हमें और इलाज लेना है और इलाज से ठीक हो जाता है।
2: सर मैंने बहुत से ऐसे मतलब आदमियों से मिली हूँ जिनको फीवर होता है और वो बोलते हैं कि मतलब इग्नोर मारते हैं इसको, कुछ नहीं होगा, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे?
3: इग्नोर नहीं मारना है हमेशा, कभी भी बुखार आता है पहले तो अगर शरीर टूट रहा है या ऐसा शरीर गर्म लग रहा है तो हमेशा आपको थर्मामीटर लेके या पास में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उधर जाके आपको पहले थर्मामीटर से बुखार नपाना है, उधर आपको दवा लेनी है, और अगर वहाँ पे जो NS1 एंटीजन टेस्ट होता है डेंगू का उसमें अगर डेंगू आता है तो भी घबराना नहीं है। अगर कहीं से खून आता है, कहीं शरीर में छकत्ते पड़ जाते हैं तो ज़रूर दोबारा से डॉक्टरों को आके दिखाना है और स्वास्थ्य की सेवा, प्राथमिक सेवा लेनी है उनसे, और घबराना नहीं है और हमें इलाज लेना है उसका सही तरीके से।
2: ओके थैंक यू सो मच सर।
0: आइए हम सब मिलकर लेते हैं एक शपथ।
4: हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
4: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
4: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूँ अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, NM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UVN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UVN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षा करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी NM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दोगुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के लिए।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछे कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो। जैसे ही राशन की सूची लगती है, वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वह हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ कई, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है। व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर

0: प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
2: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष और
5: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
4: बिल्कुल, तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको। लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
5: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
4: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
5: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
4: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
6: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
7: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रहे हैं।
6: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
7: भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
5: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है।
4: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
5: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां।
8: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है, गोल्ड मेडल। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
4: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों, जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं, उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
5: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
4: तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है। ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती, और अगर देख भी पाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चने आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना, ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं, और आप एक समाज सेवी की तौर पर भी काम करती रही हैं, और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को, जो बेटियां हैं, उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
5: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था, तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी। बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे, लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे, तो कहीं कहां, तो कहीं कहां, ऐसे मिलती थी ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
4: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
5: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
4: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
5: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब

0: शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चों के लिए एकदम जिसे कहते हैं अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
1: बिल्कुल जरूरी है और जागरूकता फैलाना जरूरी है, इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी, बेटी है तो कल है।
1: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि
0: बन चुका है, हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी, बेटी है तो कल है।
1: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं, बात है बेटी की। बेटी भी एक जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारी तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दें। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
1: बिल्कुल, और याद रखिए जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
0: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला, ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो। वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं, और इसीलिए भावना कहते हैं हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
1: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा
0: कल है।
1: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
7: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
8: नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज मुरादाबाद और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अखिल, और मेरे साथ है प्राची। प्राची कैसे हो आप?
9: मैं तो एकदम बढ़िया हूं और उम्मीद करती हूं कि मैं हमारे लिसनर्स भी बढ़िया होंगे।
8: आज ये शो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
9: हाँ अखिल, जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं पर सिर्फ सेल्फी के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं।
8: बिल्कुल सही बात, और कुछ लोग करियर चूज करते हैं सिर्फ चाचा जी के कहने पर अपने।
9: तो फिर आज का हमारा टॉपिक है करियर कंफ्यूजन से करियर क्लैरिटी तक।
8: मुरादाबाद के दोस्तों याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं।
9: अखिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, तो आप ये कहना चाहेंगे?
8: मेरे हिसाब से सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ 3 चीजों को लिखो अपने पास, मुझे क्या करना पसंद है, दूसरा मैं किस चीज में अच्छा हूँ, और तीसरा मार्केट में किस चीज की डिमांड है।
9: और अखिल, मुझे लगता है कि एक चीज और ऐड हो गई है आजकल की लाइफ में, करियर प्रेशर से ज्यादा डेंजरस आजकल कंपैरिजन प्रेशर बन गया है। लोगों बच्चों में कंपैरिजन और कि मम्मी पापा की कंपैरिजन रहती है, बच्चों को वो कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों से, तो इससे बच्चों के लिए जो पूरा एटमॉस्फेयर बन गया है बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
8: बिल्कुल सही बात कही। मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, शर्मा जी का भाई हमारे पड़ोस में, वो IIT में है।
9: अच्छा।
8: पर हाँ, पर जो एक और पड़ोसी है मिश्रा जी, उनका जो बेटा है उसका टैलेंट थोड़ा सा यूट्यूब में, मतलब वो इस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और कई चीजों पे, जैसे आजकल फूड ब्लॉगिंग है, कभी बिजनेस को लेके किसी कोई मोटिवेशनल ब्लॉगिंग है, तो वो इज लाइक अ गुड स्पीकर। वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे आके अपने आप को दिखाऊं, मगर क्या है, बगल में शर्मा जी का बेटा जो है वो IIT में लगा हुआ है, तो ये बात रहती है सुबह सुबह, यही चर्चा रहती है कि भाई मेरा बेटा तो IIT के उसमें है और तुम्हारा बेटा देखो ये फालतू की चीजें कर रहा है, तो यहाँ पे लोग कंपैरिजंस में आ जाते हैं।
9: हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पेरेंट्स का तो ये फेवरेट डायलॉग बन चुका है कि पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो फिर अपना पैशन फॉलो कर लेना, जैसे पैशन कोई वीकेंड पिकनिक हो।
8: बिल्कुल सही कह रही है प्राची जी। चलिए हम तो इस बात पे बात करते ही रहेंगे, अभी सुनते हैं बढ़िया सा गाना।

0: चलिए मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉल करता है, नाम है राहुल।
1: मैं बीकॉम कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा फ्यूचर क्या है।
0: राहुल पहले ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है।
1: मुझे पसंद है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया भी पसंद है। अच्छा राहुल, तो तुम डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करो।
0: आजकल ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक लिमिटेड नहीं रह गया है।
1: डेटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, रेडियो जॉकी।
0: पर हाँ, अगर रेडियो जॉकी करना है तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा।
1: सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने अखिल। तो लिसनर्स, आप हमें बताइए कि आप किस करियर फील्ड को चूज करना चाहेंगे। आप हमसे बातें कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर 9837896896।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज। हमारे इस कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है।
1: तो आज अखिल आप क्या लेकर आए हमारे लिसनर्स के लिए?
0: मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ टैलेंट सिर्फ ब्रास तक लिमिटेड नहीं है।
1: वैसे ये तो सही कहा, क्योंकि हमारे मुरादाबाद के लोग बहुत सारी फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं।
0: यहाँ के यूथ ना स्टार्टअप तो शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी, फूड आउटलेट्स भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चालू कर रहे हैं।
1: अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो 2026 के लिए कुछ आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ। होम बेकरी, डिजिटल सर्विस एजेंसी, ट्यूशन सेंटर, फूड कार्ट विद हाइजीन कॉन्सेप्ट।
0: लेकिन प्लीज हर गली में ना मोमोज मत खोल देना यार। जहाँ भी जाओ ना, जिस गली में जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ बुद्धि विहार में, तो कहीं ना, मतलब वो जो अपना परशुराम चौक है और उससे थोड़ा आगे चलते हैं जब अपना हनुमान उसकी तरफ, जो हनुमान जी का पार्क है अपना, तो वहाँ पे भी भाई मोड़ पे भी वहाँ पे ही मोमोज वाला मिल जाता है। थोड़ा और आगे चला तो वहाँ पे भी एक शॉप पे मोमोज वाला है। तो प्लीज प्लीज प्लीज हर गली में हर जगह ना मोमोज नहीं होना चाहिए।
1: बस प्लीज आप ज्यादा मोमोज की बात मत करिए, बस मेरा बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का।
0: तभी ये इसलिए कह रहा था मैं हर जगह मोमोज नहीं होने चाहिए। कम्युनिटी को ना सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोकल से खरीदो और लोकल को बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है आजकल के समय।
1: तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि लोकल से मोमोज खरीदो और लोकल को बहुत बढ़ाओ। फिलहाल दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ। बस दोस्तों आपको ऐसे आइडियाज मिलते रहेंगे एफएम मुरादाबाद पर, और आप भी हमें भेज सकते हैं हमारी मैजिकल नंबर 9837896896 पर। और रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके अपने ही कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं और प्राची लेकर आए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी।
1: तो चलिए शुरू करिए आप।
0: एक छोटे से गांव का लड़का 3 बार एग्जाम में फेल हुआ।
1: लोग हंसते थे, कहते थे तुमसे नहीं होगा,
0: लेकिन उसने हर फेलियर का फीडबैक बनाया और आज वो अपना बिजनेस चला रहा है।
1: दोस्तों, फेलियर का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।
0: लाइफ में गिरना अलाउड है, मगर रुकना अलाउड नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल आपने। तो दोस्तों, लाइफ में आप रुकिए मत, चलते जाइए, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे।
0: मगर वहाँ रुक जाना जहाँ पे आगे गाड़ी रुकी हुई हो, क्योंकि MDA में ना इस समय अच्छा खासा जाम मिलता है PAC से लेके किले तक। तो बहुत आराम आराम से गाड़ी चलाना भाई साहब, सीट बेल्ट जरूर पहनना।
1: पर दोस्तों, टेंशन मत लेना, ये जाम शाम छट ही जाएगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हो प्राची। प्राची को तो जैसी शाम होती है ना, या प्राची का जहाँ भी कोई गोलगप्पे वाला स्टॉल दिख जाता है, प्राची की तो गाड़ी अपना आप ही वहाँ रुक जाती है।
1: फिलहाल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। और अगर आपके पास भी है कोई मोटिवेशनल कहानी, आपकी दोस्तों की, आपकी अपनी जिंदगी की कहानी, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर जो है 9837896896।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: वेलकम बैक टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आप है प्राची और अखिल के साथ, और दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर। तो अखिल आप शुरू करिए।
1: अच्छा ये बताओ प्राची, सक्सेस या स्लीप?
0: सक्सेस, स्लीप बाद में।
1: चाय या कॉफी?
0: करियर टेंशन में थोड़ी बहुत चाय सही है।
1: अच्छा गवर्नमेंट जॉब या स्टार्टअप?
0: दोनों, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही, चाहे कुछ भी कर लो बस मम्मी जरूर खुश रहनी चाहिए।
0: हाँ अगर मम्मी खुश है तो सब खुश है।
1: तो मम्मी को खुश करने के लिए चलिए कोई गाना बजाते हैं।

0: कैसा लगा मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुना ही कहाँ दिया, ये नालायक विवेक बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक?
2: अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो, आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
0: कोई काम सब तो मैं ही करूंगा ना मामा, तू लाओ इधर। चलो मामा, चलिए लगाओ।

0: तो दोस्तों ये जो गाना है ये सिर्फ आपकी मम्मी के लिए डेडिकेटेड है, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: तो श्रोताओं हम एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुरादाबाद, याद रखो सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं।

0: सपने वो हैं जो सोने नहीं देते।
1: तो दोस्तों आज ही अपना गोल लिखिए और अब कल से एक्शन करना शुरू कर दीजिए।
0: अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो, कंफ्यूजन को क्लियर करो और कुछ भी मन की बात हो ना हमें जरूर मैसेज करो।
1: तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर के साथ 9837896896। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विजन का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
5: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमानन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
7: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
9: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
8: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
10: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
11: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
12: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
11: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
12: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
11: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। आपके साथ मैं हूं आशीष, और
1: आज हम आपको एक जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। आप जिले के किसी भी गांव में रहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर गांव में लगभग स्वास्थ्य महकमे की तरफ से एक आरोग्य मंदिर स्थापित किया जाता है, और इस आरोग्य मंदिर में व्यवस्थाएं उनके इलाज से संबंधित, दवाओं से संबंधित मिलती है। और अगर यहां से किसी गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हैं तो आपको एक मार्गदर्शन भी मिलता है कि आप अपना हायर सेंटर्स में कहां पर इलाज करवा सकते हैं। और जिले के अंदर अगर देखें या ब्लॉक के अंदर देखें, पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, ऐसी जगहों पर आप जा सकते हैं। लेकिन आरोग्य मंदिर कैसे काम करता है, यहां पर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स रहते हैं उनकी टीम में कौन कौन रहता है, किस किस दिन पर आरोग्य मंदिर खुलते हैं, यहाँ पर इलाज से संबंधित क्या प्रक्रिया होती है, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं सीएचओ राहुल कुमार वर्मा जी, जिनसे हम बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आरोग्य मंदिर कैसे काम करता है। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: कैसे काम करता है एक आरोग्य मंदिर?
2: सर, आरोग्य मंदिर जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना के तहत हर 5,000 की पॉपुलेशन पे खोले गए हैं, और यहाँ इसका खुलने का समय रहता है 9 बजे प्रातः से 4 बजे तक रहता है। इसमें जो है हम लोग 12 प्रकार की जांचें करते हैं, जिसमें से खून की जांच हो गई, और शुगर की, मलेरिया, डेंगू, और बेसिकली जो है उच्च रक्तचाप, हाइपर टेंशन के मरीज होते हैं और डायबिटीज के, इनकी हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं पूरी आबादी, पूरे क्षेत्र की। और जो भी हाइपरटेंशन के मरीज हमें प्राप्त होते हैं उनको हम हायर सेंटर के लिए रेफर करते हैं। वहाँ जो भी एमबीबीएस डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको अपने फॉलोअप में लेके दोबारा से रीसेंट कर देते हैं, तो उनका हम लोग ट्रीटमेंट एक सुचारू रूप से चला पाते हैं, जिससे भविष्य में उनको कोई एक मेजर दिक्कत ना पैदा हो। और इसके अलावा में जो भी सामान्य कैंसर होते हैं, जैसे ओरल कैंसर है, या जो भी गर्भाशय का है या ब्रेस्ट कैंसर है, उसको एनम जो है देखती है, बाकी हम भी ओरल कैंसर वगैरह की स्क्रीनिंग यहाँ पे की जाती है। और जो भी एक नॉर्मल सी बीमारियां हैं, फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, और हेडेक वगैरह, इनकी दवाइयों का भी हम लोग यहाँ प्रबंधन करते हैं।
1: ठीक है।
2: और किशोरावस्था के जो भी एलिजिबल कपल्स हैं उनकी काउंसिलिंग, और जो भी बच्चे हैं उनको मतलब हम लोग यहाँ योगा सेशन वगैरह इनका करवाते हैं।
1: तो एक आरोग्य मंदिर में इतनी तरह की आपको व्यवस्थाएं स्वास्थ्य से जुड़ी मिलती हैं, ये जो आपने बताया, कुल कितने लोग इसके लिए सुनिश्चित किए जाते हैं एक आरोग्य मंदिर में?
2: ये आरोग्य मंदिर का ये डिपेंड करता है कि कितना पॉपुलेशन वो कवर करता है। अच्छा। और उसके साथ में जो भी क्षेत्र के हर गांव की एक आशा मतलब चयनित होती है, जिसका लिमिट पॉपुलेशन 1,000 की आबादी पे चयन किया गया है। तो वो पॉपुलेशन मतलब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितनी आबादी को कवर करता है, उस डिपेंड उसके आधार पे हम वो टीम से होते हैं। जैसे कि 5 गांव अगर है तो 5 आशाएं होंगे, बाकी वहाँ पे कितनी एनम्स जो है पोस्टेड हैं। तो हमारे यहाँ जो है एक मैं हूँ राहुल कुमार वर्मा, और 2 एनम्स जो है पोस्टेड है
1: जो नियमित यहाँ पर
2: जी रेगुलर आती है, और उनका जो भी क्षेत्र में काम होता है टीकाकरण सत्र का, या जो भी क्लिनिक डे वगैरह या अन्य मीटिंग्स वगैरह वो अटेंड करते हैं।
1: ठीक है। और आरोग्य मंदिर हफ्ते में कितने दिन तक खुलता है?
2: जी, सभी मतलब सोमवार से शनिवार इसका ओवरऑल टाइम जो है 9 बजे से 4 बजे तक हमेशा खुलता है।
1: अच्छा। और अगर मान लीजिए आरोग्य मंदिर बंद है संभवतः किसी दिन किसी कारण से, तो क्या इस बात की जानकारी आप अपने ग्रामीण स्तर पर लोगों तक पहले पहुंचाते हैं कि इस दिन बंद रहेगा?
2: बंद रहने का नहीं चांस होता है। अगर मैं किसी कारणवश छुट्टी पे हूँ तो वो यहाँ पे एनएम सिस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अगर इनकेस ऑफ हम दोनों लोग नहीं है तो आशा बहन जी जो होते हैं वो यहाँ सूचित करते हैं, वो रहते हैं कि आज यहाँ नहीं मिलेंगे या कल मिलेंगे।
1: ठीक है। अच्छा, रविवार को बंद रहता है?
2: जी, सिर्फ रविवार को या जो भी रजिस्टर्ड हॉलीडेज है।
1: और अगर रविवार को किसी को कोई समस्या आती है स्वास्थ्य से जुड़ी, तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था फिर है?
2: तो उसके लिए हमारे यहाँ नियरेस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ 24/7 सेवाएं जो है प्राप्त होती है, तो आदमी वहाँ कंसल्ट कर सकते
1: हैं। ठीक है। आरोग्य मंदिर में जो लोग आते हैं अपने इलाज के लिए, क्योंकि देखिए आरोग्य मंदिर सिर्फ जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं वही नहीं, और भी बहुत सारे आरोग्य मंदिर हैं जहाँ पर लोग अपने इलाज के लिए पहुँचते हैं, तो आप ऐसे में जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनसे क्या संदेश देते हुए बताना चाहेंगे कि आप आरोग्य मंदिर की सेवाएं लेने के लिए आप आगे आएं, ज्यादा से ज्यादा उनको ये इलाज संबंधित सेवाएं मिलें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी, मैं राहुल कुमार वर्मा, समस्त क्षेत्रवासी और मतलब जो भी जहाँ पे भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे चयनित प्रतिनिधि हैं या जो भी हमारे कैडर के लोग हैं, तो उनका सभी क्षेत्रवासी सहयोग करें। वो किसी कारण से आपके क्षेत्र में पहुंचते हैं, आपके दरवाजे पे पहुंचते हैं, तो आप उनका जो है सहयोग करें, ये अपेक्षा करता हूं। बहुत सारे मतलब हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो आपके सहयोग के बिना हम हर टास्क को पूरा कर पाना संभव नहीं है। बहुत सारी हैं चीजें, जैसे कि इस समय गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड का जो साप्ताहिक वो चल रहा है अभियान, तो उसमें हमें आपसे सहयोग की अपेक्षा रहती है, या जो भी है सभी मतलब जो भी प्लान सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं वो आपसे ही जुड़े होते हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग, और मेरा निवेदन है सभी से कि आप लोग सभी का सहयोग करें।
1: अच्छा, आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया आपने, तो आयुष्मान कार्ड आरोग्य मंदिर पर अगर कोई व्यक्ति आता है जिसको बनवाना है, हम चाहेंगे थोड़ा इस बारे में भी जानकारी दें कि वो यहाँ पर आकर अपने कौन कौन से दस्तावेज लाए, या कैसे उसका आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में उसको हम डाल सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड बनाने का 3 स्टेप है, मीन्स जो है जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है 70 वर्ष से अधिक, ठीक है, उसके लिए सिर्फ उनका आधार कार्ड पे 70 वर्ष का आयु पूर्ण हो गया हो, और भी कोई मानक की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड पे उनका एज अगर 70 साल पूरा हो गया है तो उनका जो भी गोल्डन कार्ड बन जाएगा। उस दूसरे स्टेप में जो है किसी भी फैमिली में अगर 6 लोग हैं, राशन कार्ड पे 6 प्रतिनिधि हैं, तो उनका भी आयुष्मान।
1: नहीं, अब इसमें एक सवाल है कि 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो क्या 6 से कम भी नहीं होने?
2: 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से अधिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी,
1: 6
2: से कम मिनिमम, जी मिनिमम जो है संख्या 6 रखी गई है, तो उनका सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। बट ये कंडीशन इसमें ये रहती है कि 6 वो कार्ड जो है वो 5 लाख की मतलब लिमिटेशंस होती है, तो वो 5 लाख की धनराशि जो है वो 6 लोगों पे डिपेंड।
1: अच्छा, मान लीजिए ऐसा हो कि परिवार में तो 6 सदस्य हैं, लेकिन 2 सदस्य कहीं बाहर रहते हैं, वो बहुत कम उनकी फ्रीक्वेंसी होती है अपने घर आने की, तो ऐसी कंडीशन में भी कोई दिक्कत है या बन जाएगा?
2: लगभग हर क्षेत्र में मतलब हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं, तो मैं अपेक्षा करता हूं अगर कोई बाहर फंसा हुआ है तो वो वहां अपने नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र पे संपर्क करके वो बनवा सकता है, वो या स्वतः ही जो है एक ऑप्शन आता है प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना करके, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके स्वतः वो अपना कार्ड जनरेट कर सकता है।
1: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि स्वतः ही कार्ड लोग अपना, अगर आप जरा से जागरूक हैं या जो जन सेवा केंद्र बने हैं वहां जाकर अगर आप करवा सकते हो, या आप थोड़ा सा भी अगर इंटरनेट फ्रेंडली हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से आप चला लेते हैं, तो आप स्वतः ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि बता दें थोड़ा सा ये प्रक्रिया क्या रहती है।
2: एक प्ले स्टोर में जो है एक ऐप आता है, उसमें हम लोग डालेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कर, ठीक है, उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसमें 2 ऑप्शन आता है, बेनिफिशियरी एंड ऑपरेटर का मोड का 2 ऑप्शन आता है, तो कोई भी एक आम नागरिक है वो बेनिफिशियरी का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना कार्ड जनरेट कर सकता है, सिर्फ उसमें आधार कार्ड का ऑप्शन डालना है और एक कैप्शन मांगेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक थोड़ा सा भी आप लगभग सभी के यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल हैं अटैचमेंट में है, तो वो अपना कार्ड।
1: और ये प्रक्रिया लगभग कितने समय में पूरी हो जाती है?
2: मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है।
1: अच्छा,
2: बस जी। और थर्ड ऑप्शन में बताना भूल गया, जो भी आयुष्मान कार्ड के लिए वैध हैं, तो जो भी वरिष्ठता के क्रम में जिनका उम्र 60 साल है, जो भी वृद्ध है हमारे 60 साल की उम्र हो, राशन कार्ड पे वो 2 लोग हैं सिर्फ, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों की उम्र अगर 60 साल से ऊपर है तो वो पात्र है, उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। उम्र का थोड़ा सा वो डिफरेंस रहता है, अगर वो हस्बैंड 60 या 61 साल के हैं, या जो माता जी है उनके घर में वो 59 साल के हैं, तो वो पोर्टल उनको नहीं लेगा। दोनों की उम्र कंडीशन ये है कि दोनों लोगों की उम्र 60 से ज्यादा हो, तो वो राशन कार्ड में सिर्फ 2 ही अभ्यर्थी हों, उस जरिए से उनका आयुष्मान कार्ड जनरेट किया जाता है।
1: ऐसे ही आभा को लेकर भी हम देखते हैं कि लोग अभी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, तो क्या आप भी अपने स्तर पर आभा को लेकर, आभा आईडी को लेकर भी जागरूक करते हैं?
2: जी बिल्कुल, बनाते हैं। आभा मतलब ये है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट करके, तो जैसे हमारा एक बैंक में अकाउंट वगैरह रहता है, उसी प्रकार से ये स्वास्थ्य अकाउंट है। इन फ्यूचर इसका बहुत ही अहम रोल रहेगा स्वास्थ्य व्यवस्था में, आप कहीं भी जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड उस आभा नंबर के जरिए संचय कर लिया जाएगा, तो भविष्य में बहुत सारे हमारे दस्तावेज मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं
1: जी।
2: तो उसको लेके कोई असुविधा नहीं होगी, आपने जहाँ कहीं भी 2025 में या उससे पूर्व में इलाज कराया होगा, तो आसानी से हम लोग
1: पूरी मेडिकल हिस्ट्री
2: उसमें संचय रहेगी, तो फाइंड आउट कहीं भी आप देश के किसी भी कोने में जाके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ किस समय आपने इलाज कराया था।
1: अब तो ORS का भी जिक्र हो रहा है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए पोर्टल पर, और आप अपनी जो कंसल्टेंसी है किसी डॉक्टर से, वो ऑनलाइन जाए, जो भीड़ में खड़ा होना पड़ता था कि हम जाएंगे ओपीडी में लाइन लगाएंगे, उससे निजात पाने के लिए इसके
2: अहम मतलब ये योजना है हमारे यहाँ की टेली कंसल्टेशन, आयुष्मान भारत का जो टेली कंसल्टेशन की सुविधा है। मीन्स जो भी गंभीर बीमारी वाले जो भी क्लाइंट आते हैं या व्यक्ति आते हैं, तो हम उनका ऑनलाइन एक परामर्श हम पोर्टल के माध्यम से, जो भी MBBS डॉक्टर या एक पोर्टल हब होता है आमने सामने वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंसिंग करके वो करा सकते हैं, जिससे कि एक अहम जो हमें ट्रीटमेंट की सलाह उचित परामर्श मिल जाता है हायर सेंटर से।
1: श्रोतागण हैं सुनने वाले या सोशल मीडिया पेज फॉलो करके इसके जरिए जागरूक होने वाले, उनको आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: जी, आपसे इसे मेरा निवेदन है कि सभी लोग जो भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी आपके दरवाजे पे पहुंचे या कोई भी आशा वर्कर या इनम सिस्टर वगैरह पहुंचते हैं, तो आप सभी का सहयोग करें, ये आपसे अपेक्षा करता हूं।
1: बहुत धन्यवाद राहुल जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। तो हमने आपके पास इतनी अहम जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। तमाम गांवों में लोग अभी भी कहीं ना कहीं अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर बहुत परिचित नहीं है या बहुत जागरूक नहीं है, या उनको बहुत ज्यादा जानकारी इस बात की नहीं है कि कितने तरह का इलाज या किस किस तरह की जांच सुविधा वहां पर मौजूद है। इस तमाम जानकारी राहुल कुमार वर्मा जी, जो कि बतौर CHO कार्यरत है, उन्होंने दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534। You are listening FM Muradabad 89.6 MHz. Committed to community.

0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, शक्ति की साधना का यह पावन पर्व हमें नारी के अद्भुत स्वरूपों से परिचित कराता है। नवरात्रि के इस तृतीय दिवस पर पूजन करते हैं माँ चंद्रघंटा की, जो वीरता, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि जब नारी सशक्त होती है तो वह हर चुनौती का सामना डटकर कर सकती है। और आज का उत्तर प्रदेश इसी सशक्त नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण बन चुका है। पिछले 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास और सुशासन की एक नई मिसाल कायम की है, जहां महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आज प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व, हर जगह उनकी भागीदारी, उनकी ताकत, उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। योजनाओं और प्रयासों के माध्यम से एक ऐसा माहौल तैयार हुआ है जहां हर बेटी खुद को सक्षम और सशक्त महसूस कर रही है। तो आइए माँ चंद्रघंटा के साहस और शक्ति से प्रेरणा लेकर हम सभी मिलकर नारी सम्मान और सशक्तिकरण के इस संकल्प को और मजबूत करें।
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, ये दास्तान है हौसले की, मेहनत की और सरकार के सही सहयोग से बदली हुई किस्मत की। आज हम आपको लेकर चलेंगे आगरा के एक छोटे से गांव जर्रार में, जहां एक साधारण महिला ने मोती की माला से 250 महिलाओं की जिंदगी में उम्मीद की चमक को लाया है। सोचिए, एक महिला सिर्फ 10वीं पास, घर परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त, लेकिन उनके दिल में एक सपना था कुछ करने का, कुछ बनने का, और उनका यही सपना आज बन गया है एक मिसाल।
1: पहले मेरा जीवन बिल्कुल साधारण था, सुबह शाम तक घर का काम और बच्चों की देखभाल, बस यही करते करते दिन कब निकल जाता था।
0: हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है हमारे गांव की, जहाँ प्रतिभा तो होती है लेकिन अवसर नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को मंच दिया है, जिससे वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। रुचि की जिंदगी में तब बदलाव आया जब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, कृष्णा स्वयं सहायता समूह शुरुआत। यह सिर्फ एक समूह नहीं था, यह थी रुचि के आत्मनिर्भर बनने की पहली सीढ़ी।
1: जब हमने समूह बनाया तब हमें खुद पर विश्वास ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम सीखते गए और आगे बढ़ते गए।
0: दोस्तों, शुरुआत आसान नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की, और यही पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निभाया अपना कर्तव्य। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF और कैश क्रेडिट लोन CCL के माध्यम से रुचि दीदी को मिला 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, और यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ ली।
1: जब हमें 3 लाख रुपए का लोन मिला तो लगा कि अब हम समय कुछ कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा था।
0: अब सवाल था क्या किया जाए, और यही से शुरू हुआ एक अनोखा सफर, मोती माला का व्यवसाय। एक ऐसा काम जो घर बैठ कर भी किया जा सकता है, जिसमें लागत कम है और मेहनत का फल ज्यादा। रुचि देवी ने ना सिर्फ खुद यह काम शुरू किया, बल्कि अब 10 गांव पंचायतों की 250 महिलाओं को भी जोड़ लिया। सोचिए दोस्तों, एक महिला और उसके साथ 250 सपने।
1: मैं चाहती थी कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे गांव की बाकी महिलाएं भी आगे बढ़े, इसीलिए मैंने उन्हें सिखाया, जोड़ा और साथ लेकर चली।
0: आज स्थिति यह है कि सभी महिलाएं घर के काम के साथ साथ माला बनाकर हर महीने 10 से 15 हजार रुपए कमा रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, और रुचि देवी वो खुद हर महीने 20 हजार रुपए की आय कर रही हैं। यानी गांव की एक सीधी साधी महिला का सपना अब बन चुका है एक मजबूत आर्थिक मॉडल। दोस्तों, यही है उत्तर प्रदेश की लखपति दीदी योजना का असली प्रभाव। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं देती, यह आत्मविश्वास देती है, पहचान देती है और सम्मान भी देती है।
1: आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे साथ काम करने वाली बहनें भी अपने परिवार का सहारा बन रही हैं। पहले जो लोग हमें कम समझते थे, आज वही हमें सम्मान देते हैं।
0: क्या आपने महसूस किया दोस्तों, यह सिर्फ कमाई की बात नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मविश्वास की बात है, उनके पहचान की बात है और समाज में बदलाव की बात है। और इस बदलाव के पीछे है योगी सरकार की दूरदर्शी सोच और मजबूत नीतियाँ। आज पूरे यूपी में महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभाल रही, वह कारोबार चला रही हैं, रोजगार दे रही हैं और समाज को आगे बढ़ा रही हैं। यही है नया उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश।
1: मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 250 महिलाओं का नेतृत्व कर पाऊंगी, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं यह कर पा रही हूं। यह बस सरकार की योजनाओं की वजह से संभव हुआ है। इसके लिए योगी जी और प्रदेश के सरकार को चाहे जितना भी शुक्रिया बोलूं, कम ही है।
0: दोस्तों, अगर सही दिशा मिले, सही सहयोग मिले तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। रुचि देवी ने यह साबित कर दिया है कि हौसले हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं और एक महिला पूरे समाज को बदल सकती है। आज की इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अवसर मिले तो उसे पकड़िए, खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ने से कभी मत डरिए। मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे राज, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी और रेडियो की जुबानी। फिर मिलेंगे दूसरी प्रेरणादायक कहानी के साथ, तब तक याद रखिए, बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है। हां जी, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। अभी के लिए लेता हूं मैं यहां से अलविदा, नमस्कार।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आखिर वो बात क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला। मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं, पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रूपए लगा देता हूँ, मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, OTP, UPI पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं, इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते थे श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है। तो राज फिलहाल इस शो से अभी के लिए अलविदा लेना चाहता है और जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहता है कि लालच बुरी बला है। अगर कहीं पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा 2 गुना 4 गुना इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इन्वेस्ट करने से पहले कृपया करके जांच कर लें कि क्या आप सही जगह निवेश कर रहे हैं या फिर नहीं। तो अभी के लिए लेता हूँ यहाँ से अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। जल्दी मिलूंगा कुछ और ऐसी ही इम्पोर्टेंट बातों के साथ।
1: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और श्रोताओं, समय हुआ है 3:09 एंड मैं आपके साथ आपकी खुशी हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। हेलो फरमाइश, और मैं आपकी दिल की बातें भी सुनने आ गई हूँ, तो फटाफट से मुझे कॉल लगाइए। आप नंबर है 9837896896। करेंगे ढेर सारी बातें और इस खूबसूरत पल को बनाएंगे और भी ज़्यादा शानदार आपकी बातों के साथ, आपके प्यारे गानों के साथ। एंड अभी मैं एक प्यारा सा गाना आपको सुनवाती हूँ अपनी पसंद का, कुमार सानू जी साथ में साधना सरगम जी की खूबसूरत सी आवाज़ में। ये खूबसूरत गाना आप सभी के लिए इंजॉय कीजिएगा। नमस्कार एवरीवन।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। और दोस्तों, दिल की बात कहने के लिए आपको बहुत इजी सा काम करना है, कोई टिपिकल काम नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं बताती हूँ, आप ना परेशान मत होया करो। पता है आपको दोस्तों, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। आपको क्या करना है मैं बताती हूँ, हमसे बात करने के लिए ना आपको हमें फ़ोन लगाना है। जो अभी आप मोबाइल हाथों में लिए हुए हो ना, हाँ, इस वक्त इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, आप इसे कह रही हूँ कि प्लीज़ आप हमें कॉल लगाओ। 9837896896 श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और वक्त हुआ है अभी अपने कॉलर से बातचीत करने का, जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो हेलो फरमाइश,
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद मुस्तकीम नाम है
0: जी। मुस्तकीम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद से बात कर रहे हैं
0: जी। बताइएगा कैसे हैं सर?
1: बस बढ़िया, आप बताइए मैम कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा क्या कर रहे हैं इस वक्त आप?
1: हम जुड़ैया करते हैं, चिनाई करते हैं, मकान बनाते हैं।
0: अच्छा, आप सबकी आशियाने तैयार करते हैं
1: जी।
0: अरे वाह, इस समय तो गर्मी काफी है।
1: बनवाना चाहो तो आप भी बनवा दियो मैम।
0: ठीक है सर, बिल्कुल। कभी बनवाएंगे हम भी अपना पसंद का आशियाना, तो आपको जरूर बताएंगे।
1: वो गाना वाला है क्या नाम है, लाल दुपट्टे वाली जानम रुक जाना सीधी शादी।
0: अच्छा ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। एंड मैं आपसे कहती हूँ कि आपको भी है फोन लगाना, कोई नहीं चलेगा बहाना। मोबाइल नंबर है 9837896896। और एक खूबसूरत से गाना एंजॉय कीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे सी गाने के इस पर।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B, बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: कॉल 7500153841।
9: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
10: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
9: पर पापा।
10: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
11: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी खुशी लेकर आती हूँ आपके लिए आपका पसंद का कार्यक्रम जी हाँ हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मुझे कॉल करते हैं और अपने पसंद के गीत सुनते हैं। श्रोताओं, देखिए वो गाने सुनने के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन रेडियो की बातें अलग ही हैं। रेडियो पर गाना सुनना, वो कॉल लगाने का जो लाइक रहता है क्रेज़, उसके बाद फाइनली कॉल लगता है, वो खुशी जब हम घर वालों से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि हमारा कॉल लग गया है हेलो फरमाइश में, और फिर उस पर बातचीत करना फ़ोन पर रेडियो में आरजीत से बात करना, एंड वो गाना सुनने का जो सुकून है ना, जो खुशी है, वो शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती है। और हमारे साथ एक लिसनर भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। एंड हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं मोहल्ला बारादरी, मैं मुतखरामपुर से
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सर?
1: भाई रफत साहब बात कर रहा हूँ मैं।
0: हाँ जी, मैंने आपसे हाल चाल पूछे हैं, कैसे हैं बताइएगा सर?
1: मैम अच्छे हैं, बढ़िया। आप सुनाइए, आपकी क्या हाल है और मुरादाबाद आकाशवाणी परिवार की क्या हाल है?
0: हाँ जी, ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, आपकी फैमिली में सब खैरियत से हैं?
1: बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी।
1: सब लोग,
0: और नगमा मैम कैसी हैं?
1: नगमा मैम भी अच्छी हैं, लेकिन इस वक्त वो घर गई हुई है ना।
0: अच्छा, इस बारी वो अपनी मम्मी जी के घर गई हैं?
1: जी जी, मैं
0: चलिए अच्छी बात है, थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना बहुत जरूरी होता है।
1: जी मैम
0: जी, तो
1: घर आ जाऊंगा।
0: अच्छा,
1: मैं घर जाऊंगी, चली जाओ।
0: देखिए ससुराल में माना कि पूरी फैमिली प्यार करती है, लेकिन मम्मी के घर की बात ही अलग होती है। क्यों? हमारे साथ में देखिए एक बहुत ही स्वीट सी यहाँ पर एक कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल गर्ल हमारे साथ जुड़ी है, कुमकुम। तो कुमकुम, आप मुझे बताओ कि ससुराल में भले ही बहुत प्यार मिलता हो, लेकिन मम्मा के घर की बात अलग ही होती है। हाँ, ये तो आप जान नहीं सकती, आपसे अच्छा कौन जान सकता है।
2: जी नमस्कार श्रोताओ, मैं कुमकुम आपकी दोस्त।
0: आपने आज खाना नहीं खाया, आप इतना धीरे क्यों बोल रही हैं? बताइएगा। ओके,
2: जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा कि ससुराल और मायके में थोड़ा डिफरेंस होता है।
0: हाँ, भले ही ससुराल में भी फैमिली जैसा ही प्यार मिलता है, सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मम्मी के घर की बात ही अलग होती है। जैसे एक मतलब शादियों के दुल्हन घर जाती है, ससुराल में जाती है, फिर उनसे कहा जाता है कि चलो आपको अपनी मम्मी के घर लेकर चलते हैं, तो वो खुशी लड़की की एकदम
2: वो जो अनएक्सपेक्टेड खुशी होती है ना।
0: हाँ,
2: लड़कियों की वो इसलिए होती है क्योंकि उनका ना बचपन वहाँ बीता होता
0: है। Exactly.
2: बचपन में बहुत सारी याद होती है, चुलबुलापन होता है, और भाइयों के साथ वापस से वही पल दोबारा एक पल के लिए याद आना, उसे मेमोराइज करना, जीना बहुत अच्छा लगता है,
0: बहुत अच्छा लगता है। राइट,
2: ससुराल में भी ऐसा होता है कि हाँ वो बच्चों की तरह रह पाती है। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मेरे
0: आपके फैमिली मेंबर्स
2: हैं। राइट, बट जो हमारी बचपन वाली मेमोरीज होती है, जो हम बड़े होकर नहीं कर पाते ना, वो मायके में जाके जो मेमोरीज मिलती हैं वापस से, उनको फील करके बहुत ही अच्छा फील होता है।
0: अच्छा, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, पले बड़े हैं, पढ़ाई लिखाई किए, खेले कूदे हैं, वो गलियाँ, वो घर कभी हम नहीं भूल पाएंगे। और हमेशा जब भी अगर बात होती है घर जाने की, मम्मा से मिलने की, तो वो एक्साइटमेंट, वो खुशी तो अलग ही होती है। और सर ने एक प्यारी सी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी यहाँ पर कुमकुम, सर ने बताई है, और इस खूबसूरत से गीत को सुनते हैं। बाकी एवरीवन, आप भी मुझे कॉल लगाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए
2: और गुनगुनाते रहिए
0: और मुस्कुराते भी रहिए। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर करेंगे ढेर सारी बातें आप सभी के साथ।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और खूबसूरत गीतों का आप आनंद यहां पर ले रहे हैं। श्रोताओं, हम आपसे बातचीत तो कर ही रहे हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में कुमकुम भी है। और कुमकुम, बताइए आप, बाहर का वेदर कैसा है इस समय राइट नाउ?
1: बाहर का वेदर तो बहुत गर्म है, जैसे मैं अभी आई हूँ तो काफी गर्मी फील हो रही है।
0: अच्छा,
1: बट अभी मैंने रास्ते में जाते हुए दो लोगों को देखा था।
0: हाँ,
1: वो बाइक पे ड्राइव तो कर रहे थे।
0: हाँ,
1: उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था।
0: अच्छा, हेलमेट नहीं पहना हुआ था, बिना हेलमेट के ही वो ड्राइविंग कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे।
1: हाँ, तो मेरा सबसे यही कहना है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो रूल्स फॉलो जरूर करें, क्योंकि ना दुर्घटना आपके लिए जानलेवा हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है, आपकी फैमिली को दुख दे सकती है। तो अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आप हमेशा हेलमेट का ध्यान रखें,
0: हेलमेट हमेशा पहने। और कुमकुम, आगे चलाने वालों को भी हेलमेट नहीं पहनना चाहिए, मेरा मानना है कि पीछे वालों को भी हेलमेट पहनना चाहिए। जितनी आवश्यकता आगे वालों की हो इतने पीछे वाले को भी है, तो सेफ रहना बहुत जरूरी है एवरीवन। सेफ्टी आपके हाथों में ही है। और कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो बेहतर है कि आप पहले से ही सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और जो इस समय अभी हमें कार में सुन रहे हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं ऑन द वे, जो कार में इस समय हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सर एंड मैम, कि आप जब भी ड्राइविंग करें तो सीट बेल्ट हमेशा बांध कर ही
1: करें।
0: हाँ जी,
1: और आपके पास कोई भी इम्पोर्टेंट कॉल आती है तो प्लीज अपने फोन से थोड़ा डिस्टेंस बना लें टाइम टू टाइम। अगर कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है तो गाड़ी को साइड लगाएं, उसके बाद आप कॉल अटेंड करें।
0: हाँ, मैंने देखा है बहुत से लोग ड्राइव करते रहते हैं और कॉल पर बात करते रहते हैं, उससे भी हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, लाइक ध्यान हमारा इधर उधर भटक जाता है, तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गाड़ी चलाते समय आप फोन का इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है एवरीवन। एंड बाकी सुनते रहिए, आपके सफर को सुहा ना यहाँ पर खुशी बना रही है, और खुशी के साथ कुमकुम भी हाजिर है, दोनों की राशि सेम है। तो चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं और क्या उनकी फरमाइश है, वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो सर, नमस्कार। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
2: हेलो फरमाइश।
0: जी सर नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: नमस्कार जी, नमस्कार। ये एफएम मुरादाबाद है जी?
0: यस, ये एफएम मुरादाबाद है।
2: क्या टाइम हो रहा?
0: सर टाइम हुआ है 3:39।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका वो टाइम बताने के लिए।
0: मोस्ट वेलकम।
2: खुशी जी बहुत खुशी हो रही है, हमारा फोन लग गया तो।
0: अच्छा, थैंक यू सो मच सर, हम तो यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें।
2: जी। तो हम गीत सुनना चाहते हैं तो?
0: बिल्कुल, गीत भी सुनवाएंगे हम आपको। पहले अपने नाम तो बताइए, अपना परिचय दीजिए।
2: अरे याद दिलाने, मतलब फोन लग जाता है ना तो इतनी खुशी होती है कि अपना एड्रेस ही बताना भूल जाते
0: हैं। अरे सर, इतना भी खुशी में मशरूफ मत होइए कि अपना एड्रेस ही भूल जाए आप।
2: ना, सही बात है। और इंतजार करने का कि भाई अब उधर से हेलो की आवाज आएगी, उधर से हेलो की आवाज आएगी। ये भी बहुत, ये इंतजार भी बहुत अच्छा लगता है हमें
0: जी।
2: हाँ, मोहल्ला पंजूसराय मरकज वाली मस्जिद कम्बल से छोटे अंसारी
0: जी। छोटे अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बताइएगा सर कैसे हैं आप और आपके परिवार में सब ठीक है?
2: परिवार में सब ठीक है अल्लाह अलहमदुल्ला, और उम्मीद करता हूँ आकाशवाणी में भी सब खैरियत से होंगे और अच्छे भले होंगे, ठीक होंगे।
0: हाँ जी, हाँ जी, सब बहुत ही अच्छे हैं सर, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा, आज कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी क्या फरमाइश है, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है?
2: फिल्म का नाम है एक दूसरे के लिए। गीत लिखा है आनंद भक्ति ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज लता मंगेशकर, सुब्रमण्यम, हीरो है कमल हसन और अग्निहोत्री
0: जी।
2: हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे।
0: अरे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छा गुनगुनाया है सर।
2: कुछ मतलब नाम ले लूं दोस्तों के?
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ले लीजिएगा, कुछ ही नाम लीजिएगा, बहुत सारे नाम मत लीजिएगा।
2: अच्छा, तो खुशी जी है, सरदाना से मेहरबान अली अंसारी, साथ भाई हैं, बाबू भाई हैं, सफी अहमद हैं, जफर भाई हैं, वलीउल्ला अंसारी हैं, अजीत खजाना हैं, यूनुस खान हैं, खुशी जी हैं, फरीद भाई हैं, अंसार भाई हैं, महराज भाई हैं और छोटे अंसारी जी के साथ में।
0: ठीक है सर, सभी के साथ सुनवाते हैं ये गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा गीत, लौट कर आएंगे हम और आप भी मुझे कॉल लगाओ, नंबर है 9837896896। इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपके सफर को बनाएंगे और भी ज्यादा खूबसूरत। चाहे आप घर में हो, चाहे आप कारखाने में हो, चाहे आप कार में हो या फिर आप शॉप में हो, तो सभी के लिए ये खूबसूरत सा गाना और एंजॉय कीजिएगा आप। हमें फोन लगाना मत भूलिएगा, खुशी आपसे कह रही है। और हाँ, रिमाइंड भी कराती है कि आप इस प्यारे से मुखड़े पर ना प्यारी सी स्माइल भी रखो।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आरजी खुशी करती है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। और इस खूबसूरत गाने के बाद हम हाजिर हो गए हैं। एंड श्रोताओं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप भी हमें इस ब्यूटीफुल शो में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, जो आपके लिए आता है मंडे टू सैटरडे 2 घंटे का शो लाइव फोन इन कार्यक्रम। एंड आप हमें चाहे इंडिया में सुन रहे हैं या इंडिया के बाहर से भी सुन रहे हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इंडिया में रहते हैं वो तो एप्लीकेशन पर सुनते हैं, लेकिन जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो कैसे सुने? हाँ जी, आप भी एप्लीकेशन के माध्यम से हमें सुन सकते हैं इजिली। अब तो रेडियो जो है, रेडियो डिजिटल हो चुका है। एंड एप्लीकेशन पर आप उसके, आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ईजी सा आपको काम करना है, प्ले स्टोर पर जाना है एंड हमारा एफ एम मुरादाबाद 89.6 जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा एफ एम मुरादाबाद का लोगो नज़र आ जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। फिर आप इजीली कहीं भी जाइए, अपने सफ़र को खूबसूरत बनाइए और अपने जो फेवरेट शोज़ हैं उनको आप मिस भी नहीं करेंगे, उनको आप, उनका आप आनंद ले सकते हैं इजीली। कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, आजकल सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, आदाब जी। मैडम
0: जी, आपको भी आदाब, अपना नाम बताइएगा।
1: लतीफ अहमद रैना, कश्मीर सोनामर्ग।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक हैं?
0: हाँ जी, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। आप बताइएगा, कश्मीर का मौसम कैसा है अभी?
1: अभी थोड़ा मौसम ठीक नहीं है, उधर से यहाँ 3 दिन से बारिश आ रहा है।
0: अच्छा, रेगुलर बारिश हो रही है?
1: रेगुलर नहीं है, थोड़ा रात को भी बारिश, दिन को कभी कभी बारिश।
0: अच्छा, रुक जाती है फिर बारिश हो जाती है, राइट?
1: हाँ, रुक के बारिश।
0: ओके, तो बताइएगा सर, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: माँ तुझे सलाम।
0: माँ तुझे सलाम, अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा देशभक्ति गीत आपने चुना है, सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: मैडम ये लाइन ठीक कीजिए ना, बहुत दिक्कत आती है इसमें, खाली कैंटी बेचते।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इतना दूर से निकाल करता हूँ, इतना टेंशन हो जाता है।
0: टेंशन नहीं लेना है आपको, मुस्कुराना है। ओके,
1: मुस्कुराए तो अभी तो कॉल लग जाएगा ना।
0: हाँ देखो, अभी आपका कॉल लगे है, आप तो मुस्कुरा दीजिएगा।
1: अभी तो लाइन ठीक है।
0: हाँ, बस हमेशा ऑलवेज ऐसे ही हैप्पी रहिए और सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837 8968 96।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और समय हो यहाँ पर हुआ है अभी 3:58 एंड हमारे साथ में, मैंने आपको बताया था कि खुशी अकेली नहीं है, मेरे साथ में कुमकुम भी हैं जो इस समय मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि मैम मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो मेरे दिल में, मैं कहना चाहती हूँ। मैंने बोला बिल्कुल, आपके दिल में अगर कोई बात है तो आप उसको रोकिए मत, कह डालिए। जी बताइए कुमकुम, क्या कहना चाहते हैं आप?
1: जी खुशी जी, मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहिए कि जिस तरह से अभी गर्मी चल रही है,
0: हाँ जी,
1: और हम लोगों को पानी की नीड होती है,
0: एब्सोल्युटली राइट,
1: ऑक्सीडाइज होने जरूरी होता है, हाइड्रेशन काफी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। उसी तरह से ना, जैसे हम लोगों को नीड होती है ना, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को भी नीड होती है
0: पानी की।
1: जी
0: या
1: पानी की।
0: तो कुमकुम जी कहना चाहती हैं हमसे कि एवरीवन, जितने भी अभी हमें इस वक्त हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो आप अपने ब्यूटीफुल टेरेस पर, प्यारे से जहां आपने गार्डन बनाया हुआ है, वहां पर आप पानी किसी भी बर्तन में रखिए पक्षियों के लिए। क्योंकि श्रोताओं देखिए, हम लोग तो बोलकर भी अपनी दिल की बात, अपने जज्बात, दुख सुख सब कुछ शेयर कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम जो पशु पक्षी हैं, उनको बेचारों को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, वो किससे कह पाएंगे? तो मैं चाहती हूँ, देखिए उनके अंदर भी जान है, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, तो उनको भी समझना हमारी हमें समझना चाहिए। और उनकी आवश्यकता के लिए आपको पानी एंड पशुओं के लिए बाहर चारा भी रख सकते हैं, और पक्षियों के लिए दाना भी रख सकते हैं, एंड छत पर रख सकते हैं, या बालकनी में रख सकते हैं, घर के बाहर भी डॉग्स वगैरह रहते हैं, उनको भी पानी वानी वो भी पी सकते हैं। और जो पशु होते हैं, लाइक जैसे गाय हो गई हैं, वो रोड पर रहती हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी। जब वो ठंडा ठंडा पानी पिएंगी, तो उनके भी जो लाइक कहते हैं ना कि जब पानी पीते हैं तो आत्मा हमारी संतुष्ट हो जाती है, और वो जो दिल से दुआएं निकलती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत काम आती हैं
1: जी। और पशु पक्षी ही नहीं, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं जिनकी वजह से हमें ठंडक मिलती है,
0: ऑक्सीजन मिलता है,
1: पानी हमें टाइम टू टाइम देना चाहिए, सुबह और शाम।
0: हाँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग में पानी देना चाहिए, पेड़ों की साफ सफाई भी करनी चाहिए, एंड उतनी ही आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को, जितना हमें लगाने की जरूरत होती है, उतना उन लगाने के साथ साथ उनका ध्यान रखने की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। तो एवरीवन, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की हैं
1: जी, क्योंकि पशु पक्षी और पेड़ पौधे होने से ही हमारा नेचर है और हम जीवित हैं।
0: बिल्कुल, और खूबसूरती भी तभी लगती है। अभी देखो, अब सुबह सुबह वॉक करने जाती होंगी तो आप देखती होंगी कि आपके आसपास चिड़ियां चहचहाती हैं, सुबह का वातावरण कितना खूबसूरत होता है।
1: एक अर्ली मॉर्निंग और एक इवनिंग, ये टू टाइम्स ऐसे होते हैं पूरे 24 आवर्स में जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर दिखते हैं, और एकदम मन को शांत कर देने वाले, अंदर से ये खुशी फील होती है, जैसे कि हमारी खुशी मैम की आवाज़ सुन के हमें खुशी फील होती है।
0: थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, एंड हम अपनी बातों को भी कंटिन्यू आगे करेंगे, लेकिन पहले श्रोता से भी बात कर लेते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश
0: जी। सर अपना शुभ नाम बताइएगा।
2: बबलू कुमार
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर
2: मुरादाबाद
0: से बात कर रहे हैं। मुरादाबाद में कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइएगा। अच्छा जी, बताइएगा क्या करते हैं सर आप?
2: ये पुलिस में हैं
0: मैम। ओके, और रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
2: काफी समय हो गया, रेडियो से तो काफी पुराना लगाव है।
0: अच्छा, काफी पुराना लगाव है जी, बताइएगा आज आपका कॉल लगा है सर, क्या फरमाइश है आपकी?
2: मेरे महबूब कयामत होंगे।
0: अरे वाह, क्या बात है, किशोर दास जी की आवाज में प्यारा सा ट्रैक, किन के लिए सुनना चाहते हैं आप?
2: ये मिथुन कुमार है।
0: हाँ,
2: इस्माइल है
0: जी,
2: और
0: ठीक है सर, आपके फ्रेंड्स के साथ ही प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं, कॉल करने के लिए थैंक यू। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक किशोरदा जी की आवाज़ में, मेरे महबूब कयामत होगी, बहुत ही प्यारा सा गाना है, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप कॉल लगाना मत भूल जाना, मोबाइल नंबर है 9837896896, रेडियो बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए।
0: बिल्कुल, हमारी तरह आप भी गुनगुनाते हैं, ये बात तो हम जानते हैं।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
5: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
10: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: ए हाय रियली
1: आपके बिना तो दिन नहीं होता।
0: ओ माय गॉड दोस्तों, वैसे हम बताएं कि हम ये जिक्र क्यों कर रहे हैं, हम आपके हैं कौन, क्योंकि आज बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टर्स का बर्थडे है और आप समझ ही गए हैं माधुरी दीक्षित जी का आज बर्थडे है एंड उन्हीं की फिल्मों की हम चर्चाएं कर रहे थे। तो मुझसे कुमकुम ने पूछा कि कुमकुम की खुशी मैम आप मुझे बताइए आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है माधुरी दीक्षित जी की। तो मैंने कहा मुझे तो पसंद है हम आपके हैं कौन। तब इन्होंने वो लाइनें बोली बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मैंने कहा ऑन ईयर भी आप ये मुझसे ज़रूर कहिएगा, इजहार ज़रूर कीजिएगा आप। तो अभी हम बात करेंगे, वैसे तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं एवरीवन, लेकिन अभी हम अपने कॉलर से भी बात कर लेते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो
2: फरमाइश, जय
0: श्री राम। आपको भी कैसे हैं सर? आप
2: जी बढ़िया है, आप तो ठीक हो?
0: हाँ जी हम तो ठीक हैं। अपना शुभ नाम बताइएगा आप।
2: जी मैं दुर्गेश सैनी बोल रहा था, ग्राम संदेश।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप सब?
2: बढ़िया
0: जी बताइए। हाँ
2: नंबर लगा
0: दे। बहुत अच्छा किया आपने, आज आपकी छुट्टी थी और आपने ये कॉल भी लगाया, आपका कॉल भी शामिल हो गया है। तो बताइएगा आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे सर? ठीक है दुर्गेश जी, हम अपनी पसंद का एक प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं, आप उस गाने का आनंद लीजिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: जी
0: तो कुमकुम हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी सर का कॉल तो कंप्लीट हो गया है, आप मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है माधुरी जी की, अभी बताना चाहेंगी या बाद में बताएंगी?
1: वैसे तो मेरी फेवरेट फिल्म भी हम आपके ही कौन है।
0: ओ हो हो, उसमें गाना है ना दीदी तेरा देवर दीवाना।
1: जी हाँ, वो गाना तो काफी फेमस भी है और काफी चुलबुला सा है।
0: हाँ एग्जैक्टली, और वो बहुत सारी शादियों में चलता है, कई शादियां होती है तो वो वाला ट्रैक बहुत ज्यादा चलता है,
1: खासकर हमारी जो छोटी बहनें होती है वो चलवाती हैं।
0: हाँ और वो जूते वाली रस्म नहीं होती है जो जूते चुराई वाली। हाँ वो भी उसमें वो वाला सेगमेंट में है ना।
1: जी
0: हाँ, तो कुल मिलाकर बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है एंड माधुरी जी पर ही फिल्माया गया एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैक उनकी फिल्म का, हम आपको सुनवाते हैं एंड लौट कर आते हैं एवरीवन। तो आप भी इस गाने का लुत्फ उठाइए और हमें कॉल लगाइए, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837 8 9 6 8 9 6। खुशी है आपके साथ, मुस्कुराइएगा आप।

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत का भी आपने आनंद लिया। और ये गीत की फरमाइश हमें की थी कुमकुम जी ने। कुमकुम क्या कहना चाहती हैं आप बताइए।
1: हाँ, जैसे हमारी खुशी जी सबकी फरमाइश पूरी करती है, मैं भी चाहती थी मेरी भी एक फरमाइश पूरी हो। और आज जैसे हमारी माधुरी मैम का बर्थडे है और उनके जन्मदिन पे ये गाने तो बजने बहुत ही जरूरी थे, पर हाँ ये गाना मेरा फेवरेट है। और खुशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी भी फरमाइश पूरी की।
0: मोस्ट वेलकम, खुशी का काम यही है, खुशियां बांटना। कुमकुम अभी देखो कैसे आपका चेहरा एकदम खिलखिला उठा है। बस हम यही चाहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि अपने श्रोताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका, अपना नाम बताइएगा।
2: संजय सिंह बात कर रहे हैं।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर।
2: देवापुर।
0: देवापुर से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा आज आपका कॉल लगा है सर, क्या फरमाइश है आपकी।
2: आज बहुत दिनों में कॉल लगाया मैंने, कॉल लग गया।
0: जी जी जी, तो बताइएगा सर क्या फरमाइश है, कौन से गीत आप सुनना चाहते हैं।
2: हम सुनेंगे आज जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सही गीत है। किन के लिए सुनना चाहते हैं सर आप।
2: सभी दोस्तों के लिए।
0: ओके, सभी फ्रेंड्स के लिए,
2: हमारे लिए, सभी के लिए।
0: बिल्कुल सर, हम भी यही चाहते हैं कि आप सबका साथ हमेशा ऐसा ही बना रहे, ऑलवेज। एंड कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो एवरीवन ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, लेकिन कुमकुम कुछ कहना चाह रही हैं जाते जाते। क्या कह रहे हो कुमकुम, आप कैसा लगता है आपको रेडियो पर आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। कभी आपने सोचा था कि ऐसे मैं भी लाइक रेडियो में जाऊँगी और इस तरह से बातचीत करने का मौका मिलेगा।
1: जी नहीं, मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि हाँ मैं रेडियो पे कभी जाऊंगी। रेडियो काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, हमारी फैमिली में सुन रहे थे सब।
0: हाँ।
1: बट कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हाँ मैं रेडियो पे जाके मेरी आवाज सब लोगों तक पहुंचेगी।
0: हाँ,
1: कभी तो सपना था कि हाँ मैं भी फेमस हूँ, लोगों तक मेरी बातें पहुंचे, बट उसका माध्यम रेडियो बनेगा ये नहीं सोचा था।
0: हाँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये पल एंड ये मोमेंट, आप लाइफ टाइम आपकी मेमोरेबल मेमोरी आपकी स्पेशल रहेगी। और बहुत ही खूबसूरत सा ये पल है। चलो बात तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन श्रोताओं ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। और इस साथ को आप भी हमारे साथ बरकरार रखिएगा एवरीवन, हमें कॉल लगाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837898968।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
3: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
3: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
4: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
3: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और श्रोताओं, यहां पर आप बहुत खूबसूरत गाने सुन रहे हैं ओनली ऑन अपनी पसंद के। जी हां, एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपसे कहना चाहती है कि अगर आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमें कॉल लगाना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837869689837896 8 9 6 8 9 6 8 9 6। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन जुड़ी है हमारे साथ। हेलो फरमाइश।
1: हाय दी।
0: हाँ जी, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: मेरे हाल चाल ठीक है दी, आप बताओ आप कैसी हो?
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, लगता है आज एक रोटी एक्स्ट्रा खाई है आपने। हाँ
1: ऐसा क्यों लग रहा है दी आपको?
0: ऐसा इसलिए लग रहा है कि आपकी आवाज में आज डबल एनर्जी है।
1: खुश होना दी मैं आज इसलिए।
0: अच्छा, ये खुशी का रीजन बताइए जरा हमें।
1: खुशी का रीजन ये है दी कि मैं और मेरी दोस्त आपसे मिलने वाले हैं।
0: ओह, फिर तो हाँ होना चाहिए, फिर तो आवाज में एनर्जी आनी चाहिए भाई।
1: हाँ दी, इसीलिए बस बहुत खुशी हो रही है।
0: हम भी बहुत खुश हैं। हमें जैसे ये अपडेट मिली कि आप लोग आने वाले हैं, तो हम भी बहुत खुश हो गए और हमने अपनी फैमिली में बताया कि हमारी जो सखियां हैं वो आने वाली हैं फिर मुरादाबाद में हमसे मिलने के लिए। तो मम्मा भी कहती हैं अच्छा। मैंने कहा हाँ जी, तो मेरी मम्मा भी बहुत खुश हुई।
1: अच्छा लगता है दी जब दोस्तों से मिल के आते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है।
0: हाँ एग्जैक्टली राइट, बहुत खुशी होती है। आप बताओ अफरोज, कैसे हैं आपकी फैमिली में सब?
1: मेरी फैमिली में सब ठीक है दी, आप बताओ आपकी फैमिली में सब कैसे है, पापा और मम्मी?
0: हाँ, हमारे घर में ऑल गुड, सब बहुत बढ़िया है। और आप बताओ इस वक्त क्या कर रहे हो आप?
1: कुछ नहीं दी, बस आज मैं बैठी थी और आपको सुन रही थी, मैंने सोचा मेरी बात नहीं हुई है सबसे तो मैं बात कर लेती हूँ खुशी दी से।
0: बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड। देखिए आपने इतनी शिद्दत के साथ कॉल लगाया फ्रोज, और आपका कॉल भी शामिल हो गया है।
1: क्या है ना, मतलब कॉल तो मेरी एकदम लग जाती है, एक ही दफा में कॉल लग जाती है मेरी।
0: हाँ ये तो है, आपकी सिस्टर भी आप ही से हेल्प लेती है ना फोन लगवाने में?
1: हाँ दी, क्योंकि मेरी सिस्टर से कॉल नहीं लग पाता है ना, तो इसलिए वो मुझसे बोलती है अभी मुझे कॉल लगा दो, तो मैं एक ही दफा में नंबर लगा देती हूँ।
0: आपके हाथों में जादू है।
1: पता नहीं क्यों लग जाते हैं, मुझसे एक ही बार में लग जाता है नंबर।
0: ओके, ये ना आपका जो एफ एम मुरादाबाद की जो प्रति प्यार है ना वो ज्यादा ही है, इसलिए फटाक से आपका नंबर लग जाता है जल्दी से।
1: क्योंकि भी हम रेडियो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, तो मोहब्बत ज्यादा ही है।
0: ज्यादा ही है, हाँ बिल्कुल। अच्छा अफरोज, आपका कॉल लगा है हमारे कार्यक्रम में, तो बताइएगा आप कुछ लाइनें, आप बड़ी प्यारी प्यारी सुनाती हैं हमें शायरियाँ, तो आज भी एक शायरी हो जाए?
1: हाँ जी बिल्कुल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना दी, अफरोज फातिमा की कॉल।

0: ना हो तो फोन अधूरी मिल जाती है,
1: अधूरी
0: मतलब
1: रह जाती है,
0: अधूरी है फोन।
1: हाँ तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि कोई शायरी जरा सुनाइए, हम सुनने के लिए भी करा रहे हैं आपकी शायरी।
0: कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ खास लाइबा के लिए।
1: इरशाद।
0: हर खुशी से खूबसूरत तेरी शाम कर दूँ, हर खुशी से खूबसूरत तेरी शाम कर दूँ, अपना प्यार और दोस्ती तेरे नाम कर दूँ। मिल जाए दोबारा अगर ये जिंदगी ए दोस्त, हर बार में ये जिंदगी तुझ पे कुर्बान कर दूँ।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई लड़की, बहुत खूबसूरत शायरी है आपकी।
0: हाँ जी, क्योंकि पता है जी, जब से लाइवा मेरी जिंदगी में आई है ना, मैं उन्हीं के लिए शायरी बोलती हूँ रेडियो पे।
1: हाँ बिल्कुल, हम भी सुनते हैं ये शायरी लाइवा जी के लिए है।
0: हाँ जी
1: ऐसी
0: बिल्कुल।
1: दोस्ती होनी चाहिए। और बताइएगा फिरोज, आज कौन सा गाना सुनोगे आप?
0: जी आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, दिल देने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई।
1: अरे वाह, बहुत प्यारा गाना चुना है आपने, ये किसके लिए सुनना चाहते हो आप, जरा बताइए हमें।
0: मेरे दोस्त ही है दी और आप सब लोग हैं, जैसे कि मेरी सिस्टर है नजमा आपकी, दरख्ता राबिया और रुकैया और आसिया, और सबसे प्यारी दोस्त है मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा, और आप सब हैं साथ में स्टूडियो वाले जितने भी आते हैं।
1: ओके बिल्कुल, सभी के साथ सुनवाते हैं गाना। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए,
0: थैंक यू जी, बाय, मिलते हैं
1: बाय,
0: आपसे।
1: टेक केयर, सी मी डियर। हम भी आपसे मिलेंगे और आप भी हमसे मिलिएगा। तो चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं। और हाँ, आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप भी इस सफ़र को सुहाना बनाइए, हमें जल्दी से कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6।

0: रोहित जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: क्या आप पुराने गर्दन, कमर, कूल्हा, कंधे के दर्द से परेशान हैं? तो संपर्क करें दर्द के विशेषज्ञ डॉक्टर निदा नसीम से। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद लेकर आया है क्रोनिक पेन रिलीफ कैंप 17 मई रविवार को। यहाँ मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा आधुनिक तकनीकी से इलाज, वो भी बिना सर्जरी के, जैसे अल्ट्रासाउंड, सी आर्म गाइडेड नर्व ब्लॉक, PRP थेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री और सभी जाँचों पर 20% तक की छूट। समय याद रखिए, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। पता, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 9412504190। 0

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है. और साथियों, अभी समय हुआ है यहाँ पर 4:45 एंड हमारे लिसनर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं. बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि उनकी पसंद का कौन सा गाना है जो आज सुनना चाहती हैं. हेलो फरमाइश. हेलो फरमाइश.
1: हाय जी.
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: जी, मैं नजमा बात कर रही
0: हूँ. कैसी हूँ मैम? मैं बहुत ही अच्छी हूँ. आप बताइएगा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जी, मैं गोदी से बात कर रही हूँ.
0: ओके, बताइएगा क्या करती हैं आप?
1: जी, घर पे ही रहते हैं, घर का काम करते हैं.
0: अच्छा, घर का काम तो सभी करते हैं. आप क्या है? और स्पेशल क्या करते हैं आप? खुद के लिए क्या करते हैं स्पेशल?
1: जी, कुछ नहीं, घर पे रहती हूँ.
0: अच्छा, आपका आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आपकी किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है? आपकी शौक़ क्या क्या है जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है काम करने में, बताइए ज़रा.
1: खाना बनाने में.
0: ओहो, फिर तो सारे.
1: घूमने का.
0: अच्छा, तो घूमने कहाँ कहाँ जाती हैं आप, बताइए हमें. घूमने जाती हो आप? लो, चुप हो गई है. बताओ, शर्माओ मत, बताइए कहाँ घूमने जाती हैं आप. लगता है कि घूमने जाती हैं, खो गई हैं. हाँ. अच्छा, बताइएगा कौन से गीत सुनेंगी आप. अरे वाह, गाना देखिए कितना प्यारा चुना है. और अभी हमसे बातें नहीं कर रही थी, एकदम चुप हो गई थी. क्यों, मना किया था आपको किसी ने बात करने के लिए? नजमा जी, बताइएगा ये गाना आप किन के लिए सुनना चाहती हैं? बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने आज ये चुना है, डिसाइड किया है. हेलो फरमाइश में.
1: ये अफरोज फातिमा के लिए, और रुकैया है, और राविया, और लाइवा.
0: ओके, ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत. थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए.
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम. तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, बहुत ही प्यारा, अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में. मैं लौट कर आ रही हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाओ. मोबाइल नंबर है 9837896896.

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी है आपके साथ. और अभी हमारे साथ हमारे लिसनर जुड़े हैं जो रेगुलर हमें सुनते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन आज उन्होंने कॉल भी किया है, तो डायरेक्टली बात करते हैं और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है. हेलो फरमाइश. हेलो फरमाइश.
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम.
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? वही हम कह रहे थे जो रेगुलर हमारे शो में मैसेज करते हैं एवरी मॉर्निंग, एंड फाइनली आज उन्होंने कॉल भी किया. इतने दिन से सर आप कॉल क्यों नहीं कर रहे थे, बताइए हमें.
1: क्लिनिक की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है.
0: ओके, तो फाइनली आज आपको टाइम मिल गया. जी जी जी और बताइएगा, सब खैरियत से हैं आपकी यहाँ पर सब फैमिली में?
1: आपकी दुआएं सब बढ़िया है. आप सुनाइए, आप ठीक हैं? घर पर फैमिली में सब लोग ठीक हैं?
0: हाँ जी, ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं. आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है.
0: ओके, और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: हमारे इरशाद हुसैन अंसारी है, मंसूरी कॉलोनी से, और शफी अहमद अंसारी है, मेराज अंसारी, और बाबू अंसारी है, और कासिम अलवी, सलीम अंसारी, सारे फ्रेंड्स हैं, सभी के साथ सुनना चाहते हैं.
0: ठीक है सर, ये ट्रैक सुनवाते हैं. कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
1: थैंक यू सो मच मैम.
0: मोस्ट वेलकम सर. तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक सर की पसंद का, अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में. बहुत ही प्यारा सा गाना. शाम का समय है, ऑफिस से घर भी जा रहे हैं कुछ लोग, और अभी कुछ तैयारी कर रहे हैं कि चलिए अब घर की ओर निकलना है. 5 बजने वाले हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, थोड़ा सा थके हुए भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों. इस खूबसूरत से शाम को हम आपकी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे आपकी फेवरेट गानों के साथ. तो जल्दी सी कॉल मुझे आप लगाओ, नंबर 9837896896.

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने समुदाय स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपकी दोस्त आरजी खुशी आपके साथ हूं, और मेरे साथ में अब अखिल जी भी आ गए हैं। पता नहीं कहां से हवा हवाएं बनकर उड़कर चले आ गए हैं। हम इंतजार कर रहे थे इनका 3 बजे से, लेकिन आए हैं 5 बजे। इनको क्या पनिशमेंट दें समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल अपने लास्ट कॉलर से बात करते हैं। जी अखिल जी, कौन जुड़े हैं हमारे साथ, जरा बताइएगा।
1: हमारे साथ जुड़ी हैं
0: शबरीन जी।
1: शबरीन जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। मुरादाबाद का जो इस समय ट्रैफिक है ना, वो ऐसा रहता है, सिग्नल ग्रीन हो या रेड, सभी को जल्दी रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको कौन सा, आपको क्या जल्दी है गाने सुनने की? अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया गाना आपने सेलेक्ट किया। आपका बताइए, आप करती क्या है और कहाँ रहती है मुरादाबाद में? अच्छा अच्छा अच्छा और कैसा इस समय मौसम हो रहा है बाहर?
2: सर काफी गर्मी पड़ रही है।
1: गर्मी काफी पड़ रही है
2: जी।
1: तो आपका, हाँ हाँ बोलिए।
2: लाइट से भी परेशान है सर, हमारे यहाँ पे आंधी तूफान आया था तो लाइट भी नहीं आ रही थी, तो यहाँ तो ज्यादा ही गर्मी लग रही है।
1: अच्छा मैम, ये जो शवरीन जी, ये लाइट का ना यहाँ शहर में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जगह जगह खंभे गिर गए हैं और लाइट की हर जगह वो हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप एफएम तो है आपके साथ, जब तक लाइट नहीं आती तब तक एफएम बजाएंगे ना।
2: बिल्कुल सर, हमारा रेडियो तो चार्ज नहीं रहता।
1: और अपने श्रोताओं के लिए कुछ कहेंगे आप, अपने मुरादाबाद के हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप?
2: जी सर, सब खुश रहें, अच्छा बोलें, अच्छा सुनें, अच्छा ही होगा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी। तो चलिए अब आपका, हाँ बताइए, बोलिए बोलिए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं शबरी ना, बहुत मेहनत करने की बात कॉल लगती है, और जब कॉल लगती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है।
2: जी मैम, हम लगभग 10-12 साल से रेडियो सुन रहे हैं, लेकिन हमारी कॉल सिर्फ मुरादाबाद में ही लगी है, पहली बार जो 2 साल से लग रही है सिर्फ।
0: कैसा लगता है शबरी जब आप कॉल करती हैं?
2: मैम आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लगता है।
0: ओके, बिना बताए आपने इजहार कर दिया है, उसके लिए शुक्रिया। और सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। बिल्कुल,
1: बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही है,
0: शुक्रिया शबरीन। सुनवाते हैं आपके पसंद के प्यारे से गाना। मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, अभी ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, और इसी गाने के साथ हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको हम संडे को, तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अभी बात करेंगे, लेकिन पहले ये गाना सुन लेते हैं एवरीवन।

0: देखिए दोस्तों, बंजारी का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ खुशी और अखिल जी यहाँ पर हाजिर हो गए हैं। हेलो अखिल सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: गुड इवनिंग खुशी जी, आप बताइए कैसी हैं? मैं तो बहुत ही बढ़िया।
0: आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ। और जब आप शो में आ जाते हैं तो हम और भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अब जो मेरी शिकायत थी वो अब दूर हो गई है, क्योंकि आप देर से आए, दुरुस्त आए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ट्रैफिक ऐसा है, हर किसी को जल्दी है जाने की।
0: हाँ,
1: चाहे रेड लाइट हो चाहे ग्रीन लाइट हो, हमारे लिए सारी लाइटें एक जैसी हो
0: जाती हैं। हाँ, स्पेशली इंडिया में ये चीजें होती हैं। हाँ,
1: अभी मैं आते हुए मैं एक वीडियो देख रहा था जो इस समय बहुत वायरल है।
0: हाँ,
1: जो आंधी आई है एक दो दिन पहले।
0: जी जी जी जी, राइट।
1: एक जो बंदा है वो हवा में उड़ता हुआ जा रहा है।
0: अच्छा,
1: मतलब पहली माला हम कहते थे यार हवा में उड़ जाएगा, आंधी में उड़ जाएगा।
0: हाँ, बोलते थे।
1: ये सच में कैप्चर हो गया इस बार।
0: ओके,
1: वो बंदा 30-40 फीट ऊपर हवा में ऐसे घूमता हुआ जैसे सुपरमैन सुपर हीरो की तरह जा रहा है वो हवा में। वो बरेली की ही घटना है।
0: अच्छा, ओके।
1: तो तब से मेरे को बड़ा अजीब वो लग रहा है। मैंने कहा यार ये सच में ऐसा चलता था? इतने हम सब भारी भरकम होते हैं और हवा इतनी, देखो कितनी तेज आंधी आई कि इंसान तक उड़ रहे हैं हवा में।
0: आप संभल के रहिएगा अखिल सर।
1: हाँ, पकड़ पकड़ के चल जाएगा।
0: पता चला कि कल यही न्यूज आ रही है कि अखिल जी उड़कर पहुंचे हैं मेरठ से। नहीं, वहाँ आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? अब जहाँ अगर आप, अगर ऐसा हो जाए कि आपको उड़ने का ही मौका अवसर मिल जाए तो आप कहाँ पहुँचना चाहेंगे?
1: मैं अयोध्या पहुँचना चाहूंगा
0: बिना पैसे के।
1: फिर जो पैसे लगेंगे ना लैंडिंग के बाद, वो मुझे ही बता कैसे।
0: हाँ, फिर वो जेब हल्की हो जाएगी, है ना? ओके, तो चलिए दोस्तों, हमने ये हंसी मजाक की बातें की, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। जाते जाते बस यही कहेंगे आपसे कि अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, गर्मी है, पानी पीते रहें, एंड केयरफुली ड्राइविंग कीजिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। जब हम जीवन में मुस्कुराते हैं ना श्रोताओं, तो हमारे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उसका भी हम सामना कर पाते हैं।
1: क्या बात कही आपने।
0: तो इसीलिए हमेशा ऑलवेज अपने फेस पर, अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, मुस्कुराते रहिए और FM मुरादाबाद 89.6 को सुनते रहिए। एंड आपके एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हम कार्यक्रम चला रहे हैं श्रोताओं, लखपति दीदी योजना। इसके बारे में बहुत सारे श्रोता हैं जो अभी भी वंचित हैं, जिनको नहीं मालूम है कि ये योजना असल में क्या है और इसका कैसे हम लाभ ले सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर सुनिएगा और अपने फीडबैक भी हमें शेयर कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। इस पर आप अपने वॉइस नोट, आप अपना मैसेज जो चाहते हैं लिखना, एंड क्या क्या आपको जानकारियाँ मिली हैं तो प्लीज़ हमें जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति। नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।
2: यू आर लिसनिंग FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, कमिटेड टू कम्युनिटी।

0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, शक्ति की साधना का यह पावन पर्व हमें नारी के अद्भुत स्वरूपों से परिचित कराता है। नवरात्रि के इस तृतीय दिवस पर पूजन करते हैं माँ चंद्रघंटा की, जो वीरता, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि जब नारी सशक्त होती है तो वह हर चुनौती का सामना डटकर कर सकती है। और आज का उत्तर प्रदेश इसी सशक्त नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण बन चुका है। पिछले 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास और सुशासन की एक नई मिसाल कायम की है, जहां महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आज प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व हर जगह उनकी भागीदारी, उनकी ताकत, उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। योजनाओं और प्रयासों के माध्यम से एक ऐसा माहौल तैयार हुआ है जहां हर बेटी खुद को सक्षम और सशक्त महसूस कर रही है। तो आइए माँ चंद्रघंटा के साहस और शक्ति से प्रेरणा लेकर हम सभी मिलकर नारी सम्मान और सशक्तिकरण के इस संकल्प को और मजबूत करें।
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नई

0: सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, ये दास्तान है हौसले की, मेहनत की और सरकार के सही सहयोग से बदली हुई किस्मत की। आज हम आपको लेकर चलेंगे आगरा के एक छोटे से गांव जर्रार में, जहां एक साधारण महिला ने मोती की माला से 250 महिलाओं की जिंदगी में उम्मीद की चमक को लाया है। सोचिए, एक महिला सिर्फ 10वीं पास, घर परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त, लेकिन उनके दिल में एक सपना था कुछ करने का, कुछ बनने का, और उनका यही सपना आज बन गया है एक मिसाल।
1: पहले मेरा जीवन बिल्कुल साधारण था, सुबह शाम तक घर का काम और बच्चों की देखभाल, बस यही करते करते दिन कब निकल जाता था।
0: हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है हमारे गांव की, जहाँ प्रतिभा तो होती है लेकिन अवसर नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को मंच दिया है, जिससे वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। रुचि की जिंदगी में तब बदलाव आया जब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, कृष्णा स्वयं सहायता समूह शुरुआत। यह सिर्फ एक समूह नहीं था, यह थी रुचि के आत्मनिर्भर बनने की पहली सीढ़ी।
1: जब हमने समूह बनाया तब हमें खुद पर विश्वास ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम सीखते गए और आगे बढ़ते गए।
0: दोस्तों, शुरुआत आसान नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की, और यही पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निभाया अपना कर्तव्य। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF और कैश क्रेडिट लोन CCL के माध्यम से रुचि दीदी को मिला 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, और यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ ली।
1: जब हमें 3 लाख रुपए का लोन मिला तो लगा कि अब हम समय कुछ कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा था।
0: अब सवाल था क्या किया जाए, और यही से शुरू हुआ एक अनोखा सफर, मोती माला का व्यवसाय। एक ऐसा काम जो घर बैठकर भी किया जा सकता है, जिसमें लागत कम है और मेहनत का फल ज्यादा। रुचि देवी ने न सिर्फ खुद यह काम शुरू किया, बल्कि अब 10 गांव पंचायतों की 250 महिलाओं को भी जोड़ लिया। सोचिए दोस्तों, एक महिला और उसके साथ 250 सपने।
1: मैं चाहती थी कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे गांव की बाकी महिलाएं भी आगे बढ़े, इसीलिए मैंने उन्हें सिखाया, जोड़ा और साथ लेकर चली।
0: आज स्थिति यह है कि सभी महिलाएं घर के काम के साथ साथ माला बनाकर हर महीने 10 से 15 हजार रुपए कमा रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, और रुचि देवी वो खुद हर महीने 20 हजार रुपए की आय कर रही हैं। यानी गांव की एक सीधी साधी महिला का सपना अब बन चुका है एक मजबूत आर्थिक मॉडल। दोस्तों, यही है उत्तर प्रदेश की लखपति दीदी योजना का असली प्रभाव। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं देती, यह आत्मविश्वास देती है, पहचान देती है और सम्मान भी देती है।
1: आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे साथ काम करने वाली बहनें भी अपने परिवार का सहारा बन रही हैं। पहले जो लोग हमें कम समझते थे, आज वही हमें सम्मान देते हैं।
0: क्या आपने महसूस किया दोस्तों, यह सिर्फ कमाई की बात नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मविश्वास की बात है, उनके पहचान की बात है और समाज में बदलाव की बात है। और इस बदलाव के पीछे है योगी सरकार की दूरदर्शी सोच और मजबूत नीतियाँ। आज पूरे यूपी में महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभाल रही, वह कारोबार चला रही हैं, रोजगार दे रही हैं और समाज को आगे बढ़ा रही हैं। यही है नया उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश।
1: मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 250 महिलाओं का नेतृत्व कर पाऊंगी, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं यह कर पा रही हूं। यह बस सरकार की योजनाओं की वजह से संभव हुआ है। इसके लिए योगी जी और प्रदेश के सरकार को चाहे जितना भी शुक्रिया बोलूं कम ही है।
0: दोस्तों, अगर सही दिशा मिले, सही सहयोग मिले तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। रुचि देवी ने यह साबित कर दिया है कि हौसले हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं और एक महिला पूरे समाज को बदल सकती है। आज की इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अवसर मिले तो उसे पकड़िए, खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ने से कभी मत डरिए। मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे राज, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी और रेडियो की जुबानी। फिर मिलेंगे दूसरी प्रेरणादायक कहानी के साथ, तब तक याद रखिए, बदलाव की शुरुआत आप से ही होती है। हां जी, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। अभी के लिए लेता हूं मैं यहां से अलविदा, नमस्कार।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
4: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
3: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यहीं चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
4: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
2: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। अगर समय की बात करूँ तो 5:33 हो चुके हैं और अर्जुरीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है। तो आज काफ़ी टाइम के बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होकर सच बताऊँ मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि काम में इतने बिजी हो गए थे ना कि मतलब मैं 5 बजते ही मतलब चुल मच जाती थी कि भाई मुझे शो करना है, आप सभी से बातें करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और 2 घंटे के लिए ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। ट्रैफिक अपडेट से लेकर यानी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ आज के स्पेशल डे, फैमिली डे और मदर के बारे में बात करने वाले हैं। सो आप अर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और यही कहना चाहेंगे, देखिए ज़िंदगी में ना कभी कभी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत आसान तरीके से मतलब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनका आपको फेस करना पड़ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम ना आपको घबराना नहीं है, बस एक धैर्य के साथ आपको काम करना है। जब आप धैर्य के साथ कोई काम करते हैं, पेशेंस के साथ आप कोई काम करते हैं, तो वो आपका काम बहुत जल्दी सक्सेस होता है। चाहे आपके साथ पूरी दुनिया क्यों ना खिलाफ खड़ी हो, लेकिन बस आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना है। फिर देखिए ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन वो पार हो ही जाता है। सो ऐसे ही आप अगर आप ऑफिस के से यानी कि घर के लिए निकल गए हैं और थोड़ा सा मूड जो है बस यार रिलैक्स चाहिए, तो मैं कहती हूँ रिलैक्स के साथ साथ आर्जेरीना को सुनना बिल्कुल ना भूले, अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाइए जनाब, क्योंकि आर्जेरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है और अगला गाना भी बहुत प्यारा है। दुनिया में आए हो तो क्या करना चाहिए गाइस, आप ही बताइए।

0: क्या बात है जी, गाना सुनकर तो मज़ा ही आ गया। ये गाना सच में वाकई में बहुत ही प्यारा है कि दुनिया में आए हो तो थोड़ा लव कर लो, प्यार कर लो। हमें ऐसे ही मिलजुल कर रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। और आप आज रीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए फिलहाल अगले यानी कि आज के जो ट्रैफिक अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। आई नो कि आप ऑफिस से निकल गए हैं।
1: जान मन तू खूब है, खूब है तू।
0: मुरादाबाद की सड़कों पर तो एक छोटी सी सवाल है, गाड़ी के साथ साथ सब्र का टैग भी फ्री यानी कि फुल रखना चाहिए, क्योंकि शाम के समय हमारे शहर में ट्रैफिक का हाल ऐसा हो जाता है कि लगता है जैसे सबको एक ही समय पर बाहर निकलने का अलार्म बज गया हो। वहीं अगर मैं बात करूं तहसील स्कूल चौराहे की तरफ से दिल्ली रोड या फिर काट रोड, हर जगह आपको गाड़ियों की लाइन ऐसी लगती है जैसे कोई फ्री में यहाँ पर जलेबी बांट रहा हो। और साथ ही मैं बात करूँ संभल चौराहा और कोहिनूर तिराहा, यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिल सकता है। दिल्ली रोड, फवारा चौक और जीरो पॉइंट की तरफ से भी अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं और जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको ट्रैफिक भरपूर मात्रा में मिल सकता है। और एक बात आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इन सड़कों पर है और या फिर कहीं आप ट्रैफिक में बहुत देर से फंसे हुए हैं तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। क्योंकि शाम का वक्त है और शाम के वक्त में ना हमें ट्रैफिक से ज़्यादा धैर्य बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है। अगर आप धैर्य बना कर रखते हैं तो आप अपनी मंजिल सफ़र तक ज़रूर पहुँचते हैं, क्योंकि शाम का वक्त हर कोई ऑफिस से घर की तरफ या फिर शाम के समय घूमने निकल जाते हैं, क्योंकि एक शाम का वक्त है जो हमें घूमने के साथ साथ यानी कि शाम का जो मज़ा है, जो वेदर चेंज हो जाता है। अगर अभी वेदर की बात करूँ ना तो 35 डिग्री सेल्सियस है। सो और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे गाइस। आज यानी कि फैमिली डे भी है, ऊपर से कंगारू मदर केयर, यानी कि कंगारू मदर केयर होता क्या है हर एक चीज के बारे में बताने वाले हैं। सो आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रही और सुनते रही अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो वो पड़ोस का लड़का है ना उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: ब्रेन ट्यूमर स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल सिविल लाइंस मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 5:48 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 15 मई हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। और आप अर्जरीना के साथ कनेक्ट है जी। 15 तारीख का दिन हमारे लिए खास इसलिए है कि आज यानी कि सुखदेव जयंती हम मनाते हैं। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं उस वीर क्रांतिकारी की जिनका नाम सुनते ही दिल में देशभक्ति की आग जल जाती है। सुखदेव जी उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। वो सिर्फ 23 साल के थे और हम 23 साल के में यानी कि सोच भी नहीं पाते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और उन्होंने देश के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। लेकिन उनके हौसले और देश प्रेमी की कोई सीमा नहीं थी। 23 साल के थे लेकिन उनके अंदर देशभक्ति देश प्रेमी इतने थे कि उन्होंने, और साथ ही साथ वे महान क्रांतिकारी जो 3 उनके साथ थे, भगत सिंह और शिवम राज गुरुजी के साथ, वे तीनों यानी कि अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई और देश को आज़ादी दिलाने का सपना देखा और उन्होंने आज़ादी दिलाई भी देश को। 23 मार्च 1931 का वो दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है जब इन तीनों वीरों ने लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। तो श्रोताओं, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारी उम्र मायने नहीं रखती है कि हम कब क्या करने वाले हैं। बस आपके अंदर से वो जज्बा होना चाहिए, वो भावना होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। और जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं फिर उसके बाद ना हमें खुद के लिए हम नहीं सोच पाते हैं बल्कि हम देश के लिए सोचते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं। और आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी हार मान लेती है, तो हमें हार नहीं मानना है। अगर आपको हार मानना है तो एक बार इतिहास के जो पन्ने हैं उसको आप ज़रूर खोल कर देखिए, आपको महान क्रांतिकारियों के बारे में पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। और जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको उससे टाइम लगेगा कि नहीं यार, मेरे को आपके अंदर एक अलग ही जज्बा आएगा, एक अलग ही पावर आपको महसूस होएगा कि मुझे हार नहीं मानना है, मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है। आपके अंदर वो देशभक्ति और काम के प्रति आपको प्यार नज़र आएगा। सो आप अर्जरीना के साथ यूँ ही कनेक्ट रहिए और आज इन तीनों वीरों को हमारी तरफ से यानी कि भरपूर श्रद्धांजलि। और बस अर्जरीना के साथ कनेक्ट रहिए, ढेर सारी बातें करेंगे। अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। सो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं यानी कि फैमिली डे के बारे में कि आखिरकार पहले के और अब में क्या अंतर आ चुका है। सो बातें करेंगे, बस अर्जरीना के साथ कनेक्ट रही। अगला गाना भी बहुत प्यारा है, सो इस गाने को आप एंजॉय करिए और लौट कर आते हैं जी।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: हेलो जी, वेलकम बैक। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज यानी कि परिवार दिवस मनाया जाता है। आज की तारीख 15 मई और आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है। समय की बात करूँ तो 5:57 हो चुके हैं। और परिवार दिवस अपने आप में ना बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं और परिवार कि जो बातें होती है ना, बड़ी अलग होती है, बहुत रोचक होती है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, यानी कि पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले जॉइंट फैमिली, हर कोई ये चाहता था कि बस जॉइंट फैमिली हो। जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं ना तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता है और आप कभी डिप्रेस भी नहीं होते हैं, क्योंकि जब फैमिली बड़ी होती है तो कुछ ना कुछ बातें एक दूसरे के साथ हम बैठते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। और जब वही अकेले रहते हैं ना तो मन में अलग अलग थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, मतलब बातें चलती रहती हैं, फिर वही डिप्रेशन और सोच समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बात ये है कि पहले एक साथ रहते थे पहले, और अब हर कोई अलग रहना चाहता है। शादी होने के बाद बस फैमिली वालों के साथ मुझे नहीं रहना है, अलग रहना है। तो आज मेरा आप सभी से एक ही क्वेश्चन पूछना है कि जो पहले की फैमिली होती थी वो जॉइंट फैमिली हमेशा सोचते थे कि हम सब एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, लेकिन आज कल अलग क्यों रहना अलग क्यों रहना चाहते हैं हर कोई, अलग क्यों रहते हैं? ये क्वेश्चन मेरा आप सभी से है। सो फिलहाल मेरे पास मैसेज भी आए हैं, एक बार उनको भी मैं शामिल कर लूंगी। सो हमारे पास मैसेज आता है, नमस्ते रीना मैम, आपका प्रोग्राम हरियाणवी तड़का ओके जी सुन रहे हैं और गाने बहुत ही अच्छे प्ले कर रही हो आप, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। तो हम आपको यानी कि डेली सुनते हैं, बहुत दिनों से सुनते हैं, थैंक यू सो मच जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू कुमार सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। और अगले मैसेज की बात करूँ तो रीना दी नमस्कार, नमस्कार जी, ग्राम चमुआ जिला संभल से ब्रजय सिंह छतपाल बंटी भाई राजीव भाई किशन सोमपाल सभी लोग यानी कि हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। सुखदेव जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी जी, सुखदेव जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें उनके जीवन से ना यानी कि ज़िंदगी जीने का तरीका सीखना चाहिए। एफएम मुरादाबाद की टीम को काफ़ी अच्छे विचार आपने बताई हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी दे रही हैं आप, रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी है। रीना दी के जुबानी हमने सुनी, प्रोग्राम बहुत ही पसंद आता है, थैंक यू सो मच जी। और हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया है सर, आपने सुन भी लिया होगा। और साथ ही साथ मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि आजकल की जो जनरेशन है, यानी कि परिवार दिवस भी है, तो आजकल हर कोई अकेला क्यों रहना पसंद करता है? बस शादी हो गई, हम दो ही रहेंगे साथ में, बाकी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, आखिरकार क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे का? आप फटाफट मैसेज करके बताइए। फिलहाल कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम भी हो गया है और एक यानी कि आपको इंटरव्यू सुनाया जाएगा जो कि बहुत प्यारा है। सो चलिए पहले कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: साल 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। और आज के इस स्पेशल डे पर आगे की बातचीत हम जारी करेंगे ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनीत अग्रवाल जी के साथ, जो कि एक न्यूरो सर्जन है। एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में आपका वेलकम है सर।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्ते सर, क्योंकि मैंने आपका नाम पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं को एक बार अपने बारे में जानकारी दें।
1: मैं डॉक्टर मोनीत अग्रवाल, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और इसे बीएमसी हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग जापान से हुई है और उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, मेदांता गुड़गांव में, मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज में, फिर मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल में रहा हूँ और अब मैं बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरी रुचि अगर ऑपरेशन में देखा जाए, ब्रेन में देखा जाए, तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या फिर स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, एनोरिज्म सर्जरी, इनमें है। और अमूमन देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर्स अब दिनों रात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
0: जी जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है?
1: ट्यूमर, जब भी हम ट्यूमर की बात करते हैं, इसका मतलब है अनियंत्रित ग्रोथ होना, वही ट्यूमर होता है। ऐसे ही ब्रेन में है, जब ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो अनियंत्रित कंट्रोल्ड होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारा स्कल में, मतलब हड्डी के अंदर बंद है, एक बंद डिब्बे में है, तो जब उसमें चीज बढ़ती है तो प्रेशर डालती है, जिसके वजह से हमारे कुछ कार्य कम होने शुरू हो जाते हैं हमारे, और हमारी याददाश्त कंट्रोल होना, सब चीजें बहुत कम हो जाती हैं। तो एक प्रेशर इफेक्ट होता है और ब्रेन का हर हिस्सा एक काम करता है अपना, अगर उसने उस काम को छोड़ दिया तो फिर हमें वो चीज सामने दिखाई देती है जो उसे सिम्टम्स की तरह हमें सामने आता है। तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर अपरम्य बहुत घातक है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता है और हमें मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है।
0: ओके, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर होने की कोई निर्धारित उम्र है या किसी भी उम्र में हो जाता है?
1: ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, ये किसी उम्र में हो जाता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक समय पाया जाता है। हर उम्र में इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो चीज पाई जाती हैं। बच्चों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बड़ों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं।
0: अच्छा सर, इसका कोई विशेष कारण?
1: अमूमन तो इसको जीन्स में बदलाव या म्यूटेशन ही देखा गया है, मोस्ट कॉमन कारण वही है। लेकिन अब हम कुछ टाइम से देखते हैं कि रेडिएशन, ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी मरीज के बहुत ज्यादा सीटी स्कैन हो, एक्सरेज हो, या वो रेडिएशन के आसपास रहता हो, जैसे आजकल मोबाइल यूज करना, ये अपने आप में देखा गया है कि बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है ब्रेन ट्यूमर होने का। ये पाया गया है कि जहाँ टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल के, वहाँ के आसपास के लोगों में इसकी संख्या बड़ी है। कुछ सालों में इस चीज को पाया गया है। तो मुझे लगता है कि रेडिएशन से बच के रहना बहुत जरूरी है और व्यायाम करना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी रोकथाम कर सकें।
0: जी, तो आज जैसा कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, और इस पर हम आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ब्रेन ट्यूमर कितने प्रतिशत लोगों में पाई जाती है?
1: अगर हम पूरे विश्व की, वर्ल्ड की बात करें, तो अमूमन ये देखा गया है कि ये अमूमन 1 लाख में से 11 लोग जो हैं वो इस बीमारी से प्रभावित हैं, जो अपने में बहुत बड़ी संख्या है। और इंडिया में इसे पाया गया है कि करीब अमूमन 28,000 लोग इस बीमारी से हर वर्ष ग्रसित होते हैं और जिनमें 24,000 लोगों की डेथ होती है। ब्रेन ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर में से है। आप सोचें कि पूरा हमारा शरीर जो है, वो हमारा हर चीज जो है, हमारे ब्रेन से काम करती है। अगर वहीं का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो खतरनाक है। इवन अब इसे कई जगह तो स्किन के ट्यूमर से भी ऊपर पाया गया है। इंडिया में सबसे कॉमन जो हम मानते हैं, माउथ का कैंसर मानते हैं, अब उसके बाद इसका नंबर आना शुरू हो गया है।
0: तो संख्या बहुत बड़ी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें, बस ऐसी हमारी कोशिश है। और आप लोगों की कोशिशें तो लगातार जारी हैं। अगला सवाल ये है कि महिला या पुरुष, कौन सी कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर शिकायतें पाई जाती हैं?
1: इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि चीज महिला में या पुरुष में ज्यादा पाई जाती है। अमूमन बर्दल, हाँ, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मेनिन्जियोमास टाइप ट्यूमर है जो कि फीमेल्स में या महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, और ग्लायोमास हैं जो पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कह सकते कि ये ट्यूमर है ये महिलाओं में ज्यादा रहेगा या पुरुषों में ज्यादा रहेगा या बच्चों में ज्यादा रहेगा, ये अलग अलग है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज।
0: अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी कि ब्रेन ट्यूमर के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ नाम बता दीजिए।
1: जैसे मैंने बताया, मेनिंजियोमास हैं, ग्लायोमास हैं, न्यूरोमास हैं, शोनोमास हैं, मेटास्टेसिस हैं, इस तरह से अत्यंत हेमेंजियोमास हैं, हेमेंजियोब्लास्टोमास हैं, रिनोफेरेंजियोमास हैं, इस तरह के कई ट्यूमर्स हैं। शायद इसका हमारे श्रोताओं को इतना ज्ञान की जरूरत नहीं होगी लेकिन उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और जिसका रोकथाम हो या जैसे ही पता चले उसका तुरंत इलाज हो।
0: जी, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही पता चले इसका तुरंत इलाज हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, लोग पहचाने कैसे।
1: देखिए, इसके लक्षण बहुत आम लक्षणों में से है। आपको सर दर्द होता है, रोज होता है लोगों को सर दर्द, तो इसका एक बहुत बड़ा लक्षण सर दर्द है। उल्टियां आना है, घबराहट होना है, चक्कर आना है और याददाश्त कम होना है, हाथ पैरों का कम मूवमेंट होना है, कम दिखाई देना है, बोलने में दिक्कत आना है, मूड का टेढ़ा होना है। इस तरह कई लक्षण हैं जो हम ब्रेन ट्यूमर से भी देखते हैं और ये हमें कई और बीमारियों में दिखते हैं। ये एक डॉक्टर ही आपको, एक न्यूरोसर्जन ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि ये चीज किस सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं, ये ब्रेन ट्यूमर कैटेगरी में बैठते हैं या नहीं बैठते। पर जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे, आपको मेनली उल्टियां, अगर सर में दर्द उल्टियां बहुत हो रही हैं, तो आप तुरंत किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं, क्योंकि एक चांस है कि ब्रेन ट्यूमर ना हो।
0: जी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है और लक्षण तो आपने बताए, हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं को समझ में आई होगी और अगली बार से अगर ऐसे लक्षण उनको दिखाई देंगे तो जरूर वो जांच कराएंगे जाके हॉस्पिटल में। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसा कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं।
1: देखिए, ब्रेन ट्यूमर से बचना, क्योंकि ये मेनली जीन्स म्यूटेशन की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए बचना तो मैं कहूंगा कि इतना नहीं है, क्योंकि ये तो जेनेटिक ही होना है चीज। लेकिन अभी भी मोबाइल का यूज कम करें, पहली चीज। रेडिएशन से दूर रहें, फिर अल्कोहल का या स्मोकिंग का सेवन कम करें, क्योंकि अगर कुछ होता भी है तो हमारी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो उसे फाइट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है। जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप कम हो जाती है तो ये सब चीजें, बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और कोशिश करें कि मोबाइल का यूज कम करें और रेडिएशन से थोड़ा दूर रहें, सही नींद लें और व्यायाम करते रहें, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर।
0: क्या बात है, तो उम्मीद है दोस्त इस चीज का पालन जरूर करेंगे जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। अगला सवाल ये बता दीजिए, इस बीमारी का उपचार क्या है।
1: देखिए, सबसे पहला तो हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जो पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो न्यूरोसर्जन कर सकता है आपका, और उसके बाद सीटी स्कैन जो सबसे पहले डायग्नोसिस होती है, फिर एमआरआई जो हमें और अच्छी तरह बता पाती है, फिर एंजियोग्राफी है, पेट सीटी स्कैन है, कई तरह के और हमें जांचे हैं जो हम करके पता लगाएं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कितना नुकसान पहुंचा रखा है, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब इनका पता चलेगा तभी इसका प्रॉब्लम इलाज कर पाएंगे। अब हम इलाज की बात करते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा इलाज, सबसे अच्छा इलाज तो सर्जरी ही है, पर अब कुछ नई पद्धति भी आई है। जैसे हम गामा नाइफ कर सकते हैं, मतलब हम रेडिएशन को, किरणों को एक तीव्र गति से एक पॉइंट में भेजें, तो उस एरिया को वहाँ पे छोटा कर सकता है, जला जा सकता है, सो उससे हम रोकथाम कर सकते हैं। इसी में आगे डेवलप हुआ है साइबर नाइफ जो कर सकते हैं, जो कि ज्यादा एडवांस है गामा नाइफ से भी। नाइफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक कट कर रहे हैं उसको, इसीलिए हम उसे नाइफ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और अगर हम ये करते हैं तो हम उस ट्यूमर की रोकथाम कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं उसकी। अब रोबोटिक सर्जरी का भी इसके अंदर धीरे रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
0: जी जी जी, तो बहुत सारे आपने उपचार बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं अभी, तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर को लेके वहाँ पे पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं।
1: वहाँ बहुत उत्तम फैसिलिटीज हैं, हम काफी ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करते हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं, एक एडवांस सेंटर में चाहिए होती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, और पेशेंट्स रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं हमारे। और ये चीज है कि जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो सारी हैं, आईसीयूज, ओटी, ट्रेंड स्टाफ, सब कुछ वहाँ मौजूद है, सब इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, तो वहाँ आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।

0: पनप रहा होता है। और आप समझिए बहुत खतरनाक बीमारी है, जब 28,000 लोग साल के इससे ग्रसित होते हैं और 24,000 मर जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है। और इसे जितनी जल्दी रोकेंगे उतने जल्दी फायदा होगा मरीज को, सर्जन को भी ऑपरेशन करने में आसानी है और ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लेट करेंगे तो ऑपरेट के बाद ही ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है इसका। और ऐसी बीमारी और कई ट्यूमर्स तो जो बेनाइन होते हैं, अगर हमने निकाल दिया पूरा तो आपकी लाइफ नॉर्मल है, तो जितनी जल्दी उसे करेंगे उतना अच्छा है। तो मेरा मानना है कि जरा भी आपको सिम्टम लगे या एक साइन दिखे, आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, जिससे कि आपकी जिंदगी बचाई जा सके।
1: ये थे हमारे साथ बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनित अग्रवाल जी। बहुत ही कीमती वक्त निकाला इन्होंने हमारे पब्लिक को, ये एक छोटा मैसेज दिया जिससे लोग जागरूक हो सके और समय रहते अपना इलाज करा सके। एफएम मुरादाबाद की टीम आपका दिल से अभिवादन करती है कि आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के दिन आपने अपना इतना कीमती समय हमारे रेडियो मुरादाबाद टीम को दिया है, इसके लिए बहुत आभार। साथ ही आप हमारी जनता के लिए इतनी निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

क्या बात है जी, ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात की और डॉक्टर ने बहुत अच्छे से गाइड किया है। सो देखिए, कोई भी बीमारी हो हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जितना हो सके जल्दी हमें जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी हो अगर आप उसको डिले करते हैं तो वो बीमारी घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही जाता है, वो अपना घर बनाता ही जाता है। और जब वो बढ़ जाता है तो आपको भी पता है कि दिक्कतें परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:13 हो चुके हैं और अब मैं बात करने वाली हूँ, यानी कि आज बॉलीवुड की चॉकलेट गर्ल, यानी कि धक धक, जिनको धक धक के नाम से भी बुलाते हैं, माधुरी दीक्षित का आज बर्थडे है, सो उनके बारे में बातें करते हैं। हाँ जी, 15 मई यानी कि 1977 में मुंबई में इनका जन्म हुआ था और आज इनका बर्थडे है, तो हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे। और इनकी जिंदगी और इनकी के बारे में जितना बात करें उतने शब्द कम हैं, क्योंकि इन्हें शुरुआत से ही यानी कि बचपन से ही एक्टिंग में, डांसिंग में बहुत ज़्यादा यानी कि दिलचस्पी रही है। घर वाले चाहते थे कि कुछ और करें और घर वालों का यही था कि जब बड़ी हो गई तो शादी करा देते हैं, लेकिन इन्होंने अगर ये उस टाइम शादी कर लेती तो शायद बॉलीवुड में कदम और आज हर एक हिंदुस्तानी के दिल में राज नहीं कर पाती है। सो इन्होंने घर वालों की बात नहीं सुनी और सीधा अपने करियर पर फोकस किया और बॉलीवुड में अपना कदम रखा, यानी कि उनकी फिल्में बहुत ज़बरदस्त रही है। बॉलीवुड के बहुत अच्छे अच्छे फिल्में भी दी हैं इन्होंने, जिनको धक धक गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पहली फिल्म यानी कि 1984 में अबोध फिल्म आई थी, अबोध फिल्म इनका पहला मूवी है। उसके बाद इन्होंने तेजाब जो कि 1988 में, दिल फिल्म जो कि 1990 में, बेटा फिल्म जो कि 1992 में, हम आपके है कौन, जो कि ये मूवी ना सच बताऊँ हर किसी के दीवाना है, यानी कि इस मूवी को हजारों बार भी देख चुके हैं लेकिन तब भी मन नहीं भरता है। हर संडे को हम ये मूवी देखा करते थे, हम आपके हैं कौन, और अभी भी क्वेश्चन यही पूछते हैं कि हम आपके हैं कौन, बताइए ज़रा। हम प्यार जब करते हैं ना किसी से या दोस्तों से तो यही पूछते हैं, हम आपके हैं कौन, ज़रा बताइए ना, हमारी तारीफ़ कीजिए। और ये फिल्म आई थी 1994 में, साथ ही साथ दिल तो पागल है यानी कि 1997 में ये मूवी आई थी। उनकी ये सारी फिल्में सुपर डुपर से भी सुपर रही। और इनको सबसे अगर मैं डांस की बात करूँ तो इनको कथक डांस बहुत ज़्यादा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए, कोई भी आप काम करते हैं तो रिस्क तो आपको लेना पड़ता है, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप

काम नहीं कर पाएंगे, अपने करियर में कदम आगे नहीं रख पाएंगे। इसीलिए अगर आप काम कर रहे हैं तो उस काम पर आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए। जैसे माधुरी दीक्षित ने करा, अगर ये जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि ये शादी कर लेती तो शायद आज हर किसी के दिलों में राज नहीं कर पाती। और इन्होंने कदम लिया और अपने करियर में आगे बढ़ी। और इनकी जो मूवी है, बेहतरीन मूवी में से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है हम आपके हैं कौन। सच में मुझे तो ये मूवी इनकी बहुत पसंद है। अगर आपको माधुरी दीक्षित की कोई मूवी जो आपके अभी भी बहुत पसंद है और आप देखते हैं उस मूवी को, आप बार बार देखते हैं, जब भी मैं सच बताऊँ परेशान होती हूँ ना, माधुरी दीक्षित की मूवी देखती हूँ हम आपके हैं कौन, ये मैं डेफिनेटली ज़रूर देखती हूँ ये मूवी। तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप माधुरी दीक्षित की ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ आज आप सभी से मैंने पूछा है कि फैमिली डे दिवस है आज, तो आजकल की जो जनरेशन है वो अलग रहना क्यों पसंद करती है। दो चीज़ें मैंने आप सभी से पूछी है, फटाफट मैसेज करके बताइए। नंबर है 9837 8968 9686। अर्जुरीना के साथ कनेक्ट रही मेरी जान। और साथ ही साथ कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होंगे हम आप सभी से। बहुत प्यारा गाना है, चॉकलेट आइसक्रीम, आय हाय ये गाना सच बताओ बहुत प्यारा है जी।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

वाइन जूस आइसक्रीम तो पिया, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, गुड़िया खिलौने।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय कर रहे पार्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, आर्जरीना के साथ कनेक्ट है। और समय की बात करूं तो समय हो चुका है यानी कि 6:28, और अब थोड़ा अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं गाइस, क्योंकि ऊपर से गर्मी ताबड़तोड़ और महंगाई ने भी अपना टांडो मचा दिया है। टांडो ये है कि देखिए मई का महीना है और मई का महीना अपडेट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि देखिए फोन हो चाहे हम खुद हो, अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो साथ ही साथ हर चीज का जो महंगाई हो बढ़ चुका है, पेट्रोल की बात करूं तो 3 रुपए, वही दूध की बात करूं तो 2 रुपए, मतलब साबुन से लेकर मसाले तक लेकर हर एक चीज बढ़ चुकी है। तो गर्मी के साथ साथ ग्रोसरी का कम सामान है, हर चीज बढ़ चुके हैं। तो बस ध्यान रखना है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पेट्रोल के लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और मुझे लगता है कि देखिए आप जितना मतलब थोड़ी दूर जाना हो तो पैदल वॉक करते जाएंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होएगा। अक्सर क्या हो गया ना कि हर घर में बाइक गाड़ियां हैं जो हम पैदल एक सेकंड भी चलना पसंद नहीं करते हैं, और यही रीज़न है कि सेहत पर भी उसका इफ़ेक्ट आपको भी पता है कि दिखे जाता है। इसीलिए आप बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा पैसों की बचत करते साथ साथ वॉक करिए, सेहत का भी ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। और आरजे रीना के साथ यूँ ही कनेक्ट रहिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हेल्थ की भी बातें करेंगे, बस उससे पहले हमारे पास मैसेज आ गए हैं भरपूर मात्रा में, उनको भी शामिल करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे गाइस।

0: मैंने आप सभी से आज यही पूछा है कि आज फैमिली दिवस है और फैमिली दिवस पर जो आजकल की जो जनरेशन है वो यानी कि एक साथ रहना क्यों पसंद नहीं करती है, वो अलग ही रहना क्यों पसंद करते हैं। तो हमारे पास मैसेज आता है यानी कि संभल से ब्रजेश सिंह कनेक्ट हो चुके हैं और इनका जो बेटा है दिव्यांश वैष्णवी सभी के साथ ये कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि आज माधुरी दीक्षित जी का बर्थडे है तो उनके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनके जो मुझे मूवी पसंद है सबसे ज्यादा वो है बेटा फिल्म। क्या बात है जी। और ये लिखते हैं यानी कि फैमिली के बारे में जो मैंने पूछा है तो इनका कहना है कि देखिए रीना जी, आजकल की जो बच्चे हैं आजकल के जो जनरेशन है यानी कि बड़ों की बातें नहीं मानते हैं, मम्मी की बातें नहीं मानते हैं, वो बस अपने मनपसंद बातें करते हैं और अपनी ही बातें चलाते हैं। इनफैक्ट उनको घर वाले कुछ कह भी देते हैं तो उल्टा जवाब देते हैं और उनकी बातें नहीं सुनते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने फैमिली वालों की बातें सुननी चाहिए क्योंकि मम्मी पापा हमें जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इस लायक करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। लेकिन वही जब हमारी शादी हो जाती है तो हम घर वालों की नहीं सुनते हैं और बीवी की सुनते हैं। तो मुझे लगता है देखिए सर, हमें आखिरकार जिस लड़की को आप शादी करके अपने घर में लाते हैं उसकी भी बातें सुनना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ अपनी फैमिली वालों की बातें भी सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि एक लड़की सिर्फ आपके ऊपर आती है और आपको जानती है वो, तो उसके साथ साथ अपने फैमिली का भी ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। तो इनका कहना है कि हमें मिलकर रहना चाहिए, जॉइंट फैमिली रहेगी तो अच्छा रहता है। और आजकल के बच्चे इस बात को कहाँ समझते हैं, उनको बस ये रहता है कि शादी और उसके बाद हमारा अपना परिवार, खुद का हम अकेले रहेंगे और मौज मस्ती करेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि फैमिली के साथ जो सुकून शांति मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। क्या बात है जी ब्रजेश सिंह, बहुत अच्छी बात कही आपने। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, जय श्री राम, रीना जी आपका शो बहुत ही बिंदास चल रहा है, थैंक यू सो मच जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से। और एक वॉइस मैसेज भी आता है हमारे पास, तो वॉइस मैसेज सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया गाइज, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे और जो वॉइस मैसेज आया है हमारे पास उनको भी शामिल करेंगे। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आज का मेरा कड़क सवाल बहुत ही प्यारा है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो फैमिली वालों के साथ रहना क्यों पसंद नहीं करते हैं, और साथ ही साथ आपको माधुरी दीक्षित जी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा सॉरी कौन सी मूवी उनकी सबसे ज्यादा पसंद है। चलिए लौट कर आते हैं जी।
1: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
2: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए।
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद, कॉल 9412211111।
0: तो चलिए श्रोताओं, हमारे पास एक बहुत ही प्यारा वॉइस मैसेज आता है, उनको सुनवाते हैं आपको।
6: नमस्कार राधे राधे, परिवार दिवस की आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार केवल एक साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं है बल्कि यह वह सुरक्षित स्थान है जहां हमारी खुशियां दुगनी और दुख आधे हो जाते हैं। परिवार जहां जीवन शुरू होता है और प्यार कभी खत्म नहीं होता। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में अपने परिवार के साथ कुछ पल सुकून के बिताएं, साथ बैठकर खाना खाएं, पुरानी बातें दोहराएं और एक दूसरे को यह एहसास कराएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं। हैप्पी फैमिली डे। मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 हरियाणवी तड़का, RJ रीना के साथ। राधे राधे।
0: राधे राधे सर। सर आपकी बातें ना बड़ी प्यारी होती हैं, मतलब कहाँ से लाते हैं आप इतने अच्छे अच्छे शब्द सच में माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप। सो अब अगला गाना है जो कि बहुत प्यारा है और जीत मूवी से ये गाना है। सो इस गाने को एंजॉय करिए, लौट कर आते हैं आप सभी के बीच अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। जाते रहे और गुनगुनाते रहे और आज रीना को यूं ही सुनते रहे जी। चलिए गाना सुनते हैं, बहुत प्यारा गाना है। दिल का क्या करे साहिब। फिलहाल तो गाइज आपने मैसेज करके बताना है कि परिवार दिवस है और आजकल की जो जनरेशन है वो फैमिली वालों के साथ क्यों रहना पसंद नहीं करती है। साथ ही साथ माधुरी दीक्षित जी का कौन सा मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। चलिए जिस गाने के बाद लौट कर आते हैं।

0: गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी अर्जेरीना के साथ। और समय की बात करूं तो समय हो चुका है यानी कि 6:42 और बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने, दिल का क्या करे साहिब, यानी कि जीत मूवी से ये गाना आपने एंजॉय किया है। और अब यानी कि हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि गर्मी ताबड़तोड़ वाली पड़ रही है और इस गर्मी में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ एक जो अपडेट है इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में क्योंकि हेल्थ, अगर आप फिट हैं तभी आप कोई काम कर पाएंगे और तभी आप जीरो से हीरो कहलाएंगे। यानी कि दही हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दही जीरा, अगर दही के अंदर आप जीरा भूनकर रखते हैं और खाते हैं तो शरीर को यानी कि बहुत फायदेमंद होता है। और ऊपर से अरे भाई आज तो पाचन पटरी पर आ चुकी हैं अगर आप दही के अंदर भुना हुआ जीरा मिक्स कर करके खाते हैं, क्योंकि ये एक आपके पाचन को अच्छा रखता है। ऊपर से जो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उससे आपको बचाता है। और देखिए, और ये साथ ही साथ वेट लॉस यानी कि वेट कम करने में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए देखिए, रात को हमें दही सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि रात के समय दही हमें अवॉइड करना है, नहीं खाना है। आप दही यानी कि खाने का सही समय होता है यानी कि जब आप दही खाना शुरू करते हैं तो आपको खाना है यानी कि दही मॉर्निंग में और साथ ही साथ आफ्टरनून में यानी कि दोपहर के समय आप दही खा सकते हैं। ये दो टाइम ऐसा है जहां आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। सुबह के शाम, सुबह के टाइम आप लस्सी पी सकते हैं, छाछ बनाकर आप पी सकते हैं जो कि आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। दोपहर के टाइम अगर आप लंच कर रहे हैं तो उसमें बस एक छोटी सी कटोरी दही और काला नमक ज़रूर मिक्स करके खाएं। सो अगर और साथ ही साथ और आईपीएल की बात करूं तो आज का मैच भी बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है और ये मैच यानी कि लखनऊ वर्सेस चेन्नई के बीच होने वाला है श्रोताओं। तो अगर आप मैच के दीवाने हैं तो इस मैच को ज़रूर देखिएगा। सो फिलहाल हम अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमारे पास किन का आता है और ये क्या कहना चाहते हैं। तो हाँ, परिवार के ऊपर इनका मैसेज आता है और तो ये कहते हैं, आजकल के बच्चों को लगता है कि उनकी गोपनीय भंग हो जाएगी यानी कि जो गोपनीय बातें होते हैं वो सभी के सामने आ जाएगा और वही परिवार के साथ नहीं रहते हैं इसीलिए। लेकिन जब अलग रहते हैं तो कोई परेशानी में वही परिवार उनको याद आता है। करेक्ट सर, सही कहा आपने। जब हम अलग रहते हैं और जब कोई भी परेशानी दिक्कत आती है ना तो कोई और काम हमारे लिए नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली आपके काम आती है। इसीलिए फैमिली के साथ अच्छे से रहना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली के साथ रहिए, बहुत मज़ा आता है। और अपने माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है और जन्म देने वाला दाता सबसे ऊपर होता है। जब वो जन्म नहीं देते तो हम नहीं होते। सो इनका कहना है कि हैप्पी बर्थडे यानी कि ये हैप्पी वाला बर्थडे है माधुरी दीक्षित जी और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। इनका कहना है कि राधे राधे जी। सपना शर्मा नगर पंचायत पागबाड़ा से कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच सर। चलिए, जो आपने बताया है यानी कि हम जरूर उन बातों पर अमल करेंगे। आप समझ गए होंगे सर कि मैं क्या कह देना चाह रही हूँ आपको। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक है, उसके बाद बहुत ही प्यारा गाना माधुरी दीक्षित का 1 2 3 टन टन टन टन। चलिए
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: कहिए क्या सुनेंगे आप?
5: अरे पहले ये कहिए कहां थी आप?
4: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
5: कौन है?
4: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
5: कैसे?

चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। तेजाब मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है, बहुत ही प्यारा गाना है, एक दो तीन। और सपना मैम, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि मैंने आपको सर बोल दिया था। सो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। जिस समय की बात करूँ तो 6:54 हो चुके हैं और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो है जो अपडेट है, बहुत वायरल हो रहा है। सो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ जरूर साझा करनी चाहिए मुझे।

अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट हैं आप, और जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि खर्चे पर ध्यान रखिए, सोना मत खरीदिए इस टाइम, ईंधन हर चीज़ की बचाव करनी है हमें, तो इसी के साथ एक वीडियो छत्तीसगढ़ के यानी कि नारायणपुर जिले का एक वीडियो है जो कि बहुत वायरल हो रहा है। यानी कि पिछले ज़माने की बात करूँ तो सादगी वाला अगर बात करूँ तो वो जिनकी दिखाया गया है, और साथ ही साथ जिनकी शादी हो रही है उन्होंने पहले ज़माने की तरह यानी कि बैलगाड़ी पर यानी कि बारात लेकर गए हैं। उनका यही मानना है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी बातों को हमें समझना चाहिए और अमल करना चाहिए और उनको अपने ज़िंदगी में यानी कि शामिल करना चाहिए। तो उन्होंने उनकी बातें सुनी, समझी और अपनी शादी यानी कि बड़ी सादगी से कर रहे हैं, बैलगाड़ी पर बारात लेकर निकल पड़े हैं। इनका कहना है कि इससे पेट्रोल की बचत होगी और साथ ही साथ ईंधन की भी बचत होगी, और बहुत से दिक्कतें आ चुकी है आजकल।

0: सब के जो खर्चे हैं वो बचेंगे। इसीलिए हम अपनी शादी यानी कि बड़ी शादगी के साथ कर रही हैं। तो पहले जमाने में यही होता था कि बैलगाड़ी से बाराती जाती थी, और पहले की जो शादी में बात थी वो मजा ही आता था। यानी कि 3-4 दिन तक बारात ये कहा जाता है कि रुकती थी। और आजकल क्या है भैया, यानी कि शादी जिस दिन बोलते हैं उस दिन तो होती नहीं है। कहते हैं शादी 12 तारीख को है, लेकिन होती है शादी 13 तारीख को। यानी कि 12 बजे के बाद तो दिन वैसे चेंज हो जाता है। चलिए गाइस, आज रीना के साथ आप कनेक्ट थे, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी से, और आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं उनको सुन पढ़कर शामिल कर, सच बताओ माइंड ब्लोइंग। आप सभी का जो प्यार मिलता है ना, बस इतना ही प्यार चाहिए हमें, और हमारे लिए प्यार बहुत सुकून देता है। तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद शारिक अली जी कनेक्ट होते हैं। गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसी हो? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो हरियाणवी तड़का सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच जी, अच्छे गानों के साथ साथ बहुत सी जानकारी भी मिलती है, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जी, बस आपको अच्छा लगना चाहिए। सो अगले मैसेज की बात करूँ तो हमारे साथ प्रतिभा जी कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि आपने परिवार के बारे में पूछा है, तो मुझे लगता है कि परिवार हमारे लिए सुकून है, और हमें हर सिचुएशन में परिवार वालों के साथ रहना चाहिए। आप कितना भी अलग रहने की कोशिश क्यों ना कर लेते हैं, जब कोई परेशानी आती है तो हमें घर वाले याद आते हैं, और घर वाले वो कुंजी है, वो ताला है, वो चाबी है, जिसे आप खोलो तो प्यार ही प्यार मिलता है। और मुसीबत पे ना कोई और काम नहीं आते हैं सिवाय फैमिली। फैमिली हमारे साथ हर सिचुएशन में खड़ी रहती है, और फैमिली का जो प्यार है वो निस्वार्थ होता है। थैंक यू सो मच जी, बहुत ही प्यारा मैसेज है आपका। अगले मैसेज की बात करूँ तो हमारे पास अगला मैसेज आता है, ऋतिक जी MDA से कनेक्ट होते हैं, और इनका मैसेज आता है, ये कहते हैं कि मैडम मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों जी, अब शादी क्यों नहीं करेंगे? इनका कहना है कि शादी मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से दूर नहीं होना चाहता हूँ, और मुझे नहीं पता कि जिस लड़के से मेरी शादी होगी वो कैसी, मतलब सोच, मतलब मैं समझ नहीं पाऊंगा, और मैं अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रह पाऊंगा। तो देखिए जनाब, शादी का लड्डू तो आपको जरूर खिलाएंगे घर वाले। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रहते हैं, क्योंकि देखिए घर संभालना एक, मुझे लगता है कि पत्नी के साथ साथ बेटे का भी बहुत बड़ा फर्ज होता है कि अपने परिवार वालों के साथ कैसे बिहेव करवाना है, कैसे उनके साथ रहना है, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। तो शादी से आप भाग नहीं सकते हैं, और शादी का लड्डू हर किसी को खाना पड़ता है। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, यानी कि ये पूनम जी कनेक्ट होती हैं दिल्ली से, और इनके कहने हैं कि आज मैं आपका रेडियो सुन रही हूँ, जो कि मेरे दोस्त मुरादाबाद की है, उसने बताया है कि FM मुरादाबाद रेडियो यानी कि आप सुनिए। तो मैंने उससे पूछा भी कि मैं कैसे सुनूं, तो उसने बताया भी कि आप प्ले स्टोर पर जाओ, वहां पर FM मुरादाबाद 89.6 डालो, रेड कलर का लोगो आएगा, आप उसे डाउनलोड करके एनी, मतलब कहीं भी आप रहते हो आप सुन सकते हो। तो मैंने आज आपका ऐप डाउनलोड किया, सुना, और इनफैक्ट मैंने 5 बजे से सुनना स्टार्ट कराए, और आपका शो सच में बड़ा लाजवाब लगा मुझे, और गाने भी बहुत अच्छे आपने प्ले किया है, और जो आपने बातें पूछी है फैमिली के साथ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फैमिली जो प्यार है वो निस्वार्थ प्यार हमें फैमिली के साथ मिलती है, और हमें फैमिली से कभी भी अलग नहीं जाना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। और मेरी शादी हो चुकी है मैम, तो इनके कहना है कि मैं जिस तरीके से मेरे माँ बाप मेरे लिए प्यारे हैं, वैसे ही मेरे पति के जो माँ बाप है वो भी मेरे अपने हैं, और मैं उनको भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपने मम्मी पापा को प्यार करती हूँ, बल्कि उनसे इनफैक्ट ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ज़िंदगी में इतना अच्छा जो बेटा मेरी ज़िंदगी में उन्होंने दी है, सो मैं तो उनके शुक्रगुजार हूँ। और उनका मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। और मतलब मैं कहीं जाती भी हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में उनका ही ख्याल आता है कि मैं जा तो रही हूँ बाहर, इनका ध्यान कैसे रखूंगी। मतलब हमेशा, मतलब मेरी, मैं इनफैक्ट जाना पसंद भी नहीं करती हूँ बाहर, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत अनमोल है और मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। तो अगले मैसेज की बात करूँ गाइस, 7 बज चुके हैं, 7:01 हो चुका है, और अगला मैसेज भी हमारे पास बहुत प्यारा आया है। और इनका कहना है कि रीना जी, ये हमारे साथ दीपक जी कनेक्ट होते हैं लाइन पर मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि आज का शो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद आप आई हो। नहीं नहीं सर, बस 2 दिन के बाद ही कनेक्ट हुई हूँ यानी कि थोड़ा काम में ही बिजी हो गए थे सर, इसीलिए नहीं कनेक्ट हो पा रही थी आप सभी के साथ, लेकिन मैं फिर से कनेक्ट हो गई हूँ। और इनका कहना है कि मैं आपका शो यानी कि डेली सुनता हूँ, बट 2 दिन से आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, तो मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। आय हाय, क्या बात है जी, आज आपको अच्छा लग रहा है ना जी। तो चलिए जी, अब हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, और बाय जी, हम आपको शायद 9 बजे भी कनेक्ट हो जाएं, और शायद मतलब कल तो कनेक्ट होएंगे, लेकिन सेम टाइम सेम जगह नहीं, मॉर्निंग मसाला शो में हम आप सभी के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, समय समय पर पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बाय।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और अब मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही प्यारा एपिसोड है, यानी कि रामपुर की कहानी जो कि आप सभी के साथ हम शेयर करने वाले हैं। सो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, और देखिए आपके फीडबैक ना हमारे लिए बहुत, यानी कि जब आपकी फीडबैक आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें ऐसे ऐसे एपिसोड हमेशा और डेली लेकर आप सभी के साथ आने का मन भी करता है। तो आप सभी का फीडबैक हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। सभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच जी। और सुनते रहिए अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
1: यू आर लिसनिंग एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी।
2: रामपुर की विद्युत सखी सविता देवी, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। नवरात्रि का ये पावन पर्व नारी शक्ति के विधित स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। आज हम पूजन करते हैं माँ स्कंद माता का, जो ममता, करुणा, संरक्षण और शक्ति की प्रतीक है। माँ स्कंद माता देश ने विकास के साथ साथ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एक ऐसा प्रदेश जहां बेटियां अब सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बन रही हैं। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं बल्कि एक मजबूत आधार स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश की बेटियों के भविष्य की नींव गढ़ रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके उन्हें कम ब्याज पर ऋणी कौशल विकास और आजीविका के अवसर को प्रदान करना है, ताकि उनकी आय बढ़ सके और वे गरीबी से बाहर आ सके। ये मिशन उद्यमिता परीक्षण और ऋणी सहायता के माध्यम से गरीबी कम करने का कार्य करता है। आज उत्तर प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन, हर जगह पर ये बदलाव अचानक नहीं आया, संभव हुआ है सही नीति, मजबूत नेतृत्व और समाज की बदलती सोच के कारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि हर बेटी को मिले सुरक्षा, हर बेटी को मिले शिक्षा और हर बेटी को मिले आगे बढ़ने का अवसर। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव की सोच और व्यवस्था को भी बदल दिया। आज की कहानी है रामपुर जिले की। एक साधारण गृहिणी से विद्युत सखी बनने तक का सफर तय करने वाली सविता देवी जी की। कहते हैं ना दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। नमस्कार, मेरा नाम सविता देवी है। मेरी जिंदगी भी कुछ इसी तरह एक साधारण ग्रामीण महिला घर की जिम्मेदारी में उलझी हुई और खुद की कोई पहचान नहीं। पहले हमारा जीवन बहुत सीमित था, घर का काम, परिवार, बस यही दुनिया थी। कभी नहीं सोचा था कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन श्रोताओं, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और सविता जी की जिंदगी में ये मोड़ आया साल 2018 में, जब उन्होंने रानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का यही उद्देश्य है कि गांव की महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह ने लाखों महिलाओं को नई दिशा दी, और सविता देवी भी इस बदलाव की एक मजबूत कड़ी बन गई। समूह से जुड़ने के बाद हमें समझ आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ट्रेनिंग में हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिला और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता गया।

0: गया। तो श्रोताओं, यही आत्मविश्वास आगे चलकर सविता जी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक साल बाद उन्हें ब्लॉक स्तर पर विद्युत सखी के बारे में जानकारी मिली और फिर आया वो पल जिसने सविता जी की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। साल 2021 में उनका चयन विद्युत सखी के रूप में हो गया। जब हमें चुना गया तो खुशी भी थी और डर भी कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। डर होना स्वाभाविक था, लेकिन सविता जी ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने परीक्षण लिया और फिर शुरू किया एक ऐसा काम जो पहले गांव में लगभग नामुमकिन माना जाता था। गांव में अक्सर देखा जाता है लोग बिजली के बिल समय पर जमा नहीं करते, लाइन में लगना, दूर जाना, ये सब बड़ी मुश्किलें होती हैं। लेकिन सविता जी ने इस समस्या का समाधान बनकर दिखाया। हम घर घर जाते, मोबाइल से बिल चेक करते और वहीं पर मशीन से रसीद निकाल कर देते। अरे वाह, यही है असली बदलाव। जहां एक महिला तकनीक को अपनाकर पूरे गांव को डिजिटल बना रही हैं, उत्तर प्रदेश की डिजिटल पहल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज गांव-गांव में टेक्नोलॉजी पहुंच रही है। अब बात करते हैं सविता जी की मेहनत के आंकड़ों की। हर दिन 80 से 100 लोगों के बिल जमा करना ओटीएस योजना के दौरान, रोज 2 से 5 लाख रुपए तक का कलेक्शन और जनवरी 2026 में पूरे 85 लाख रुपए का कलेक्शन। कभी कभी तो हमें खुद विश्वास नहीं होता कि हम इतना काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं श्रोताओं, दिसंबर के महीने में तो सविता जी ने 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर दिखाया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये मेहनत है, विश्वास है और समर्पण की कहानी है। लेकिन श्रोताओं, हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की लंबी कहानी होती है। सविता जी के लिए भी ये सफर आसान नहीं था। शुरुआत में भरोसा नहीं करते थे, कहते थे कि पैसा लेकर भाग जाएगी, बहुत बुरा लगता था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। यही तो असली आत्मविश्वास है। जब लोग आप पर शक करें और आप अपने काम से जवाब दें। सविता जी ने हर बिल का भुगतान समय पर किया, रसीद दी और लोगों का भरोसा जीत लिया। आज हालात ये हैं कि लोग खुद सविता जी को बुलवाते हैं और कहते हैं हमारा बिल भी जमा कर दीजिएगा। जब लोग हम पर भरोसा करते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और सिर्फ भरोसा ही नहीं दोस्तों, सविता जी ने तकनीकी चुनौतियों को भी मात दी। नेटवर्क की दिक्कत होती थी तो हमने 2 सिम रखना शुरू किया ताकि काम कभी नहीं रुके। यही है समाधान सोच, यही है नई सोच का उत्तर प्रदेश। आज सविता देवी हर महीने 70 से 80 हजार रुपए कमा रही हैं, अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे रही हैं और सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं आज महिलाओं को समाज का मार्गदर्शन भी बना रही हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, परिवार का साथ लीजिए और आगे बढ़िए। तो श्रोताओं, ये थी सविता देवी की कहानी। एक ऐसी महिला जिसने साबित किया कि अगर हौसला हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। आज भी आप श्रोताओं, ये थी सविता देवी जी की कहानी। एक ऐसी, आप भी अपने सपनों को पहचानिए, उन्हें पूरा करने के लिए एक कदम बढ़ाइए। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी अब आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
4: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
4: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
3: बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2006 की परीक्षा, 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा, प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला, मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में तेजी से हुए विकास के चलते आज उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
5: ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
6: आज स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना चाहिए।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी के माध्यम से होगी।
7: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
3: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
7: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला।
3: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 2400 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण 111 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर आज से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा खत्म हो गई है। कल रात 12 बजे से इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 29 मई को माता भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। ये ध्वजारोहण राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी रितंभरा के हाथों किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इस कार्यक्रम में करीब 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। आईपीएल में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। मैच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए इकाना स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के लखनऊ कार्यालय में आज एक दिवसीय समीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उपक्षेत्रीय कार्यालय गोंडा, कानपुर, झांसी, फतेहपुर और लखनऊ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक डॉ सुचिता गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक आय के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जो अगले साल 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
9: ये सर्वेक्षण जरूरी था क्योंकि योजनाओं को बनाने में कहीं ना कहीं हमें इनकम की जरूरत होती है, और अगर हमें इनकम सही से मिल रही है तभी हम बहुत सारी योजनाओं में हम टारगेट बना पाएंगे, क्योंकि हर इनकम क्लास के जो लोग होते हैं उनकी जरूरतें अलग अलग तरह की होती है, तो सभी के लिए योजनाएं बन पाए अच्छी तरह से और टारगेट किया जा सके किस तरह की योजनाएं कितने लोगों को चाहिए होंगी, कितने हाउस होल्ड को चाहिए होंगी, तभी हमारा डेटा सही मायने में यूजफुल होगा।
3: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद के कम प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में आज सभी 899 ग्राम पंचायतों ने एक साथ ग्रीन चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की खपत घटाने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और कार पुलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के साथ ही हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने का सामूहिक प्रण लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
11: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है।

नमस्कार, मैं विपुल अग्रवाल हूँ मुरादाबाद से, और आज यहाँ मुझे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर आने का मौका मिला। कुछ गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अपनी आवाज में आपको मुझे लगता है पसंद आएंगी। तो लीजिए सुनिए गजल जगजीत सिंह की विपुल अग्रवाल की आवाज में। हर

का सफर सदियों से वक्त के साथ है, मिट्टी का सफर सदियों

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: हाँ जी दोस्तों, कैसे हाल चाल है? मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तो मस्त होंगे।
3: माध्यम से उन्हें और उनके परिवार जनों को सूचीबद्ध अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनडीएमसी परिवार का हिस्सा बने सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। नितिका के रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में स्वागत किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्रीलंका की महिला और बाल कल्याण मंत्री सरोजा सावित्री पॉलराज कर रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रीलंका के लोकतांत्रिक सफर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक सामाजिक परिवर्तन को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश गहरे सभ्यतागत बंधनों, लोकतांत्रिक मूल्यों और अटूट जनसंबंधों से जुड़े हुए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह दौरा भारत और श्रीलंका के बीच मित्रता को और अधिक मजबूत करेगा और महिला नेतृत्व के माध्यम से गहन सहयोग को प्रेरित करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
5: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
4: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
5: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
4: इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। प्रश्न पत्रों तक उनकी पहुंच थी। एजेंसी ने पिछले 24 घंटे में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। सीबीआई ने बताया कि कल गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड के लिए पुणे की अदालत में पेश किया जा रहा है और उन्हें दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के 14वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सूद ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान नहीं है बल्कि एक विकसित होता शिक्षा केंद्र है जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। श्री सूद ने कहा कि शिक्षा अवसरों और युवा सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञान से भविष्य की ओर और भविष्य से राष्ट्र निर्माण की ओर, यही प्रगतिशील नई दिल्ली की पहचान है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत बैठक कर उनके स्कूलों की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की। बैठक में शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रमुखों से कहा कि वे वर्चुअल बैठक की कार्यप्रणाली की आदत विकसित करें। उन्होंने वर्चुअल बैठकों के संचालन के लिए प्रोटोकॉल और SOP तैयार करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यालयों को 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस पर विशेष कार्य करने का भी निर्देश दिया। साथ ही श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार सभी सरकारी विद्यालयों में AI आधारित लर्निंग सिस्टम को बढ़ावा दे रही है।
6: सरकार ने अपनी नीति को थोड़ा बदला है, बहुत बड़े विज्ञापन न देकर बच्चों के इनोवेशन के लिए पैसा खर्च करने का काम सरकार ने किया है। NEP 2020 में पर्सनलाइज्ड लर्निंग का जो एक आग्रह किया गया है, उसके संदर्भ में इन डिजिटल टूल्स का बेस्ट उपयोग करें।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। ये उपाय पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक दबावों को देखते हुए नागरिकों और संस्थानों से ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक खर्च से बचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के कुछ दिनों बाद किए गए हैं। दिल्ली के कला, संस्कृति और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा आज ऊर्जा संरक्षण का संदेश देने के लिए EV कार चलाकर दिल्ली सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली में मेट्रो मंडे, 2 वर्क फ्रॉम होम और न्यूनतम गाड़ियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
7: सरकार ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है मेट्रो मंडे और 2 वर्क फ्रॉम होम, न्यूनतम गाड़ियों का इस्तेमाल करना, और पूरी सरकार इसका पालन कर रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। पूरी तरह से अगर आप देखें तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां कम कर रहे हैं लोग वर्क फ्रॉम होम। मेरे पास ये जिम्मेदारी है कि मैं दिल्ली के प्रतिष्ठानों से, व्यापारियों से बात करूं, और ज्यादातर लोग अपने संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम को लागू कर रहे हैं।
4: श्री मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने परामर्श भी जारी किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी सरकारी संसाधनों के उपयोग, ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण उपायों को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों के दौर में सामूहिक जिम्मेदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल वृद्धि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक संतुलित कदम है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये बस सेवा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने DMRC को 2 अत्याधुनिक हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें उपलब्ध कराई हैं। 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली ये बसें सुरक्षा, GPS आधारित ट्रैकिंग और CCTV कैमरे से लैस हैं। इस बस का किराया 10 से 15 रुपए के बीच रखा गया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, UPI और नकद भुगतान विकल्पों के माध्यम से यात्री टिकट खरीद सकते हैं। यह शटल बस सेवा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके अलावा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक बस सेवा संचालित की जाएगी। यह बस सेवा कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, राष्ट्रीय स्टेडियम, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, इंडिया गेट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन सहित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और स्थलों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का अभियान 30 जून से शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता को सूची में शामिल किया जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में न रह पाए। विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षण और सामग्री मुद्रण का कार्य 20 जून से 29 जून 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO द्वारा 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आयोग ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में कुल 1,48,23,000 से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज दिलशाद गार्डन स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में प्रतीक्षा कक्ष का उद्घाटन भी किया। श्री वाही ने अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही महापौर ने अस्पताल के पार्क में वाटर स्प्रिंकलर लगाने के भी निर्देश दिए तथा वहां रखे कूलर को साफ करके जनता की सुविधा के लिए इस्तेमाल करने को कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से अस्पताल में 100 बिस्तरों की गहन चिकित्सा इकाई के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज ऑपरेशन मिशन के अंतर्गत आगामी मॉनसून सीजन के चलते अंतरविभागीय बैठक की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में दिल्ली में जलभराव और नालों की सिल्ट सफाई से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान आयुक्त ने बताया कि एमसीडी ने मॉनसून से पहले अपने अधिकार क्षेत्र के नालों की लगभग 65% सिल्ट सफाई का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग 4 फीट और उससे अधिक चौड़ाई वाले 1,375 नालों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जो दिल्ली के कुल बड़े नालों का लगभग 50% हिस्सा है। श्री खिरवार ने कहा कि मॉनसून के दौरान जलभराव की समस्या को रोकने के लिए सभी विभागों और एजेंसियों को आपसी समन्वय और बेहतर समझ के साथ काम करना होगा। बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने देश के नागरिकों से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति मित्र बनकर नशे के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। विभाग के सचिव सुधांश पंत ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि नशा मुक्त भारत बनाने का राष्ट्रीय संकल्प है। विभाग ने विश्वास व्यक्त किया कि आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी नशे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान को अभूतपूर्व गति प्रदान करेगी। भारत का माल और सेवा का कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। वाणिज्य विभाग ने कहा है कि निर्यात में ये मजबूत प्रदर्शन व्यापारिक गति की स्थिरता, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। देश के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात अप्रैल 2026 में 34.66% बढ़कर 9 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वर्टिस फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट सक्षम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सतत आजीविका के अवसरों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाकर सशक्त बनाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त करना है। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज दिनभर धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल आसमान साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। लोकतांत्रिक सफर में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके प्रति संवेदनशील। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR 30 जून से शुरू होगा और दिल्ली मेट्रो रेल निगम की हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
9: टायर लो सोना जीतो।
10: क्या?
9: जी हाँ,
11: जावला टायर
9: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
12: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, जावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
13: अपने दिल में बसा लो, अपनी बाहों में भर लो,

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट शारजा छाया और आप सुन रहे हैं मुझे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। मौजूद है आपके साथ लेकर अपना नया कार्यक्रम विशेष बातचीत, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मनोज वर्मा मनुजी। आपको बता दे दोस्तों कि मनोज मनुजी एक कवि, गजल, गीत, नज्म और दोहे जैसी रचनाएं करते हैं, और आज के इस विशेष बातचीत में हम सुनेंगे मिस्टर मनोज वर्मा जी की कुछ रचनाओं को, और साहित्य जगत से जुड़े हुए होंगे कुछ सवाल जवाब। तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद छाया जी।
0: जी, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अपने नाम के आगे जो आपने उपनाम दिया है मनोज वर्मा मनु, मनु नाम से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या सोच के रखा था मनु?
1: जी छाया जी, ये जो मेरा उपनाम है ये मेरे दोस्तों की, मेरे घर में, मेरे परिवार की देन है, और इसके बारे में मैं कहूँ तो ये हमारे संस्कृति में आदि पुरुष जो मनु सत्रुपा के नाम से आपने सुना होगा, जो कि आदम के इक्विलेंट आते हैं, ये उसी नाम से संबंधित है, और मैं सोचता हूँ कि मानवता के लिए ये एक अच्छा नाम है, इसलिए मैंने इसे अपने नाम के साथ जोड़ा है।
0: हाँ जी जी जी। तो जैसा कि आप गजल, गीत, दोहे, नज्म वगैरह करते हैं, तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि गजल और शायरी लिखने में आपका कैसे रुझान विकसित हुआ, या कोई विशेष लम्हा या प्रभाव आपकी रुचि को प्रज्वलित किया?
1: बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल जिस समय हम अपनी युवावस्था में थे उस समय, और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं बेसिकली, वो जगह मुशायरों के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी, जनपद रामपुर जो अदब का शहर कहलाता है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो अक्सर हम जो मुशायरे वगैरह में जाते थे और अपने साथियों के साथ इसको सुनते थे, वहाँ पर उसका एक क्रेज अलग था। तो जब वहाँ पर शायरों को सुना जाता था और उनका अंदाज देखते थे, तो इसी चीज ने धीरे धीरे रुझान पैदा कर दिया। और ये तो एक बात है ही कि किशोरावस्था में अगर आपको गजलों से निस्बत होने लगे तो यकीनन ये इस बात का सबूत है कि दिल में किसी की चाहत के अंकुर फूट रहे हैं। तो और बंदा अपने दिल की बात बड़े अदब और शाइस्तगी के साथ अपने महबूब तक पहुंचाने की तमन्ना रखता है, तो धीरे धीरे शायरी को जानने और समझने का सलीका भी रुचि पैदा कर देता है। बस इस तरफ थोड़ा रुझान हो गया।
0: चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा आपका जवाब मिला हमें,
1: शुक्रिया।
0: जी जी, तो गजल और शायरी लिखते समय आपकी रचनात्मक प्रकृति कैसी होती है? क्या आप कोई निश्चित रूटीन फॉलो करते हैं या कोई विशेष प्रेरणा के स्रोत है?
1: मकतबेश का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। तो छाया जी, मैं कहना चाहूंगा कि रचना कर्म से जुड़ने के बाद भी बिल्कुल यही कैफियत लागू होती है। इसका कोई निश्चित रूटीन नहीं होता, ना ही संभव है। ये एक सतत प्रक्रिया होती है जो लगातार जहन को अपनी जद में बांधे रखती है, और नेचुरली आसपास के हालात या मन की कैफियत से प्रस्फुटित होकर अपने आप को सृजित करवा ही लेती है। हालांकि उसके शिल्प की तरतीब और उस विधा की बुनियादी जानकारी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसमें कहाँ तक महारत हासिल कर पाते हैं। इसके बावजूद भी शेर कहना, पढ़ना, ये एक खुदादाद कैफियत होती है, ईश्वरीय प्रेरणा का स्रोत होती है। क्योंकि कहा गया है, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं।
0: अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं, क्या बात है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपका कोई पसंदीदा गजल या शायरी जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, और आपके लिए वो खास क्यों है?
1: दरअसल छाया जी, बात यह है कि कोई भी शेर, कोई भी गजल अपने आप में हमेशा जो हमारी याद होती है उनसे जुड़ी हुई होती है, या जो परिवेश होते हैं उनसे मिली हुई होती है, उनसे प्रेरित होती है। चलिए मैं आपको दो एक शेर के माध्यम से बात बताता हूँ। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती।

0: आपको इतना पसंद क्यों है?
1: जैसा कि मैंने बताया, शायरी अपने आप में कई मकाम समेटे हुए होती है। ये कब कितनी आगे चली जाती है, कब कितनी पीछे चली जाती है, इसका कहना मुमकिन नहीं होता। तो ये सब उन्हीं जज्बों के छोटे छोटे अंश हैं जो हमारे सामने चलते रहेंगे। मैं और आपको रूबरू कराऊं अपने एक कते से कि हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल ने, हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है। तो ये सब यादों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जो यकायक आती हैं और फिर पन्नों में सिमट कर हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं।
0: क्या बात है, क्या खूब कथा आपने सुनाई। और इसी के साथ अगर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो हमारा अगला सवाल आपसे होगा, कविता और शायरी आपके लिए क्या है, मतलब क्या मायने रखता है, आप इसे कैसे देखते हैं?
1: जी छाया जी, मेरे नजदीक शायरी या कविता में श्रृंगार के साथ सामाजिक और मानविक मूल्य, कुदरत के प्रति संवेदनशीलता, रिश्तों में आत्मीयता और ईश्वर के प्रति आभार, ये संदेश प्रवाहित होकर ही कविता को कालजयी श्रेणी में रखते हैं। और मेरे नजदीक ये केवल लफाजी का एक तरीका नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मात्र लफाजी तुकबंदी ये कुछ समय के लिए तो प्रभावित कर सकती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। और जो कविता या गजल या शायरी अगर हमारे समाज को संदेश ना दे पाए तो वो व्यर्थ होती है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा लगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। सवाल अगला करेंगे लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपका कोई पसंदीदा गजल जो सुनना चाहेंगे हमारे आज के इस विशेष बातचीत में।
1: देखिए, छोटी छोटी बातों से मैं कविता को अपने नजदीक क्या समझता हूँ उसे बताने की कोशिश करता हूँ। हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो कि जाहिर नहीं। हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो कि जाहिर नहीं। जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं। हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं। और गजल में मैं दो तीन शेर आपके बीच रखता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद। हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद। मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, अपना पहलू मेरे पहलू से बदल शाम के बाद। हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद। और अगला शेर है इसमें कि तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद। और हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद। और फिर गजल का शेर है कि तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद। और जो ताईद का शेर होता है कि मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद। और हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, रिश्ता बेसाख्ता जाता है बदल शाम के बाद। हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद।
0: क्या बात है।

0: आपकी जितनी भी रचनाएं हैं इसका मधुर सौंदर्य हमारे सभी श्रोताओं के हृदय को छू रहा होगा और साथ ही साहित्य जगत को भी प्रभावित कर रहा है। चलिए ये तो रही आपकी शायरी की बात, लेकिन कुछ गीत दोहे जो आप सुनाना चाहते हैं, हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और मुझे कुछ गीत सुनाएं।
1: जरूर, देखिए गजल और शायरी ये अपना शौक है, लेकिन कविता और गीत ये हमारा कल्चर है। तो मैं आपको एक अंचे के साथ, एक मुखड़े के साथ एक गीत के कुछ अंश रखता हूँ।

0: क्या बात है सर, जितनी प्यारी आपकी रचनाएं उतना ही प्यारा आपका गीत।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: वैसे हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा और इसका फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे कल के शो में। हाँ जी, फिलहाल तो अपने शो की तरफ आगे बढ़ती हैं और अगला सवाल जानते हैं मनोज मनु जी से कि गजल और शायरी लिखते समय क्या आपने किसी प्रशिक्षण का सामना किया है? कैसे आप लिखने के भेद को समाप्त करते हैं या प्रेरणा प्राप्त करते हैं जब आप लिखने में अटक जाते हैं?
1: देखिए, शायरी की तरफ रुझान होना और शायरी कर पाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हर विधा को निखारने के लिए प्रशिक्षण और सतत प्रयास की आवश्यकता होती ही है। और शायरी के बारे में तो ये कि शेर कह पाने की सोच एक ईश्वरीय वरदान का नतीजा माना जाता है। तो अगर आप में शेर कह पाने की खुदादाद सलाहियत नहीं है तो उसके समूचे व्याकरण आदि को जानने के बावजूद भी आपके शेर में वो बात हरगिज पैदा नहीं हो सकती जो उसको मकबूलियत या उसको प्रसिद्धि प्रदान कर सके। दो लाइनों से मैं अपनी बात रखूं कि अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, खैरात सा नहीं ये इनायत सा नहीं है, जिसने लहू दिया है वही पाल सका है, ये शौक रईसों की रवायत सा नहीं है, ये शौक रईसों की रवायत सा नहीं है।
0: क्या बात है, क्या खूब आपकी रचनाएं और बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आ रहा है हमें, हमारे सभी श्रोताओं को भी।
1: बहुत शुक्रिया।
0: जी जी, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि क्या कोई कवि या लेखक जो आपके काम पर प्रभाव डाले हों, उन्होंने आपकी रचना और लिखने की प्रकृति को कैसे प्रभावित किया है?
1: जी, मेरे विचार से किसी भी विधा के प्रति आकर्षित होने का ये सबसे पहला स्टेप होता है। जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उनमें से बहुत से प्रभावित हो जाना एक सामान्य प्रक्रिया है और प्रभावित व्यक्तित्व से रचना कर्म में समानता ही एक सामान्य बात है। शायरी के इस फहरिस्त में जनाब श्री कृष्ण बिहारी नूर साहब, मजाज लखनवी साहब, नरेश कुमार साल साहब और वर्तमान में दादा निजाम हाफतिफ साहब जो मुरादाबाद से ही बिलोंग करते हैं, आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब जो नूर साहब के ही शागिर्द हैं, इन नामों से मैं खासा प्रभावित रहा हूँ। इन्होंने मुझे, इनके रचना कर्म ने मुझे खासा प्रभावित किया है और वो झलक अगर मेरे रचना कर्म में झलकती हो तो इस बात को लेकर मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूंगा।
0: अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कैसे आप गजल और शायरी के पारंपरिक तत्वों को सच बोलते हुए अपने आप के आवाज और अंदाज को शामिल करते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये किसी भी रचना के शिल्प और उसकी अदायगी का प्रश्न है। परंपरागत तौर पर शायरी का अपना ही एक व्याकरण है, बाकी कंटेंट के रूप में सामाजिक और मानविक मूल्यों के उठाए गए सच्चे विषय जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये बात अंदाजे बयां को एक पुख्तगी और एक स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत होता है। मैं समझता हूँ कि इसी चीज से एक पुख्तगी आती है। जब हम सच कहेंगे तो सच के कहने में उस आवाज में जो जोर होता है उसका एक अपना अलग अंदाज हो जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सच बोलने की ताकत सब में नहीं होती है, लेकिन जो सच बोलता है ना उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, हमें एक अलग ही ऊर्जा झलकती है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि बड़ा अहम सवाल है ये और इसका जवाब बहुत ही अच्छा मिला हमें। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि आपको लगता है कि आधुनिक लेखों के लिए गजल और शायरी जैसे क्लासिक काव्य के रूप में जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है? आधुनिक दुनिया में उनका क्या महत्व है?
1: जी छाया जी, आधुनिक दौर में निसंदेह क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, परंतु साहित्य में शायरी से गजल के क्षेत्र में ये बात है कि ये विधा अपनी रवायत के साथ हमेशा से खड़ी रही है और भविष्य में भी इसकी शोहरत कम होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, क्योंकि जब तक इंसान में इंसानियत, रोमानियत और सामाजिकता का जज्बा रहेगा गजल और शायरी हमेशा जिंदा रहेगी।
0: क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें, हमारे श्रोताओं को। अगला सवाल तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी। हम सभी एक्चुअली जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं गजल और शायरी समाज में क्या भूमिका निभाते हैं?
1: जहाँ तक शायरी और गजल की समाज में भूमिका का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि इस फन को अदब की संज्ञा दी गई है। यानी कि जब कोई बंदा गजल या शायरी या साहित्य से वावस्ता होता है तो वह अदब के क्षेत्र में आ रहा होता है, और जब अदब से रूबरू होना यानी समाज में सकारात्मक योगदान की भूमिका निभाना है, तो पाठकों और सुनने वालों को आकर्षित करने का मादा शायरी में बिल्कुल इस तरह से है जैसे गर्म चाकू पर मक्खन पेवस्त कर दिया जाता हो। यानी आप देखें कि हम जो बात कहना चाहते हैं, शायर जो बात कहना चाहता है शायरी में, वो बात सीधे ही दिल तक उतरती है। तो ये इसकी अपनी खासियत है और इसको सामाजिकता में एक सकारात्मक सहयोग के रूप में, सकारात्मकता के रूप में ही हम देख सकते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। वैसे हमने पहले ही कहा था कि आपकी रचनाएं हमारे श्रोताओं और हमारे दिल को सीधा ही संपर्क कर रही हैं, और इसी के साथ
1: शुक्रिया।
0: लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पथकों और सुनने वालों के साथ कितना संपर्क रखता है।
1: जी, मैंने बताया कि सुनने वालों को जो इंटरेक्ट करता है, जो संपर्क रखता है, वो अपने आप में विलक्षण होता है। जैसे हम कभी कोई भी बात अगर प्रोज में या गद्य में पढ़ते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो विस्मृत हो सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ शेर जो आज से सदियों पहले कहे गए आज भी बिल्कुल वैसे ही और उसी ताजगी के साथ जिंदा हैं। इसलिए इसका इंट्रेक्शन और इसका जुड़ाव यकीनन बहुत अच्छा है।
0: जी जी, जरूर सही कहा आपने। वैसे हमें भी बहुत अच्छा लगता है शायरी और गजल, और इसीलिए आपकी और हमारी मुलाकात हुई है इस विशेष बातचीत में। अगला सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आप अपने विचार में गजल और शायरी के भविष्य पर कुछ विचार देना चाहेंगे।
1: जी जी, गजल और शायरी के भविष्य हमेशा से उज्जवल रहा है और हमेशा से उज्जवल रहेगा। हाँ, अगर शायरी केवल बादशाहों के हरम तक ही महदूद रह जाती, वहीं दम तोड़ जाती, तब शायद इसका अस्तित्व कुछ और होता। लेकिन चूंकि अब ये सामाजिक और मानविक मूल्यों के चिंतन से भी जुड़ चुकी है, तो उसके बाद इसका श्रृंगारिक पक्ष और भी वसी और भी विशाल हो गया है। इसलिए इसका भविष्य सुरक्षित है और प्रकाशवान है। आने वाले वक्त में इसकी शोहरत, इसकी मकबूलियत हमेशा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: आप जैसे कवि और गजल की रचनाएं करने वाले लोग होंगे तो जरूर, और हमें भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। वैसे सर, जाते जाते, क्योंकि हमारे जाने का वक्त हो रहा है, तो जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे उन सभी दोस्तों को, उन सभी यूथ को जो कम उम्र से ही शेरो शायरी करने का शौक रखते हैं, गजल सुनते हैं, सुनाते भी हैं अपनी रचनाओं के तौर पर, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे।
1: जी छाया जी, बहुत बड़ा विषय है। तो यूथ का जो मेरा संदेश है वो मैं अपने अशार के ही माध्यम से कहना चाहूँगा। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों। अगर एहसास मर जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता, जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों। जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों। और ये भी संदेश कि रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना, रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना, बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों, बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों। और अभी तो शम रोशन है ये जलवा देखना यारो, जवां जब रात बाकी हो तो घर जाने की बातें क्यों। जहां चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की, तो जहाँ चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की, तो पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों, पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों। रहवा के रुख के जाने भी पलट जाओ मगर सोचो, जिधर से आग भड़की हो उधर जाने की बातें क्यों। और मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से। किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों।
0: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप इस लाइन को दोहराइए।
1: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से। किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। और ये गजल के दो मिसरे भी इसमें है कि हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों। जुबा दे दी अगर तो फिर मुकर जाने की बातें क्यों।
0: क्या बात है, जुबा दे दी अगर तो मुकर जाने की बातें क्यों। बहुत ही खूबसूरत सी आपकी ये रचना
1: जी। जहाँ तक आपने मुझे बताया कि एक यूथ के लिए इस समय क्या संदेश है, तो मैं अपने चंद अशार के साथ ये बात यूथ तक पहुँचाना चाहूँगा आपके रेडियो के माध्यम से कि जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, और करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, ये मेरा संदेश है, करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, मगर गुनाह से तौबा, मगर गुनाह से तौबा गुनाह याद रखो, और नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, और रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, मुआफियों में है रब की पनाह याद रखो, मुआफियों में है रब की पनाह याद रखो, और जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो।
0: क्या खूब, क्या खूब,
1: शुक्रिया।
0: वैसे जाते जाते मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, सोच रही हूँ पूछ ही लूँ, किस उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया, किस उम्र में आपका इंटरेस्ट रचनाओं में होने लगा?
1: छाया जी, बात दरअसल ये है कि जो परिवेश मैंने जैसे बताया पहले, ये जो परिवेश था मुशायरों का, तो ये टीन एज से ही हमें शौक लग गया था। तो दोस्तों के साथ जब जाते थे, देखते थे, शेर को समझते थे और उस पर शायरों को दाद देते थे, तो वो एक अलग अनुभव महसूस होता था। इसी चीज ने जो रुझान पैदा किया, तो टीन एज से ही ये रोग हमारे साथ है। खैर।
0: जी जी, तो वैसे जाते जाते बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन वक्त तो हो गया हमारा जाने का, इसलिए एक आखिरी सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर को समर्पित कोई गीत, कोई रचना आपकी जो आप अभी हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें?
1: जी, क्या बात है, और वाकई जहाँ हम रहते हैं उसका खर्च हम पर होता है, तो मैं जरूर बात रखूंगा। एक गीत के माध्यम से मैं अपने शहर को जो समर्पित करना चाहता हूँ, पंक्तियाँ। शहर मेरा पीतल नगरी है, स्वर्णिम आभा लिए हुए।

लिए हुए। इस गीत में आपको जो इससे संबंधित इतिहास है वो थोड़ा देखने मिलेगा, उसकी झलक मिलेगी। तो मैं रखता हूँ। यहाँ अनेकों रंग समेटे प्रतिभाएं आभामय हैं, विश्व पटल पर धाक जमाने योग्य कुशल हैं तन्मय हैं। यहाँ अनेकों रंग समेटे प्रतिभाएं आभामय हैं, विश्व पटल पर धाक जमाने योग्य

लिए हुए। ये पीतल लकड़ी कहलाता है, विश्वविख्यात है और नक्काशी यहाँ का मेन वर्क है। तो नक्काशी मीनाकारी अद्भुत है कितनी बतलाएं, हुक्का बर्तन आभूषण प्रतिमाएं क्या क्या दिखलाएं। नक्काशी मीनाकारी अद्भुत है कितनी बतलाएं, हुक्का बर्तन आभूषण प्रतिमा

0: अपने शहर मुरादाबाद को आपने बहुत ही प्यारे शब्दों में पिरोया है और इसका वर्णन किया है। बहुत अच्छा लगा हमें भी और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी। इस एपिसोड का ये हमारा विशेष बातचीत का कार्यक्रम और इसका पहला एपिसोड आप लोग सुन रहे हैं और इसका पुनः प्रसारण आप कल सुनेंगे 9 बजे से सुबह 10 बजे तक। तो इसका फीडबैक मैं अपने शो यानी छाया गीत के शो में जरूर लेना चाहूंगी आप सभी श्रोताओं से। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और इतना कीमती समय आपने हमें दिया और हमारे सभी श्रोताओं के लिए इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया छाया जी, आपका, रेडियो का और सुनने वाले हमारे सामईन यानी श्रोताओं का भी, आप सभी के तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया है।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 और हम बात करने वाले हैं सेहत से लाभ कई। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा अलग है। सच कहूँ तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने बहुत ही सरल लगता है, लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत रखता है। और इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी बताते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आज के शो में।
1: आरजीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। आपने सारे प्यार और भरोसे के लिए आज तो आपने शुरुआत ही इतनी भावुक कर दी है कि लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। आरजीना,
0: बात तो सच में बहुत ही बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाला कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह गलत सोच रही हूँ?
1: अरे आरजीना, नहीं नहीं, आप पूरी तरह भी गलत नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चे के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगाकर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है, इसीलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं, तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हम सच्चाई को समझते हैं, और हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले 4 हफ्तों में ही दुनिया छोड़ जाते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती है और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चों की देखभाल कितनी जरूरी है। आरजीना,
0: ये तो सच में बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है भैया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है आरजीना, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इलाज होता है? जैसे मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहा जाता है। ये मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्म और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि हर जगह ये उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गांव और दूर दराज इलाकों में। और हाँ, जहाँ उपलब्ध होती है वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया, अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए, तो परिवार क्या करे?
1: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी और चीज की। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श और उसका प्यार, उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती हैं और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है जो उस माँ के गर्भ से मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा देता है।
0: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में तो बहुत ही अद्भुत लग रही है। सेहतिया भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रही है कि ये आखिर संभव कैसे है। क्या सच में सिर्फ पास रखने से ही बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
1: देखिए आर्जेरीना, यह कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ सीने से लगाकर सीधा रखती है, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं, जिसे कंगारू अपने छोटे बच्चों को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगाकर रखती है और इस दौरान बच्चे को ना केवल गर्मी मिलती है बल्कि उसे पूरी तरह सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ही जरूरी है।
0: ओहो, तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे को गोद में ले लिया जाए वही काफी है?
1: नहीं आर्जेरीना, सिर्फ गोद में लेना ही काफी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगाकर रखा जाता है ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इससे बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी से संतुष्ट रहती है और वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और ये एक तरीका बच्चे को वही माहौल देता है जैसे उसे गर्भ में मिलता था।
0: सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीका सच में इतना असरदार है?
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई है उनकी मृत्यु दरें कम हो रही हैं और उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है, वो ज्यादा स्वस्थ पाए गए हैं, यहाँ तक कि लंबे समय से भी ऐसे बच्चों के शरीर और मानसिक का विकास बेहतर देखा गया है।
0: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे के जिंदगी बचा सकता है, ये सोच कर ही मन भर आता है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल। और इस साल का यह संदेश भी है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है आर्जेरीना।
0: वाह, ये बात दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। अच्छा सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर पर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
1: जी हाँ आर्जेरीना, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चा घर लौटते हैं तो वही इसे भी जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्यकर्ताओं की सलाह जरूर ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का तरीका क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि सभी श्रोताएं समझ सके।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सिर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह रखा जाता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि वह हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: आर्जेरीना, इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध ही दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है। जो ताकत उसे माँ का दूध दे सकता है वो कोई और नहीं, और सबसे अच्छा पोषण होता है माँ का दूध, जो ताकत भी देता है, बीमारियों से भी बचाता है और उसके विकास में भी मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है, यानी एक ही तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ को स्पर्श करके और माँ के दूध से बच्चे की सुरक्षा और पोषण और सुकून तीनों ही मिल जाते हैं।
0: अरे भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, पर जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए आर्जेरीना, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती हैं। ऐसे में बच्चा आम तौर पर ज्यादा समय तक आराम से सोता है, कम रोते हैं और उनका वजन भी सामान्य तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शरीर और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका असर माँ पर भी पड़ता है।
1: जी हाँ अर्जेरीना, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध बेहतर तरीके से बनने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि माँ वो अपने बच्चे को अच्छे से उसकी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ। इतनी साधारण सी चीज लेकिन असर इतना गहरा। अच्छा सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है। हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है, या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही होती है?
1: आरजी रीना, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो यह है कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब पिता भी अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदे दे सकते हैं जो माँ देती है?
1: जी हाँ अर्चरीना, पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब भी पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनका बच्चा उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
1: देखिए आरजी रीना, बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो ना सिर्फ बच्चे को फायदा होता है, बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो भी अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और परिवार का माहौल सकारात्मकता से भरा होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
0: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखे। अगर पिता भी इसमें शामिल होते हैं तो बच्चों को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सेहतिया भैया, हर चीज के साथ कुछ सावधानियाँ भी जरूरी होती हैं। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए तो उस समय मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें, ताकि पूरी तरह बच्चे पर आप फोकस रहें। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कोई तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है, यानी छाती का हिस्सा, वह भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए अर्जेरीना।
0: ओहो, और इसे कितने देर तक करना चाहिए? क्या इसका कोई समय होता है?
1: कम से कम आर्जेरीना 1 घंटा तो इसे लगातार ही करना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा समय दिया जा सके उतना ही बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं, जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
0: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी। शुरुआत में थोड़ा झिझक थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, यही तो हमारा मकसद है, जानकारियों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर परिवार अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सके। और अगर कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
0: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से सही जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं, बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होता है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त होगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही लाभ कई। श्रोताओं, मिलेंगे फिर आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद

0: विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद
1: कॉल 7500153841।
2: नमस्कार, मैं विपुल अग्रवाल हूँ मुरादाबाद से और आज यहाँ मुझे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर आने का मौका मिला। कुछ गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अपनी आवाज में आपको मुझे लगता है पसंद आएंगी। तो लीजिए सुनिए गजल जगजीत सिंह की विपुल अग्रवाल की आवाज में। हर

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
7: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
6: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
7: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
6: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर ना।

0: हेलो नमस्ते आदाब। FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं आपकी दोस्त व होस्ट छाया मौजूद हूँ आपका पसंदीदा शो विशेष बातचीत लेकर, जिसमें आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है, आपको उनसे मिलवाते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
0: मैम अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
1: डॉक्टर मोनिका यादव।
0: डॉक्टर मोनिका यादव, वो मोनिका के नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगाया है आपने?
1: मैंने PhD कंप्लीट की थी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने की वजह से मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर।
0: जी जी जी। तो मैम अपना एक बार परिचय विस्तार से हमारे श्रोताओं को दे दें।
1: मेरा नाम डॉक्टर मोनिका यादव है। मैं पिछले 29 ईयर से सेंट मैरीज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक टीचर के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैं एक शायरा भी हूँ, राधे कृष्ण की भक्त भी हूँ, इसलिए मैं उनके भजन भी गाती हूँ। स्कूल में भी मैं

0: लोगों को इंग्लिश के डिवोशनल सॉन्ग सिखाती हूँ।
1: क्या बात है, जैसा कि आपने बताया आप एक टीचर भी हैं, आप राधे कृष्ण की भक्त भी हैं और एक शायरा भी हैं। तो सबसे पहले मैम अपने शो की शुरुआत आपकी एक खूबसूरत सी शायरी के साथ करते हैं।
0: मैं सदफ के नाम से लिखती हूँ और मेरा एक शेर है कि शुक्र है तेरी महफिल में रुमाल की मनाही नहीं, शुक्र है तेरी महफिल में रुमाल की मनाही नहीं, के सदफ की कलम में अश्क होते हैं रोशनाई नहीं।
1: क्या बात है, क्या खूब आपने शायरी बोली, मजा आ गया। ये तो शायरी हो गई, बड़ा ही खूब था। फिलहाल एक गजल सुनना चाहेंगे हम सभी।
0: अभी

किसी के दिल में छाले हो, कहीं पे सिर्फ उजाले हो, कोई मेहताब को छू गया, किसी का तारा डूब गया, रंगी पतंग सी उड़ने लगे, कभी बोले ना।

0: क्या बात है, क्या बेहतरीन आवाज है और आवाज में आपके वो जादू है। सच में ये जो गजल अभी आपने गाया मैम, मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब गजल शायरी में आपका रुझान हुआ कैसे?
1: बस वो बचपन से ही था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो इंडिया फेम के राइटर थे, तो अच्छा। शायद उनके कहीं ना कहीं जीन्स आ गए होंगे। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है
0: जी,
1: कि हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक मादा उल्लू काफी था।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने गजल और शायरी जो भी है, पोयम वगैरह, ये लिखने के लिए कहीं से प्रशिक्षण लिया है क्या?
1: नहीं नहीं, मैंने कहीं से को पता नहीं, मैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली लिखने लगी। मैं कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, मेरा अपने आप ही गॉड गिफ्टेड है, भगवान की कृपा, कृष्ण कन्हैया की कृपा है।
0: क्या बात है, वैसे गॉड गिफ्टेड चीजें हम चाहे कितना भी दबाएं वो बाहर आ जाती है। पीएचडी करने के बाद भी आप
1: हिस्ट्री में,
0: हाँ, इसमें आपका रुझान हुआ। वैसे मैम, कोई ऐसा पसंदीदा आपका शेर गजल जो भी है जो आपको बहुत पसंद हो, किसी की याद दिलाती हो?
1: हाँ, ये मेरे जो पापा थे वो मुझे बहुत हाइट पे देखना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: तो उनको मैंने एक जवाब दिया था एक गजल की शक्ल में।

0: अच्छा
1: क्या बात है, क्या खूब, मतलब मैं आपकी आवाज में खो जा रही हूँ। इतनी खूबसूरत आपकी आवाज है और बहुत खूबसूरत लय है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसे कवि जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिली हो।
0: मेरे अपने ग्रैंडफादर ही थे शायर। अच्छा। अच्छे था वो, हुमा के नाम से लिखते थे, हुमा साहब।
1: अच्छा, तो उनके वजह से आप इतनी इंस्पायर हुई हैं।
0: वैसे मैं वसीम बरेलवी साहब के जो गजलें हैं ना, उनसे मैं वो मुझे काफी पसंद है।
1: अच्छा।
0: एक उनका एक मुझे एक शेर है वो बहुत पसंद है। मलाल भी हो तो लब आशना नहीं होता, मलाल भी हो तो लब आशना नहीं होता, जहाँ दिलों में कोई फासला नहीं होता।
1: आय हाय, क्या बात है, बहुत प्यारा लग रहा है सच में जब आप बोल रही हैं, क्योंकि हम लोग भी शायरी वायरी बोलते हैं बट वो फ्लो नहीं आ पाता ना, वो फील आता है। हो सकता है शायद लिखने की वजह से आप लोगों में वो फ्लो आता है। वैसे मैम, ये जो शेर शायरी है, ये गजल है, ये हमारे समाज में क्या भूमिका निभाते हैं?
0: नहीं, बहुत फर्क पड़ता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।
1: जी, ये लाइन बड़ी मशहूर है।
0: हाँ, जहाँ ना पहुँचे, मतलब एक एक कलम में जो ताकत होती है वो शायद कहते हैं तलवार में भी नहीं होती।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सुनने वाले पथक, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कितना संपर्क में आ पाते हैं वो?
0: नहीं, आते हैं और सब कॉन्टेक्ट करने की। अभी मेरा इंटरव्यू हुआ था इसमें BJX में, तो उन्होंने खुद ही मुझे कॉन्टेक्ट किया था। आए, काफी इम्प्रेस हुए, उन्होंने कहीं मेरी गजल सुनी होगी।
1: अच्छा।
0: हालांकि मैं लाइमलाइट में नहीं आना चाहती, एक टीचर रही हूँ पूरी लाइफ, एक हाउसवाइफ रही हूँ, लाइमलाइट में आऊँ, लेकिन उन्होंने खुद ही बोले नहीं नहीं हम आपका मैम जरूर लेंगे इंटरव्यू।
1: जैसा मैम आपने बताया था स्टार्टिंग में कि आप भजन भी गाती हैं, तो एक दो भजन सुनाइए जो आपको बहुत पसंद हो, जो हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगे।
0: ये जो ये भजन है, ये मेरी अपने जीवन पे भी इसका काफी असर है, और मैं इसी की वजह से हूँ जो मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ।

0: क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत आपने ये भजन गाया और वाकई भगवान की कृपा से हर काम होता है। कहते हैं कि एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं खड़कता है, तो बहुत अच्छा लगा। और आप हमें ये बताइए, अगर कोई यूथ इससे प्रभावित है और वो इसमें आगे बढ़ना चाहता है तो क्या उसको इस फील्ड में फ्यूचर मिलेगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा जाता है कि शायर पैसे के मामले में गरीब होता है
0: जी,
1: लेकिन लफ्जों की दौलत होती है उसके पास।
0: अच्छा,
1: एक वो कुछ लफ्जों को इधर से उधर कर दे तो कहीं का कहीं पहुंचा दे।
0: जी हाँ। अच्छा मैम, हमें ये बताइए कि कैसे आप गजल और शायरी के पारंपरिक तत्वों को सच बोलते हुए अपने आवाज और अंदाज के साथ शामिल करते हैं?
1: बस कुछ ऊपर वाले की कृपा हो जाती है, कुछ हम भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी से लिखते हैं।
0: जी हाँ। तो क्या आप अपनी लिखी हुई शायरी, गजल, ये सब अपने लिखी हुई सुनाती हैं?
1: हाँ, हमें ज्यादातर। अगर मैं किसी और की तो मैं बता देती हूँ कि भाई ये उनका है, उन वसीम बरेलवी साहब का है या नुसरत जी या जिसका भी है
0: जी।
1: एक है नुसरत, वो भी बहुत अच्छा लिखती हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं मतलब उनका नाम उसमें कि मेरे को उनका ये वाला शेर पसंद है, मैं सिर्फ वही शेर बता देती हूँ कि ये मेरा ही अपना ही अपने ही लिखा हुआ है।
0: अच्छा, मतलब किसी और का शेर है तो आप नाम के साथ?
1: हाँ, नाम के साथ। हाँ, उसका नाम मेंशन कर देती हूँ, नाम के भाई उन शायर का है।
0: जी, लेकिन मैक्सिमम आपके खुद के लिखे?
1: हाँ, मैं खुद के लिखे।
0: तो मैम, आपकी आवाज और आपकी आवाज का जादू इतना अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक और आप कुछ सुनाना चाहें?
1: मुझे वैसे कोल्ड हो रहा है।
0: जी हाँ, मुझे तो पता है कोल्ड हो रहा है, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि एक लास्ट अगर आप सुना दें।
1: ये भजन मेरे अपने जीवन पर भी लागू हो रहा है और ये भजन मुझसे ज्यादातर मेरा कन्हैया कहता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल कहता है। जब जब भी मैं उदास होती हूँ, दिल में कुछ ऐसा होता है, तो ये मैं हमेशा ये वाला भजन सुनती हूँ और गाती हूँ और फिर मुझे लगता है कि मेरे राधे कृष्ण मेरे साथ।

जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, मेरे आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है, जब दुख

या तू, सुख दुख दो पहलू हैं, मस्ती में जिए जा तू, क्यों हार

0: क्या बात है, बड़ा ही सुंदर भजन आपने ये सुनाया। और भजन के एक्चुअली मीन्स यही थे कि कान्हा जी ये कहते हैं कि भाई तू अपना कर्म करते जा, तुझे जो करना है लेकिन अच्छा कर्म करना, मैं तेरे साथ हूँ चाहे जो भी घड़ी हो। बड़ा ही खूबसूरत सा भजन। और ऐसा मैम का कहना है कि इनको फील होता है कि भाई ये भजन उनके लिए है, और हर भक्त को एक्चुअली यही लगता होगा कि ये भजन उनके लिए है। बहुत अच्छा लगा मैम। एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को, क्योंकि आप शायर हैं एक, तो उन लोगों को जो शायरी कर रहे हैं या उनका रुझान है इसमें, वो किस प्रेरणा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, छोटा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को।
1: बस मेरा यही मैसेज है कि अपना अपना मन बिल्कुल साफ रखना चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, और अपना कर्म बेस्ट करना चाहिए, और ईश्वर पे अटल विश्वास रखना चाहिए। वो हमारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे।
0: जी।
1: उनका जो डिसीजन है, उनका जो वो होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि सभी श्रोताओं को आपका जो भजन है, शायरी है, ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अगली बार हम फिर आपसे एक मुलाकात और करना चाहेंगे, और अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: राधे कृष्ण।
0: राधे कृष्ण।
2: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
3: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
2: अरे वाह।
3: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
2: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
0: हेलो नमस्ते, आदाब। FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर मैं आपकी दोस्त व होस्ट छाया मौजूद हूँ आपका पसंदीदा शो विशेष बातचीत लेकर, जिसमें आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है, आपको उनसे मिलवाते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
0: मैम अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
1: डॉक्टर मोनिका यादव।
0: डॉक्टर मोनिका यादव, वो मोनिका के नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगाया है आपने?
1: मैंने PhD कंप्लीट की थी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने की वजह से मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग
0: जी
1: गया।
0: जी जी, एक्चुअली PhD के बाद हम डॉक्टर लगा सकते हैं नाम के आगे। तो मैम अपना एक बार परिचय विस्तार से हमारे श्रोताओं को दे दें।
1: मेरा नाम डॉक्टर मोनिका यादव है, मैं पिछले 29 ईयर से सेंट मेरीज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक टीचर के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैं एक शायरा भी हूँ, राधे कृष्ण की भक्त भी हूँ, इसलिए मैं उनके भजन भी गाती हूँ। स्कूल में भी मैं बच्चों को इंग्लिश के डिवोशनल सॉन्ग सिखाती हूँ।
0: क्या बात है। तो आप, जैसा कि आपने बताया, आप एक टीचर भी हैं, आप राधे कृष्ण की भक्त भी हैं और एक शायरा भी हैं। तो सबसे पहले मैम अपने शो की शुरुआत आपकी एक खूबसूरत सी शायरी के साथ करते हैं।
1: मैं सदफ के नाम से लिखती हूँ, और मेरा एक शेर है कि शुक्र है तेरी महफिल में रुमाल की मनाही नहीं, शुक्र है तेरी महफिल में रुमाल की मनाही नहीं, कि सदफ की कलम में अश्क होते हैं रोशनाई नहीं।
0: क्या बात है, क्या खूब आपने शायरी बोली, मजा आ गया, और वो एनर्जी भी है शायरी बोलने के बाद। मैम एक और शायरी हो जाए,
1: गजल बोल दूं पूरी?
0: ठीक है, ये तो शायरी हो गई, बड़ा ही खूब था। फिलहाल एक गजल सुनना चाहेंगे हम सभी।
1: कभी बोले ना ये, कभी बोले हाँ, कभी बोले ना ये, कभी बोले हाँ, बात हमारी माने ना, कभी ये इधर हो कभी ये उधर, कभी ये इधर हो कभी ये उधर, मेरी कलम की पूछो ना, कभी बोले ना ये, कभी बोले हाँ, कभी बोले ना ये, कभी बोले हाँ,

मस्त पवन सी उड़ने लगे, कभी बोले ना ये कभी बोले हाँ, कभी बोले ना ये कभी बोले हाँ।

पंछी सी ये उड़ने लगे, कभी बोले ना ये कभी बोले हाँ, कभी बोले ना ये कभी बोले हाँ, बात हमारी माने ना, कहीं पे ईद हो दिवाली हो, किसी की कुटिया खाली हो, किसी के कहीं पे फूलों कांटे हो, रंजो गम ना बांटे हो, बालक सी ये दौड़ पड़े, कभी बोले ना ये कभी बोले हाँ, कभी बोले ना ये कभी बोले हाँ, बात हमारी माने ना, कभी ये इधर हो कभी ये उधर, कभी ये इधर हो कभी ये उधर, मेरी कलम की पूछो ना, आंसू किसी की आंख में हो, आशा निराशा राख में हो, किसी ने गम ही पाले हो, खुशियों पे भी ताले हो, नदिया सी ये बहने लगे, कभी बोले ना ये कभी बोले हाँ, कभी बोले ना ये कभी बोले हाँ, बात हमारी माने ना, कभी ये इधर हो कभी ये उधर, कभी ये इधर हो कभी ये उधर, मेरी कलम की पूछो ना, किसी के दिल में छाले हो, कहीं पे सिर्फ उजाले हो, कोई मेहताब को छू गया, किसी का तारा डूब गया, रंगी पतंग सी उड़ने लगे, कभी बोले ना ये कभी बोले हाँ, कभी बोले ना ये कभी बोले हाँ, बात हमारी माने ना, कभी ये इधर हो कभी ये उधर, कभी ये इधर हो कभी ये उधर, मेरी कलम की पूछो ना।

0: कभी बोले ना ये कभी बोले हाँ, कभी बोले ना ये कभी बोले हाँ, बात हमारी माने ना, कभी ये इधर हो कभी ये उधर, कभी ये इधर हो कभी ये उधर, मेरी कलम की पूछो ना।
1: क्या बात है, क्या बेहतरीन आवाज है, और आवाज में आपके वो जादू है सच में। ये जो गजल अभी आपने गाया, मैम मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब गजल शायरी में आपका रुझान हुआ कैसे?
0: बस वो बचपन से ही था, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो इंडिया फेम के राइटर थे, तो अच्छा। शायद उनके कहीं ना कहीं जीन्स आ गए होंगे। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है
1: जी,
0: कि हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक मादा उल्लू काफी था।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने गजल और शायरी जो भी है पोयम वगैरह ये लिखने के लिए कहीं से प्रशिक्षण लिया है क्या?
0: नहीं नहीं, मैंने कहीं से को पता नहीं, मैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली लिखने लगी। मैं कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, मेरा अपने आप ही गॉड गिफ्टेड है, भगवान की कृपा, कृष्ण कन्हैया की कृपा है।
1: क्या बात है, वैसे गॉड गिफ्टेड चीजें हम चाहे कितना भी दबाएं वो बाहर आ जाती है। जैसे कि आपने किया पीएचडी करने के बाद भी आप
0: हिस्ट्री में,
1: हाँ इसमें आपका रुझान हुआ। वैसे मैम कोई ऐसा पसंदीदा आपका शेर गजल जो भी है जो आपको बहुत पसंद हो, किसी की याद दिलाती हो?
0: हाँ, ये मेरे जो पापा थे वो मुझे बहुत हाइट पे देखना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: तो उनको मैंने एक जवाब दिया था एक गजल की शक्ल में।
1: हाँ।
0: माँ

0: सो जा।
1: क्या बात है, क्या खूब, मतलब मैं आपकी आवाज में खो जा रही हूँ। इतनी खूबसूरत आपकी आवाज है, और इसका जो लय आप पकड़ रही हैं, इसको लय ही बोलते हैं ना?
0: हाँ जी, उर्दू
1: हाँ
0: में।
1: जी, बहुत खूबसूरत लय है। और मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसे कवि, कोई ऐसे गजल करने वाले जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, और मतलब उनको फॉलो किया हो आपने अपनी जिंदगी में, किसी ऐसे कवि से जो जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिली हो। ऐसा कोई भी नहीं है? ओ माय गॉड।
0: मेरे मेरे अपने ग्रैंडफादर ही थे शायर अच्छे।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, आप ग्रैंडफादर उनका नाम ले सकती हैं।
0: अच्छा, उनका था वो हुमा के नाम से लिखते थे, हुमा साहब।
1: अच्छा, तो उनकी उनके वजह से आप इतनी
0: उनके,
1: इंस्पायर हुई
0: हाँ,
1: हैं।
0: वैसे मैं वसीम बरेलवी साहब के जो गजलें हैं ना, उनसे मैं का वो मुझे काफी पसंद है। एक
1: अच्छा
0: उनका एक मुझे एक शेर है वो बहुत पसंद है।
1: जी,
0: मलाल भी हो तो लब आशना नहीं होता, मलाल भी हो तो लव आशना नहीं होता, जहां दिलों में कोई फासला नहीं होता।
1: आय हाय, क्या बात है, बहुत प्यारा लग रहा है सच में जब आप बोल रही हैं, क्योंकि हम लोग भी शायरी वायरी बोलते हैं बट वो फ्लो नहीं आ पाता ना, वो फील आता है। हो सकता है
0: अच्छा
1: शायद लिखने की वजह से आप लोगों में वो फ्लो आता है। वैसे मैम, ये जो शेर शायरी है, ये गजल है, ये हमारे समाज में क्या भूमिका निभाते हैं?
0: नहीं, बहुत फर्क पड़ता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।
1: जी, ये लाइन बड़ी मशहूर है,
0: हाँ, जहां ना पहुंचे, मतलब एक एक कलम में जो ताकत होती है वो शायद कहते हैं तलवार में भी नहीं होती।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सुनने वाले पथक हैं, पथक, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कितना संपर्क में आ पाते हैं वो?
0: नहीं, आते हैं और सब
1: आते
0: कांटेक्ट
1: हैं।
0: करने की। अभी मेरा इंटरव्यू हुआ था इसमें, BJX में, तो उन्होंने खुद ही मुझे कांटेक्ट किया था। आए, काफी इम्प्रेस हुए, उन्होंने कहीं मेरी गजल सुनी होगी।
1: अच्छा।
0: हालांकि मैं लाइमलाइट में नहीं आना चाहती, एक टीचर रही हूँ पूरी
1: जी
0: लाइफ, एक हाउसवाइफ रही हूँ,
1: हाँ जी
0: कि लाइमलाइट में आऊँ या, लेकिन उन्होंने खुद ही बोले नहीं, हम आपका मैम जरूर लेंगे इंटरव्यू।
1: तो आप अच्छा काम करेंगे तो फिर लोग आपको भजन, जैसा मैम आपने बताया था स्टार्टिंग में कि आप भजन भी लिखती हैं, भजन
0: नहीं,
1: भी गाती हैं,
0: गाती
1: आप भजन भी गाती हैं, तो एक दो भजन सुनाइए जो आपको बहुत पसंद हो, जो हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगे।
0: निकाल के, इसमें निकाल के दे दोगी मोबाइल में?
1: भजन निकाल के
0: हाँ,
1: दे
0: मेरा
1: दो।
0: आपकी कृपा से। हाँ, ये जो ये भजन है, ये मेरी अपने जीवन पे भी इसका काफी असर है, और मैं इसी की वजह से हूँ जो मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ।

0: क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत आपने ये भजन गाया और वाकई भगवान की कृपा से हर काम होता है। कहते हैं कि एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं खड़कता है, तो बहुत अच्छा लगा। और मैम आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि पुराने टाइम के हैं इसलिए आप लोग गजल वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन अगर कोई यूथ इससे प्रभावित है और वो इसमें आगे बढ़ना चाहता है तो क्या उसको इस फील्ड में फ्यूचर मिलेगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जाता है कि शायर पैसे के मामले में गरीब होता है
0: जी,
1: लेकिन लफ्जों का वो होता है, लफ्जों की दौलत होती है उसके पास।
0: अच्छा,
1: एक वो कुछ लफ्जों को इधर से उधर कर दे तो कहीं का कहीं पहुंचा दे।
0: जी हाँ, अच्छा मैम हमें ये बताइए कि कैसे आप गजल और शायरी के पारंपरिक तत्वों को सच बोलते हुए अपने अपने आवाज और अंदाज के साथ शामिल करते हैं?
1: बस कुछ ऊपर वाले की कृपा हो जाती है, कुछ हम भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी से लिखते हैं।
0: जी हाँ, तो क्या आप अपनी लिखी हुई शायरी गजल ये सब अपने लिखी हुई सुनाती हैं?
1: हाँ हमें ज्यादातर, अगर मैं किसी और की तो मैं बता देती हूँ कि भाई ये उनका है, उन वसीम बरेलवी साहब का है या जी। नुसरत जी या जिसका भी है
0: जी।
1: एक है नुसरत, वो भी बहुत अच्छा लिखती हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं मतलब उनका नाम उसमें कि मेरे को उनका ये वाला शेर पसंद है, मैं सिर्फ वही शेर बता देती हूँ कि ये मेरा ही अपना ही अपने ही लिखा हुआ है।
0: अच्छा, मतलब किसी का शेर अगर आपका अगर किसी और का शेर है तो आप नाम के साथ?
1: हाँ, नाम के साथ
0: है।
1: हाँ, उसका नाम मेंशन कर देती हूँ नाम के, भाई उन शायर का है
0: जी, लेकिन मैक्सिमम आपके खुद के लिखे।
1: हाँ, मैं खुद के लिखे।
0: तो मैम आपकी आवाज और आपकी आवाज का जादू इतना अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक और आप कुछ सुनाना चाहें?
1: मुझे वैसे कोल्ड हो रहा है।
0: जी हाँ, मुझे तो पता है कोल्ड हो रहा है, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि एक लास्ट अगर आप सुना दें।
1: पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, ये भजन मेरे अपने जीवन पर भी लागू हो रहा है, और ये भजन मुझसे ज्यादातर मेरा कन्हैया कहता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल कहता है। जब जब भी मैं उदास होती हूँ, दिल में कुछ ऐसा होता है, तो ये मैं हमेशा ये वाला भजन सुनती हूँ और गाती हूँ, और फिर मुझे लगता है कि मेरे राधे कृष्ण मेरे साथ हैं।

जब आंख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, मेरे आंसू का कतरा तेरी आंख में होता है। जब

तू सुख दुख दो पहलू है, मस्ती में जिए जा तू, क्यों हारता तू ऐसे हालातों के आगे, तेरा हौसला बन के जब मैं चलता सागे, मैं भी तो नहीं सोता

0: क्या बात है, बड़ा ही सुंदर भजन आपने ये सुनाया। और भजन के एक्चुअली मीन्स यही थे कि कान्हा जी ये कहते हैं कि भाई तू अपना कर्म करते जा, तुझे जो करना है लेकिन अच्छा कर्म करना, मैं तेरे साथ हूँ चाहे जो भी घड़ी हो। बड़ा ही खूबसूरत सा भजन। और ऐसा मैम का कहना है कि इनको फील होता है कि भाई ये भजन उनके लिए है, और हर भक्त को एक्चुअली यही लगता होगा कि ये भजन उनके लिए है। बहुत अच्छा लगा मैम। और मुझे एक छोटा सा मैसेज, मुझे नहीं एक्चुअली हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि आप शायर हैं एक, तो उन लोगों को जो शायरी कर रहे हैं या उनका रुझान है इसमें, वो क्या प्रेरणा, किस प्रेरणा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, छोटा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को।
1: बस मेरा यही मैसेज है कि अपना अपना मन बिल्कुल साफ रखना चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, और अपना कर्म बेस्ट करना चाहिए, और ईश्वर पर अटल विश्वास रखना चाहिए। वो हमारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे
0: जी।
1: उनका जो डिसीजन है, उनका जो वो होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता
0: जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि सभी श्रोताओं को आपका जो भजन है, शायरी है, ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अगली बार हम फिर आपसे एक मुलाकात और करना चाहेंगे, और अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: राधे कृष्ण।
0: राधे कृष्ण।
2: क्या आप पुराने गर्दन, कमर, कूल्हा, कंधे के दर्द से परेशान हैं? तो संपर्क करें दर्द के विशेषज्ञ डॉक्टर निदा नसीम से। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद लेकर आया है क्रोनिक पेन रिलीफ कैंप 17 मई रविवार को। यहाँ मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा आधुनिक तकनीकी से इलाज, वो भी बिना सर्जरी के, जैसे अल्ट्रासाउंड, सी आर्म गाइडेड नर्व ब्लॉक, PRP थेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री और सभी जाँचों पर 20% तक की छूट। समय याद रखिए, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। पता, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 9412504190।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।

समझे अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
0: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
1: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
0: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हेलो भाई, मेरा नाम आनंद है, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। और आज की जो स्टूडियो की वाइब है ना, बहुत अलग है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टेशन में एक ऐसी महिला मौजूद है, एक ऐसी नारी शक्ति मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में है, जिनके बारे में मैं जितनी बातें बोलूंगा ना, शायद मेरा समय कम पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, जहां चाहा है वहीं रहा है। जब एक महिला कुछ करने की ठान ले तो वो सब कुछ कर लेती है। और वैसे ही आज सेशन में, इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस इंटरव्यू में हमारे रेडियो का हिस्सा है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी, जो हमारे शहर के अंदर ऑटो चलाती हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत बड़ी पुरुषों को ऑटो चलाते हुए देखा है ना, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम ऑटो में अक्सर मेल्स को देखते हैं, लेकिन मैंने पहली फीमेल मुरादाबाद के अंदर देखी है। और आज वही फीमेल को हम स्टूडियो लेकर आए, उसी नारी शक्ति को। हेलो मैम, कैसे हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मैडम रामवती शर्मा।
0: रामवती शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जोरदार तालियां। रामवती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसी है पहले ये बताइए मैम?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा, आपने सोचा था कभी अच्छा कि आप किसी जगह आएंगी?
1: नहीं नहीं, वैसे आपसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
0: अरे थैंक यू सो मच आंटी। तो आंटी बोलूं या मैम बोलता हूँ मैं?
1: आप
0: तो आपको
1: जो चाहो वो बोल सकते।
0: अच्छा, क्या नाम बताया आपने?
1: रामवती
0: शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। रामवती जी, थोड़ा अपने हमारे जो सुनने वाले हैं, आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए।
1: अरे मैं बहुत परेशान थी पहले, बहुत अपने मतलब शादी जब हुई थी तो मैं बहुत दुखी थी, मेरे बच्चे मतलब ये था भूखे मरने लगे।
0: ओहो हो, अच्छा। तो मतलब आपकी शादी यही हुई है मुरादाबाद?

0: नहीं, मेरी शादी बिलारी में हुई थी।
1: अच्छा, बिलारी। तो मुरादाबाद कैसे आना हुआ आपका?
0: मुरादाबाद जब मेरे बच्चे, मतलब हमारे, मेरे हस्बैंड का काम नहीं चला। वो अच्छा। है साइकिल टेरपिंचर थे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: तो उनका काम नहीं चला तो देखो बच्चे हम बहुत परेशान रहने लगे थे।
1: हाँ।
0: तो मैं अपने, एक जनी मुझे लेके आई थी यहाँ पर।
1: हाँ।
0: काम पे लगवाने के लिए।
1: हाँ।
0: तो मैंने उनके साथ, मतलब पहले फैक्ट्री में जॉब करी।
1: अच्छा।
0: पैकिंग हॉल में।
1: अच्छा।
0: उसके बाद करते करते मैं चेकर बनी।
1: अच्छा, अरे वाह। फिर
0: चेकर बनने के बाद फिर मैंने लड़के की शादी करी तो मेरी बहू खत्म हो गई किसी, मतलब दिक्कत में आके।
1: ओके ओके।
0: उसके बाद मेरा एक छोटा सा पोता है, आपने देखा भी होगा।
1: हाँ हाँ, मैंने देखा है आपके साथ।
0: तो मैंने उसकी वजह से ये रिक्शा लिया है।
1: अच्छा, तो उसकी वजह से रिक्शा चला रहे हैं।
0: उसे पाल रही हूँ।
1: हाँ।
0: और अपना पेट भी पाल रही हूँ।
1: अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आंटी आपके?
0: मेरे एक लड़की एक लड़का है।
1: एक लड़की और लड़की। हाँ। की शादी हो गई?
0: शादी दोनों बच्चों की हो गई।
1: अच्छा, दोनों बच्चों की हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ऑटो चलाने का ख्याल कैसे आपके आया दिमाग में?
0: ऐसे आया जब फैक्ट्री में काम करने लगी तो मैंने सोचा फिर कहीं ऐसा ना हो कि पहले इतना मैं फिर मुसीबत उठाने लगूं। तो मैं, मेरे दिमाग में आया कि मैं ऑटो चला के देखती हूँ। तो मैंने एक पहले पुराना ऑटो लिया था।
1: अच्छा,
0: उससे मैं सीखी।
1: अरे वाह।
0: उससे सीखने के बाद
1: पहले ट्रेनिंग ली आपने? अच्छा,
0: सीखी अपना भी थी।
1: अच्छा, अच्छा।
0: किसी ने सिखाया नहीं था।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: उसके बाद मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, मैंने, मेरे मन है ऑटो चलाने के लिए।
1: हाँ, तो क्या कहा सर ने? तो, मतलब परमिशन दी? हाँ, पति देव ने।
0: तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है ले लो।
1: अच्छा।
0: फिर मैंने ऑटो ले लिया।
1: तो मतलब पति की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी?
0: नहीं।
1: परिवार की तरफ से कोई रोक टोक? अच्छा अच्छा। तो मतलब पहले ट्रायल लिया, पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद जब आपको लगा मैं मजबूती के साथ चल सकती हूँ, चला सकती हूँ, तब आप सड़क पे उतरे। तो कितने समय से आप ऑटो चला रही
0: हैं? मुझे अब एक साल लगातार हो गया।
1: एक साल हो गया?
0: मार्च में हो गया।
1: अच्छा अच्छा, एक साल से आप ऑटो चला रही हैं मार्च में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि मैम, जब आप ऑटो पहली बार सड़क पे लेके निकली थी तो आपको कैसा लगा? मतलब थोड़ा अजीब लगा।
0: अजीब सा लगा। हाँ, क्योंकि लोग तो ये देख लगता रहे हैं कि मैं चलाती रहूं।
1: अच्छा अच्छा, अभी ये लगता है कि चलाती रहूं।
0: हाँ।
1: ओके, तो मतलब जब आपके ऑटो में लोग बैठते हैं, लेडीज बैठती हैं, जेंट्स बैठते हैं, तो कुछ कभी कोई सवाल जवाब करते हैं कि आप कैसे, क्यों चलाती हैं?
0: पूछते हैं।
1: हाँ।
0: पूछने वाले तो क्या बताया, किसी को क्या बताया,
1: क्या बताया जाए,
0: तो नहीं बताई जाती है, कहते हैं हमारी मर्जी, हम चला रहे हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्हें आप सुन रहे हैं, ये मुरादाबाद की नहीं है रहने वाली, लेकिन अभी हम कह सकते हैं मुरादाबादी ही है ये। कितने समय से मुरादाबाद में आप रह रही
0: हैं? हमें 20 साल, 25 साल हो गए।
1: 25 साल से जो रह रही है तो वो मुरादाबादी ही होगी गाइस। तो मतलब आपका जो, मतलब घर था वो चंदौसी, आपने बताया?
0: नहीं, बिलारी।
1: बिलारी से आप थी, तो मुरादाबाद आके फिर आपने शुरू किया अपना कारोबार और ये काम का सिलसिला।
0: पहले हम किराए पे रहे, फिर हमारा अपना हो गया।
1: अरे वाह, क्या बात है,
0: अभी हमारा अपना ही है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आंटी मुझे ये बताइएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई?
0: हाई स्कूल पास।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाई स्कूल पास है? हाई स्कूल पास थी आप, उसके बाद आपने कंपनियों में काम किया नॉर्मली, जो आप बता रही पैकिंग वगैरह में। फिर आपने क्यों सोचा कि मुझे ऑटो ही चलाना चाहिए?
0: ये मैंने सोचा, फैक्ट्री लेके बच्चे उजा नहीं सकते।
1: हाँ।
0: बच्चा बिना माँ के रह नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब मैं उसे पालने वाली हूँ, मैं उसे रखने वाली हूँ, तो मैंने सोची, फिर मैंने काम छोड़ दिया बच्चे के खातिर। उसके बजाय अगर फिर मैंने सोचा फिर मुसीबत ना आ जाए मेरे बच्चों पे।
1: जी।
0: इसीलिए मैंने सोचा ऑटो भी चलता रहेगा और मेरा बच्चा भी पलता रहेगा,
1: और साथ ही साथ अपने मन की मालिक हो। जब मर्जी ऑटो चलाओ, जब मर्जी अपना नहीं जाओ, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको जाना ही जाना है।
0: कोई जबरदस्ती नहीं
1: है ना, जबरदस्ती नहीं है। तो कौन कौन सी रोड से आप ऑटो लेके निकलती हैं?
0: वैसे मैं सब रोड पे चला लेती हूँ।
1: सब रोड पे चलाती हूँ।
0: गुलाबबाड़ी, अभी तो मैं गुलाबबाड़ी से आई।
1: अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइएगा मैम, मतलब आपने जब ये ऑटो का सिलसिला शुरू किया, जब आपका पहला दिन था, तो घर पर जब आप पहली कमाई लेकर गई तो कैसा लगा? घर वालों को, घर वालों को दिखाया आपने?
0: सब, और क्या ना, अभी मैं अपने घर वालों के हाथ में देती हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब पति देव क्या करते हैं वैसे?
0: वो टायर पंचर का काम करते हैं।
1: टायर पंचर का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक अलग ही खुशी होती है जब आप ये मेहनत से पैसे लेकर जाती हैं।
0: ये लगता है कि हाँ, देख पैसे, पहली बात तो पैसा देते हो आप लोग।
1: हाँ।
0: दूसरी बात, मैं आपकी सेवा भी करती हूँ।
1: बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत सही कहा। सो दोस्तों, वो कहते हैं ना, जहाँ पर इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं, तो आप वो सब कुछ कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। और कहते हैं ना, एक नारी जिसे हम शक्ति नारी बोलते हैं, वो सब कुछ कर सकती है। तभी तो कहा जाता है, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और ऐसे ही आज नारी शक्ति, एक सशक्त नारी, आज के जमाने की नारी मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त, जिनको आप सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप वैसे कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में?
0: खदाना गांव में।
1: खदाना गांव में, तो ये मुरादाबाद में पड़ता है? अच्छा, अरे वाह। तो वहाँ से डेली आप सफर करते हैं, कितने बजे सुबह आपकी शुरुआत हो जाती है?
0: सुबह तो देखो, दो बच्चे हैं, दो लेडीज हैं मेरे पास, लगी बनी है वो तो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: तो मैं 7 बजे अपने घर से निकल कर आ जाती हूँ, खाना वाना बना के सारे काम घर के,
1: मतलब खुद करती है सारा काम।
0: हाँ जी। और
1: तो सुबह कितने बजे निकलती हैं आप?
0: सुबह मैं 7 बजे निकल,
1: 7 बजे निकल जाती हूँ। और शाम को कितने बजे घर लौटती हैं?
0: शाम को 6 बजे घर पहुँच जाती हूँ।
1: 6 बजे आप घर लौटती हैं। ओके। रामपति शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मुरादाबाद की सड़कों पर ऑटो चलाती है, लोगों को उनकी मंजिल तक तक पहुंचाती हैं और ये काम बहुत आसान नहीं होता, स्पेशली एक महिला के लिए जब वो घर से बाहर निकलती है। लाइफ में बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। लाइफ इतनी आसान जितनी मुझे और आपको लगती है ना सामने वाले की, उतनी एक्चुअली होती नहीं है। परेशानियां सबकी जिंदगी में आती है। रामवती जी, आपकी जिंदगी में थोड़ी मोड़ी परेशानियां आती होंगी, कैसे डील कर लेती हैं आप?
0: ये तो होता
1: रहता है। मतलब एक तो आप इतनी प्यारी है, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सुंदर मुस्कान के साथ मैम बात कर रही है, इतनी पोलाइटनेस के साथ, मतलब कैसे आप इतना कर लेती है? मतलब
0: गृहस्थी में सब हो जाता है,
1: सब हो जाता है, मतलब आप हमेशा ऐसी रहते हैं, ऐसी मुस्कुराते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको हमारे ऑफिस में आके अभी कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा।
1: बातचीत करके कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा लगा।
1: अच्छा, मतलब कुछ डर तो नहीं लगा?
0: नहीं, ऐसा लगा मैं अपने घर में बैठी हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बस हमें यही चाहिए। थैंक यू सो मच। ये रामवती शर्मा जी है जिनके बारे में हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं जो आपकी तरह काम करना चाहती, अपना पेट पालना चाहती, अपने बच्चों को पालना चाहती है, क्योंकि एक सही काम करके अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है मैम। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो आपकी आवाज सुन रही है, जो करना चाहती है लेकिन घर की तरफ से रोक दिया जाता है?
0: वो भी हिम्मत रखें।
1: हाँ।
0: हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी को भी, मैं हूँ चाहे कोई भी लेडीज हो, उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत हार जाता है तो इंसान समझ लो गया
1: गया। बिल्कुल, अगर आपके बिल्कुल
0: दिल बुलंद होना चाहिए, अपनी हिम्मत बुलंद होनी चाहिए।
1: क्या बात है, और आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आप सही है तो सब सही है, है ना। देखिए बहुत अच्छी बात बोली रामवती शर्मा जी ने, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है, कुछ करने की आप ताकत रखती हैं, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। बहुत अच्छी और मजबूती तरीके से जो है जवाब दे रही है। और मुझे बड़ी मजे की बात यह है कि देखिए हम बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से बातचीत पा रही हैं, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। और मैम बिल्कुल, मतलब जो है ना, एक होता है कि थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा अनकॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर रही है रामवती जी, मतलब बहुत ही बढ़िया। पहले कभी बोला है आपने ऐसे? तो इतनी मतलब ऐसे कैसे आप बोल पा रही है?
0: जैसे जैसा इंसान मिल जाता है ना, मुझे उसी में रमना पड़ जाता है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। तो दोस्तों ये होता है एक असली कॉन्फिडेंस, एक असली जज्बा, और ऐसे जज्बों की कहानियां और ऐसे ही बुलंद कहानियां हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आप सुनते हैं तमाम वो बातें जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलती हैं। रामवती शर्मा जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम आपसे जानना चाहूंगा मैं थोड़ा सा आपके संघर्ष के बारे में, थोड़ा सा जैसे बहुत सारी महिलाएं जैसे मैंने कहा करना चाहती हैं पर वो नहीं कर पाती, उन्हें लगता है परिवार रोक रहा है, बच्चे रोक रहे हैं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, तो आपके साथ आपके बच्चे सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ की मम्मी क्यों चला रहे हो जब हम हैं? तो
0: किसी ने नहीं कहा, मैंने सबकी मर्जी से काम।
1: अच्छा, सबने आपको परमिशन दे दी? तो अभी मुरादाबाद सड़कों पे आप इकलौती महिला ऑटो चलाती हैं या और भी हैं?
0: मैंने तब तक कोई देखा नहीं है।
1: आप ही चलाती हैं ना? तो गाइज अगर आपको अगली बार कोई महिला दिखती है पीली कोठी की तरफ, कहाँ कहाँ से आप गुजरती हैं?
0: मैं सब तरफ दिख जाती हूँ।
1: सब तरफ जाती हैं? हाँ। तो अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो एक बार नाम पूछ लीजिएगा, कहीं आप वही रामवती तो नहीं जो रेडियो पे बात कर रही थी? तो आपको लोग पहचानेंगे तो आप भी पहचान जाइएगा, ठीक है मैम? हाँ। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहती हैं? बहुत लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं रेडियो पे, कोई मैसेज देना चाहे, कोई संदेश महिलाएं जो लेडीज?
0: मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हिम्मत रखती हूँ, सारी महिलाएं हिम्मत रखें। देखो घर परिवार चलाना है तो हिम्मत अपने अंदर रखनी चाहिए।
1: अब मैम आपकी कितनी उम्र होगी अभी?
0: मेरी 45।
1: देखिए 45 की उम्र में भी सड़कों पर ऑटो चलाती हैं, और जिसे कह सकते हैं कि अपना भरण पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो एक सही डायरेक्शन में काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है मैम, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमारी तमाम महिलाओं को एक इंस्पिरेशन दी है, जो यहाँ पर आपने बातें रखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। आपको यहाँ आके अच्छा लगा?
0: बहुत अच्छा।
1: आगे भी आना चाहोगे?
0: बिल्कुल, जब आप बुलाओगे मैं पक्का हाजिर हो जाऊंगी।
1: चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइज आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानी के साथ, किसी और नई लेडीज के साथ, कुछ और नई संघर्ष की कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष, और
1: आज हम आपको एक जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। आप जिले के किसी भी गांव में रहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर गांव में लगभग स्वास्थ्य महकमे की तरफ से एक आरोग्य मंदिर स्थापित किया जाता है, और इस आरोग्य मंदिर में व्यवस्थाएं उनके इलाज से संबंधित, दवाओं से संबंधित मिलती है। और अगर यहाँ से किसी गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हैं तो आपको एक मार्गदर्शन भी मिलता है कि आप अपना हायर सेंटर्स में कहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। और जिले के अंदर अगर देखें या ब्लॉक के अंदर देखें, पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, ऐसी जगहों पर आप जा सकते हैं। लेकिन आरोग्य मंदिर कैसे काम करता है, यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स रहते हैं उनकी टीम में कौन कौन रहता है, किस किस दिन पर आरोग्य मंदिर खुलते हैं, यहाँ पर इलाज से संबंधित क्या प्रक्रिया होती है, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं सीएचओ राहुल कुमार वर्मा जी, जिनसे हम बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आरोग्य मंदिर कैसे काम करता है। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: कैसे काम करता है एक आरोग्य मंदिर?
2: सर, आरोग्य मंदिर जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना के तहत हर 5,000 की पॉपुलेशन पे खोले गए हैं, और यहाँ इसका खुलने का समय रहता है 9 बजे प्रातः से 4 बजे तक रहता है। इसमें जो है हम लोग 12 प्रकार की जांचें करते हैं, जिसमें से खून की जांच हो गई, और शुगर की, मलेरिया, डेंगू, और बेसिकली जो है उच्च रक्तचाप, हाइपर टेंशन के मरीज होते हैं और डायबिटीज के, इनकी हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं पूरी आबादी, पूरे क्षेत्र की, और जो भी हाइपर टेंशन के मरीज हमें प्राप्त होते हैं उनको हम हायर सेंटर के लिए रेफर करते हैं। वहाँ जो भी MBBS डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको अपने फॉलोअप में लेके दोबारा से रीसेंट कर देते हैं, तो उनका हम लोग ट्रीटमेंट एक सुचारू रूप से चला पाते हैं, जिससे भविष्य में उनको कोई एक मेजर दिक्कत ना पैदा हो। और इसके अलावा में जो भी सामान्य कैंसर्स होते हैं, जैसे ओरल कैंसर है, या जो भी गर्भाशय का है, या ब्रेस्ट कैंसर है, उसको एनम जो है देखती है। बाकी हम भी ओरल कैंसर वगैरह की स्क्रीनिंग यहाँ पे की जाती है, और जो भी एक नॉर्मल सी बीमारियां हैं, फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, और हेडेक वगैरह, इनकी दवाइयों का भी हम लोग यहाँ प्रबंधन करते हैं।
1: ठीक है।
2: या और किशोरावस्था की जो भी एलिजिबल कपल्स हैं उनकी काउंसलिंग, और जो भी बच्चे हैं उनको मतलब हम लोग यहाँ योगा सेशन वगैरह इनका करवाते हैं।
1: तो एक आरोग्य मंदिर में इतनी तरह की आपको व्यवस्थाएं स्वास्थ्य से जुड़ी मिलती हैं, ये जो आपने बताया, कुल कितने लोग इसके लिए सुनिश्चित किए जाते हैं एक आरोग्य मंदिर में?
2: ये आरोग्य मंदिर का ये डिपेंड करता है कि कितना पॉपुलेशन वो कवर करता है। अच्छा। और उसके साथ में जो भी क्षेत्र के हर गांव की एक आशा मतलब चयनित होती है, जिसका लिमिटेशन लिमिट पॉपुलेशन 1,000 की आबादी पे चयन किया गया है। तो वो पॉपुलेशन मतलब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितनी आबादी को कवर करता है उस डिपेंड, उसके आधार पे हम वो टीम से होते हैं। जैसे कि 5 गांव अगर है तो 5 आशाएं होंगे, बाकी वहां पे कितनी एनम्स जो है पोस्टेड हैं। हमारे यहाँ जो है एक मैं हूँ राहुल कुमार वर्मा, और 2 एनम्स जो है पोस्टेड है
1: जो नियमित यहाँ पर
2: जी रेगुलर रहती है, और उनका जो भी क्षेत्र में काम होता है टीकाकरण सत्र का, या जो भी क्लिनिक डे वगैरह या अन्य मीटिंग्स वगैरह वो अटेंड करते हैं।
1: ठीक है। और आरोग्य मंदिर हफ्ते में कितने दिन तक खुलता है?
2: जी, सभी मतलब सोमवार से शनिवार इसका ओवरऑल टाइम जो है 9 बजे से 4 बजे तक हमेशा खुलता है।
1: अच्छा। और अगर मान लीजिए आरोग्य मंदिर बंद है संभवतः किसी दिन किसी कारण से, तो क्या इस बात की जानकारी आप अपने ग्रामीण स्तर पर लोगों तक पहले पहुंचाते हैं कि इस दिन बंद रहेगा?
2: बंद रहने का नहीं चांस होता है, अगर मैं किसी कारणवश छुट्टी पे हूँ तो वो यहाँ पे एनम सिस्टर जो होती है वो यहाँ पे अवेलेबल रहती है। अगर इनके साथ हम दोनों लोग नहीं है तो आशा बहन जी जो होती है वो यहाँ सूचित करते हैं, वो रहते हैं कि आज यहाँ नहीं मिलेंगे या कल मिलेंगे।
1: ठीक है। अच्छा, रविवार को बंद रहता है?
2: जी, सिर्फ रविवार को या जो भी वेजिटेड हॉलीडेज है।
1: और अगर रविवार को किसी को कोई समस्या आती है स्वास्थ्य से जुड़ी तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था फिर है?
2: तो उसके लिए हमारे यहाँ नियरेस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ 24/7 सेवाएं जो है प्राप्त होती है, तो आदमी वहाँ कंसल्ट कर सकते।
1: ठीक है। आरोग्य मंदिर में जो लोग आते हैं अपने इलाज के लिए, क्योंकि देखिए आरोग्य मंदिर सिर्फ जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं वही नहीं, और भी बहुत सारे आरोग्य मंदिर हैं जहाँ पर लोग अपने इलाज के लिए पहुँचते हैं, तो आप ऐसे में जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनसे क्या संदेश देते हुए बताना चाहेंगे कि आप आरोग्य मंदिर की सेवाएं लेने के लिए आप आगे आएं, ज्यादा से ज्यादा उनको ये इलाज संबंधित सेवाएं मिलें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी, मैं राहुल कुमार वर्मा, समस्त क्षेत्रवासी और मतलब जो भी जहाँ पे भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे चयनित प्रतिनिधि हैं या जो भी हमारे कैडर के लोग हैं, तो उनका सभी क्षेत्रवासी सहयोग करें। वो किसी कारण से आपके क्षेत्र में पहुंचते हैं, आपके दरवाजे पे पहुंचते हैं, तो आप उनका जो है सहयोग करें, ये अपेक्षा करता हूँ। बहुत सारे मतलब हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो आपके सहयोग के बिना हम हर टास्क को पूरा कर पाना संभव नहीं है। बहुत सारे हैं चीजें, जैसे कि इस समय गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड का जो साप्ताहिक चल रहा है अभियान, तो उसमें हमें आपसे सहयोग की अपेक्षा रहती है, या जो भी है सभी मतलब जो भी प्लान सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं वो आपसे ही जुड़े होते हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग, और मेरा निवेदन है सभी से कि आप लोग सभी का सहयोग करें।
1: अच्छा, आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया आपने, तो आयुष्मान कार्ड आरोग्य मंदिर पर अगर कोई व्यक्ति आता है जिसको बनवाना है, हम चाहेंगे थोड़ा इस बारे में भी जानकारी दें कि वो यहाँ पर आकर अपने कौन कौन से दस्तावेज लाए, या कैसे उसका आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में उसको हम डाल सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड बनाने का 3 स्टेप है, मीन्स जो है जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है 70 वर्ष से अधिक, ठीक है, उसके लिए सिर्फ उनका आधार कार्ड पे 70 वर्ष का आयु पूर्ण हो गया हो, तो और भी कोई मानक की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड पे उनका एज अगर 70 साल पूरा हो गया है तो उनका जो भी गोल्डन कार्ड बन जाएगा। उस दूसरे स्टेप में जो है किसी भी फैमिली में अगर 6 लोग हैं, राशन कार्ड पे 6 प्रतिनिधि हैं, तो उनका भी आयुष्मान।
1: नहीं, अब इसमें एक सवाल है कि 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो क्या 6 से कम भी नहीं होने?
2: 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से अधिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी,
1: अच्छा,
2: 6 से कम
1: मिनिमम,
2: जी मिनिमम जो है संख्या 6 रखी गई है,
1: ठीक है,
2: तो उनका सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। बट ये कंडीशन इसमें ये रहती है कि 6 वो कार्ड जो है वो 5 लाख की मतलब लिमिटेशंस होती है, तो वो 5 लाख की धनराशि जो है वो 6 लोगों पर डिपेंड।
1: अच्छा, मान लीजिए, मान लीजिए ऐसा हो कि परिवार में तो 6 सदस्य हैं, लेकिन 2 सदस्य कहीं बाहर रहते हैं, वो बहुत कम उनकी फ्रीक्वेंसी होती है अपने घर आने की, तो ऐसी कंडीशन में भी कोई दिक्कत है या बन जाएगा?
2: लगभग हर क्षेत्र में मतलब हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं, तो मैं अपेक्षा करता हूँ अगर कोई बाहर फंसा हुआ है तो वो वहाँ अपने नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र पे संपर्क करके वो बनवा सकता है, वो या स्वतः ही जो है एक ऑप्शन आता है प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना करके, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके स्वतः वो अपना कार्ड जनरेट कर सकता है।
1: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि स्वतः ही कार्ड लोग अपना, अगर आप जरा से जागरूक हैं या जो जन सेवा केंद्र बने हैं वहां जाकर अगर आप करवा सकते हो, या आप थोड़ा सा भी अगर इंटरनेट फ्रेंडली हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से आप चला लेते हैं, तो आप स्वतः ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि बता दें थोड़ा सा ये प्रक्रिया क्या रहती है।
2: एक प्ले स्टोर में जो है एक ऐप आता है, उसमें हम लोग डालेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कर, ठीक है, उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसमें 2 ऑप्शन आता है, बेनिफिशियरी एंड ऑपरेटर का मोड का 2 ऑप्शन आता है, तो कोई भी एक आम नागरिक है वो बेनिफिशियरी का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना कार्ड जनरेट कर सकता है, सिर्फ उसमें आधार कार्ड का ऑप्शन डालना है और एक ऑप्शन मांगेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक थोड़ा सा भी आप लगभग सभी के यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल है अटैचमेंट में है, तो वो अपना कार्ड।
1: और ये प्रक्रिया लगभग कितने समय में पूरी हो जाती है?
2: मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है।
1: अच्छा,
2: बस जी। और थर्ड ऑप्शन में बताना भूल गया, जो भी आयुष्मान कार्ड के लिए वैध है, तो जो भी वरिष्ठता के क्रम में जिनका उम्र 60 साल है, जो भी वृद्ध है हमारे 60 साल की उम्र हो, राशन कार्ड पे वो 2 लोग हैं सिर्फ, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों की उम्र अगर 60 साल से ऊपर है तो वो पात्र है, उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। उम्र का थोड़ा सा वो डिफरेंस रहता है, अगर वो हस्बैंड 60 या 61 साल के हैं, या जो माता जी है उनके घर में वो 59 साल की है, तो वो पोर्टल उनको नहीं लेगा। दोनों की उम्र कंडीशन ये है कि दोनों लोगों की उम्र 60 से ज्यादा हो, वो राशन कार्ड में सिर्फ 2 ही अभ्यर्थी हों, उस जरिए से उनका आयुष्मान कार्ड जनरेट किया जाता
1: है। ऐसे ही आभा को लेकर भी हम देखते हैं कि लोग अभी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, तो क्या आप भी अपने स्तर पर आभा को लेकर, आभा आईडी को लेकर भी जागरूक करते हैं?
2: जी बिल्कुल बनाते हैं। आभा मतलब ये है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट करके, तो जैसे हमारा एक बैंक में अकाउंट वगैरह रहता है, उसी प्रकार से ये स्वास्थ्य अकाउंट है। इन फ्यूचर इसका बहुत ही अहम रोल रहेगा स्वास्थ्य व्यवस्था में, आप कहीं भी जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड उस आभा नंबर के जरिए संचय कर लिया जाएगा, तो भविष्य में बहुत सारे हमारे दस्तावेज, मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं
1: जी।
2: तो उसको लेके कोई असुविधा नहीं होगी, आपने जहाँ कहीं भी 2025 में या उससे पूर्व में इलाज कराया होगा, तो आसानी से हम लोग
1: पूरी मेडिकल हिस्ट्री
2: उसमें संचय रहेगी, तो फाइंड आउट कहीं भी आप देश के किसी भी कोने में जाके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ किस समय आपने इलाज कराया था।
1: अब तो ORS का भी जिक्र हो रहा है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए पोर्टल पर, और आप अपनी जो कंसल्टेंसी है किसी डॉक्टर से, वो ऑनलाइन जाए, जो भीड़ में खड़ा होना पड़ता था कि हम जाएंगे ओपीडी में लाइन लगाएंगे, उससे निजात पाने के लिए
2: इसके अहम मतलब ये योजना है हमारे यहाँ की टेली कंसल्टेशन, आयुष्मान भारत का जो टेली कंसल्टेशन की सुविधा है, मीन्स जो भी गंभीर बीमारी वाले जो भी क्लाइंट आते हैं या व्यक्ति आते हैं तो हम उनका ऑनलाइन एक परामर्श हम पोर्टल के माध्यम से जो भी MBBS डॉक्टर या एक पोर्टल हब होता है आमने सामने वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंसिंग करके वो करा सकते हैं, जिससे कि एक अहम जो हमें ट्रीटमेंट की सलाह उचित परामर्श मिल जाता है हायर सेंटर से।
1: श्रोतागण हैं सुनने वाले या सोशल मीडिया पेज फॉलो करके इसके जरिए जागरूक होने वाले, उनको आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: जी आपसे इसे मेरा निवेदन है कि सभी लोग जो भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी आपके दरवाजे पे पहुंचे या कोई भी आशा वर्कर या इनम सिस्टर वगैरह पहुंचते हैं तो आप सभी का सहयोग करें, ये आपसे अपेक्षा करता हूं।
1: बहुत धन्यवाद राहुल जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। तो हमने आपके पास इतनी अहम जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है, तमाम गांवों में लोग अभी भी कहीं ना कहीं अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर बहुत परिचित नहीं है या बहुत जागरूक नहीं है या उनको बहुत ज्यादा जानकारी इस बात की नहीं है कि कितने तरह का इलाज या किस किस तरह की जांच सुविधा वहां पर मौजूद है। इस तमाम जानकारी राहुल कुमार वर्मा जी जो कि बतौर CHO कार्यरत है उन्होंने दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
5: जी हाँ,
6: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

काटना, यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: बहन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।